प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। श्रावण प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। हम भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। भगवान शिव और बहुत ही सरल देवता हैं। भगवान शिव के मानस पूजा में कहा कि रत्नैः।

0: चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदया निधे पशुपते हृतकल्पितम गृह्यताम। हे दया निधे, हे पशुपते, हे देव, ये रत्न निर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्नावली विभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरी का गंध समन्वित चंदन, जूही, चंपा और बिल्व पत्र से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप, ये सब मानसिक पूजाहार, हे भगवान आप इनको ग्रहण कीजिए। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्ष्यम पंचविधि विधम पयोदधियुतम रंभाफलम पानकम शाकानामयुतम जले रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। मैंने नवीन रत्न खंडों से रचित सुवर्ण पात्र में घृत युक्त खीर, दधि, दूध सहित 5 प्रकार का व्यंजन, कदली फल शरबत, अनेक शाख कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल तथा तांबूल, ये सब मन के द्वारा ही बना करके प्रस्तुत किए हैं। हे भगवान आप इसे स्वीकार करो, ये भगवान शिव की मानसी पूजा है। श्रोताओं जो इस प्रकार से मन से भी स्मरण करते हुए भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान सदाशिव उनका कल्याण करते हैं। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन।
1: बहुरी राम माया ही सिरुनावा, पेरी सती ही जे ही झूठ कहावा। ग्रंथ में भी सती त्याग का कारण झूठ बोलना नहीं, बल्कि सीता का वेश धारण करना ही लिखा गया है, और उसे अद न कह करके अपराध ही बतलाया गया है। सिय बेहूं सती जो कहीं तेजी, अपराध शंकर परस ही। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ और परम पुरुषार्थ जो भागवत दी है, उसमें श्री शिव जी ने सम्मान कौन व्रतधारी हो सकता है, शिव जी के सम्मान कौन व्रतधारी हो सकता है। शिवम सम को इस पद का अभिप्राय तो स्पष्ट हो गया, अब सती असी नारी पद के अभिप्राय की आलोचना करनी है। सती जी कैसे आदर्श नारी थी,

0: और उनका प्रमाण उनके इस एक कर्तव्य से दिया जा सकता है कि जब शिव ने अपने क्षमाशीला अन्याय सती को अपराध सम्य होने पर भी इनका कठिन दंड दिया कि उसे त्याग ही डाला तो सती का जीवन महान विपत्ति में पड़ जाएगा। पति पति त्याग हृदय दुखु भारी तथा नियति नौ सेचु सतीत उर भारी कब जेहूं दुख सागर भारा। सती बसही कैलास तब अधिक सोही मन माही मरहू न कोह जान कोही जुग स्वम दिवस सराही। तथापि उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की पराकाष्ठा को प्रमाणत करके बताया। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल पर केहूं चारी को परित्याग कर दिया, इसी कारण आपको ऐसा पद प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से जीवन में अति उत्तम व्रत बताया। पति देवता सितु मोहि मातु प्रथम नव करख महिमा अमित न सकही कही सकल आरद शेषत। संसारिक स्त्रियां सर्वपरायण होती है, यदि पति ने उसकी उचित बात कर भी उन्हें रोका तो वे तत्काल मेनका की तरह लाती है और वहाँ की सहायक तो उसे लड़ाई ठान देती है। बेचारे पति को नाकों चने चबाने पड़ते हैं और अंत में अनुयायी विनय करके मेनका से वह लौट के लिए राजी हो जाती है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत।

श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते श्री राम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से आज ट्यूसडे 18 अगस्त 2026 के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। चलिए आज की इस शिव सती चरित्र को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आरंभ करते हैं बालकांड की 56वें दोहा से।

सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रगत करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। गोस्वामी जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं,

तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि अस विचारी शंकरु मति धीरा चले भवन सुमिरन।

0: स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसे विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आज इसको यही विराम दूं आपकी ध्यान के लिए। बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ॐ अहिर्मा भू प्रदाको नमस्तघृतस्य कुल्यावृतस्य पथगणु। प्रिय श्रोतागणु, ये पवित्र ऋचा हमें ये संदेश दे रही है कि मनुष्य तो संसार के अंदर अगर जीना चाहता है तो किस प्रकार से जी, अपने जीवन से किस किस प्रकार की बुराइयों को हटा। वेद माता कहती है, ओम अहिर्माभू, संसार में अगर जीना चाहता है तो सांप मत बन, सांप के जैसे दुर्गुणों को जीवन में धारण मत कर। सांप के अंदर दुर्गुण क्या है? वो वातावरण से विषैले गैस को लेता है और स्वच्छ वायु को छोड़ देता है। उसी प्रकार संदेश दिया कि देखो, तुम संसार के अंदर से बुराई को ग्रहण करके अच्छाई का परित्याग मत करो, संसार से अच्छाई को जीवन में धारण करो और जीवन के अंदर सुखी रहो। दूसरा, सर्प के अंदर गुण होता है कि वह जब अपने घर में जाता है, प्रवेश करता है, तो वह सीधा होकर के प्रवेश करता है, लेकिन जब बाहर चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलता है। इसलिए संदेश दिया कि देखो, जब तू संसार के अंदर जीना चाहता है तो इस अपने जीवन के अंदर से टेढ़ेपन को हटा दे और सीधे होकर के प्रवेश कर। लेकिन मनुष्य बाहर बिल्कुल सीधा साधा होकर के चलता है, लेकिन जब घर में प्रवेश करने की बारी आती है तो टेढ़ा मेढ़ा होकर के प्रवेश करता, अर्थात कुविचारों को जीवन में लेकर के प्रवेश करता है। इसलिए वेद माता कहती कि अपने जीवन से इन बुराइयों को हटा। और आगे कहा, प्रताकून मस्तक घृतस्य कुल्यावृतस्य प्रथानु, कि हे मनुष्य, अगर तू जीना चाहता है तो याद रखना, तू अपने जीवन से बिच्छू वाला गुण हटा दे। आप सोचेंगे ये वेदमाता कैसे संदेश दे रही है, एक तरफ कहती सर्प मत बन और दूसरी तरफ कहती बिच्छू मत बन। एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है कि सांप के काटे सोवे, बिच्छू के काटे रोवे। सांप के काटने से मनुष्य अपने जीवन लीला को तो समाप्त कर लेता है, लेकिन जब बिच्छू काट लेना, बिच्छू सोने नहीं देता। और

सांप के अंदर हो सकता है बहुत ज्यादा जहर हो, बिच्छू के दुंब के ऊपर चाहे जीरो मात्र भी विष है, फिर भी वो पीछे अकड़ करके चलता है, पीछे अपने दुंब को अकड़ा करके चलता है। इसके द्वारा संदेश दिया कि देखो, तुम अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार से अकड़ करके मत चलो। तुम्हारे अकड़ के लिए तो एक तिनका ही मात्र काफी है। संसार के अंदर हम अकड़ करके चलेंगे तो जीवन में हम दुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि अकड़ना तो खास करके उन व्यक्तियों की पहचान होती है जिसमें जान नहीं होती है, झुकता वही है। जिसमें जान होती तो परमात्मा का यही पवित्र संदेश है, अपने जीवन में धारण करें। इति ओम सम, धन्यवाद।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम स्वधया परिहिता स्वधया पर्युधा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठता लोको निधनम।
2: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से मैं पंडित आकाशवंती पियति आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास की शुभकामना आप सभी श्रोताओं को है। श्रोतागण, इस उक्त मंत्र में कहा गया है कि संसार से प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए प्रस्थान करने के लिए अन्न जल और स्वसामर्थ्य से दूसरों का हित संपादन करो, श्रद्धा से आच्छादित रहो, दृढ़ संकल्प से सुरक्षित रहो, यज्ञ में प्रतिष्ठा प्राप्त करो। श्रोतागण, इस मंत्र का भावार्थ यह है कि संसार एक क्रीड़ा स्थल है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पाठ पूर्ण कर और यहाँ से प्रस्थान करना है। सभी को जाना है, हम यहाँ से प्रस्थान करें परंतु हंसते हुए प्रस्थान करें। इसके लिए वेद माता हमें चार साधनों का निर्देश कर रही हैं। वेद माता का यहाँ पर प्रथम प्रस्थान है, प्रथम निर्देश यहाँ पर है अन्न और जल के द्वारा तथा अपने जीवन को होम करके भी दूसरों का हित संपादन करो, अपने धन और धान्य से, अपने सभी साधनों से दीन दुखी और दलितों की खूब सेवा करो। दूसरा यहाँ पर निर्देश है कि श्रद्धा से आच्छादित रहो, आपका जीवन श्रद्धा से ओतप्रोत होना चाहिए। माता और पिता में श्रद्धा रखो, धर्म और सदाचरण में श्रद्धा रखो, अपने कर्म में श्रद्धा रखो। तीसरा निर्देश यहाँ पर है श्रोतागण, दृढ़ संकल्प से अपने व्रतों का पालन करो, जीवन के एक एक क्षण का सद्व्यय करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलो। और चौथा निर्देश यहाँ पर है कि यज्ञ में अर्थात श्रेष्ठ कर्मों में प्रतिष्ठा प्राप्त करो, सदा श्रेष्ठ और शुभ कर्म ही करो, बड़ों का आदर करो, छोटों से स्नेह करो, मेल मिलाप बढ़ाओ, संगठन बनाओ और इस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त करो। आज के लिए इतना ही, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: इल्वीशमप कव्यामपौरपः अपामार्गत्वमस्मदप दुष्वप्न्यं सुव।
1: जैसे अपामार्ग आदि औषधियां शरीर के रोगों को दूर कर सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही मनुष्य सभी दोषों, बुराइयों एवं रोगों से अलग होके शुभ कर्मों में प्रवृत्त होवे। शुद्धता का पालन मनुष्य के अच्छे कर्मों पर निर्भर है। वह अशुभ आचरण से पृथक होकर ही शुद्धता एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह अन्यों को भी शुद्ध आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करके उनके जीवन को सार्थक बनाता है। आँख, नाक, कान आदि बाह्य इंद्रियों के चंचलता रूपी अपराध से दूर रहें, बुरे स्वप्न एवं भय युक्त निद्रा न आवें एवं स्वप्न में आए बुरे विचार हमारे मन को अपवित्र न करें।
0: ओम मनस्त आप्यायताम वाक्त आप्यायताम प्राणस्त आप्यायताम चक्षुस्त आप्यायताम श्रोत्रं त आप्यायताम यत्ते क्रूरं यदा स्थितं तत् आप्यायताम निष्ठ्यायताम तत्ते शुध्यतु समहोभ्यः औषधे त्रायस्व स्वधिते मैनं हिंसिः।
1: हे शिष्य, अध्ययन करना ही तेरी तपस्या है। तेरा मन, तेरे प्राण, नेत्र, कान आदि इंद्रियां गुणयुक्त और निर्मल हो। तेरे अंदर कुसंस्कार और दुष्ट व्यवहार प्रवेश न करें। तेरा संपूर्ण व्यवहार और कर्म शुद्ध हो। प्रतिदिन तेरे जीवन में सुख की वर्षा हो। हे औषधि

0: विधि के समान मार्गदर्शक, आप अध्ययनशील शिष्यों की रक्षा कीजिए। हे शिक्षकजन, अपने शिष्यों को व्यर्थ ताड़ना मत दीजिए। सत्कर्म करने से सबकी उन्नति होती है, इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि सुशिक्षा पाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करें, जहाँ आवश्यक हो वहाँ ताड़ना भी करें। गुण ग्रहण कराने एवं विद्या ग्रहण कराने हेतु शिष्यों को अनुशासन में रखना आवश्यक है।
1: ओम यद् ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यच्छद्रे यदर्ये यदेनश्च क्रिमावयं यदेकस्याधिधर्मणि तस्यावयजनमसि।
0: गांव में हो या वन में हो, सभा में हो या मन में, सेवक की अवस्था में हो या अधिकारी की, किसी भी अवस्था एवं स्थान में कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार एवं पापाचरण न करें। कभी भी व कहीं भी निंदनीय कर्म से अपने आप को दूषित न करें। यदि जहाँ तक बन पड़े तो परमेश्वर के साथ सत्यता का व्यवहार करें। अपने कुटुंब एवं विद्वान के सामने सत्य एवं मधुरता का व्यवहार करें। राजसभा, विद्यासभा और धर्मसभा में भी सत्य एवं न्यायपूर्वक आचरण करें।

0: तुम्हारा।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
3: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। डर्बन में आयोजित 46वें सादिक शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी साझा चुनौतियों पर चर्चा करने और एक मजबूत सादिक के निर्माण के लिए एकत्र हुए, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल हुए। समुद्र तट से सटी सरकारी भूमि, ये शब्द पिछले गुरुवार से चर्चा में है, जब भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने पॉइंट डिस्नी समुद्र तट का दौरा कर सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच का जायजा लिया। कुछ संपत्ति मालिक अपनी समुद्र किनारे की जमीन की बाढ़ सार्वजनिक क्षेत्र तक बढ़ा रहे हैं। इसी बीच फेसबुक पेज PMIFO पर 2024 की मंत्री की एक पुरानी पोस्ट सामने आई, जिस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों के टिंटेड शीशों, विशेषकर चिकित्सा कारणों से दी जाने वाली अनुमति के लिए एक नया दिशा निर्देश ला रहा है। इसके तहत आगे की विंडस्क्रीन और साइड विंडो से कम 75% रोशनी अपनी आनी चाहिए। मंत्री उस्मान माउमेद के अनुसार इस संबंध में विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जाँच हेतु एक नई वेरिफिकेशन प्रणाली तैयार की जा रही है। विदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान समझौते के बीच अमरीकी सहयोगी ओमान को रास्ते में आने पर बम से उड़ाने की धमकी दी। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। एक जोरदार एंटीसाइक्लोन स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण नम और अस्थिर हवाएं बह रही हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह देश भर में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद को बादल छाए रहेंगे और देश के पूर्व, दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर वर्षा होगी। कभी कभी जोरदार वर्षा हो सकती है, खासकर ऊंचाइयों पर। कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 24, तटवर्ती इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर जोरदार बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे

समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। दोपहर बाद को लगूनों में समुद्र की स्थिति में सुधार आएगा। आज सुबह 6:30 बजे सूरज उगेगा और शाम 5:57 पर सूरज ढल जाएगा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुप्रभात श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:03 हुए हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति पर नजर डालते चले। ये विज्ञप्ति है मौसलमा ओहिया के निवासियों के लिए, जहां पर कल बुधवार 19 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 819 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस।
1: सुप्रभात श्रोताओं, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के लहरों पर रेडियो मॉरिशस का ये प्रसारण मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर से आप हमें सुन पा रहे हैं। मंगलवार की सुबह है, 18 तारीख, अगस्त का महीना, 2026 का वर्ष। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज की इस सेवा में। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। अभी कुछ ही पल में हम जुड़ेंगे संत वाणी कार्यक्रम के साथ, जो कबीर मंदिर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर आचार्य श्यामदास जी। साथ ही साथ 6:20 पर आप सुन पाएंगे श्रावणी मास पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम, और आज का ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा। आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य मोहन आर्य जी। 6:30 पुनः हम जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ, और समाचारों के उपरांत सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। तो आइए लेते हैं आज का सर्वप्रथम ये सुविचार। श्रोताओं, नियति के रास्ते नियत से होकर गुजरते हैं, क्योंकि अंत में आपके इरादे ही आपकी कहानी लिखते हैं। ईश्वर सभी का कल्याण करे, आज का दिन सभी के लिए मंगलमय रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए स्वागत करते हैं आचार्य श्यामदास जी का संत वाणी कार्यक्रम में।
4: आइए सुनिए आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संत वाणी।
5: बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाए, जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रम तम देत नशाय, भ्रम छुड़ाए पथ विकट को निकट लखायो नाम, तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धालु श्रोतागण, यह कार्यक्रम बोनतेर बाक्वा के श्री कबीर मंदिर की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। ईश्वर एक, मान्यताएं अनेक, इस विषय पर आधारित वक्तव्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सत्य ब्रह्म को तत्वतः दर्शाने के कारण ही ब्रह्म वैवर्त महापुराण एवं गुरु गीता आदि धर्म ग्रंथों में गुरु की महानता को बताते हुए भगवान वेदव्यास और भगवान शिव ने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, प्रकृति के ईश्वर, सूर्य, चंद्र, अग्नि, साक्षात परब्रह्म एवं तीनों लोकों में गुरु से कोई भी बड़ा नहीं कहकर नमस्कार किया है। जैसे गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु प्रकृति रिसाध, गुरुश्च चंदो नल रवि, न गुरुराधिकम कश्चित चित्र।

सुफलेषु केषु विद्यते गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्ता चाहने पर भी जीवों को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता और गुरु जीवों को मुक्ति प्रदान न करते हैं, इसीलिए सात दीप और नौ खंड अर्थात पूरी सृष्टि में गुरु से कोई भी बड़ा नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब ने यही कहा है, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए। जिस परमात्मा को ढूंढते ढूंढते इस जीवात्मा को कल्प बीत गया, फिर भी वह परमात्मा इस जीवात्मा को प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि परमात्मा तो आत्मा में ही है, पर यह जीवात्मा अज्ञानता के कारण परमात्मा को अपनी आत्मा में न ढूंढकर उसे बाहर ढूंढता है, इसीलिए इसको परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। अहंकार और अज्ञान ये दोनों अंधकार के रूप हैं। अतः जब मैं रूप अहंकार हृदय में रहता है तब हृदय में हरि की अनुभूति नहीं होती है, और जब हृदय में हरि की अनुभूति होती है तब मैं रूप अहंकार उसी प्रकार समाप्त हो जाता है जिस प्रकार दीपक रख देने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, जय खोजत कल्पो गयो घटहि माहि सो नूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परिगए दूर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिटी गया दीपक देखा माहीं। वह सत्य ब्रह्म अपना एक ही रूप को बहुत से बनाकर सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। उस ब्रह्म का स्वरूप को जो धीर पुरुष अपनी आत्मा में देखते हैं उन्हीं लोगों को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं। कठोपनिषद में यही कहा गया है, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति, तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषां। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेदांत शास्त्र के इस कथन के अनुसार ब्रह्म एक है दो नहीं। उस अद्वैत व्यापक ब्रह्म की प्राप्ति हृदय के अंदर आत्मा में होती है, किंतु उस अद्वैत व्यापक ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए द्वैत का सहारा लेना पड़ता है। द्वैत का अर्थ है जीव और ब्रह्म में भेद, अद्वैत का अर्थ है जीव और ब्रह्म में अभेद। द्वैत का सहारा लेने का तात्पर्य यह है कि द्वैत के बिना आराधना नहीं हो सकती और आराधना के बिना अद्वैत का ज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे यह मानव शरीरधारी जीवात्मा जब तक अपने से श्रेष्ठ एक ईश्वर ब्रह्म गुरु अथवा कोई भी अपना इष्ट देव नहीं मानेगा तब तक यह किसी की भी आराधना नहीं करेगा, और जब तक यह किसी की आराधना नहीं करेगा तब तक इसको अपने अंदर विद्यमान ब्रह्म का बोध नहीं हो पाएगा। अपने अंदर ब्रह्म का बोध होना ही आत्मबोध, आत्मज्ञान अथवा अद्वैत ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। इसी अद्वैत ब्रह्म ज्ञान से साधक भवसागर से पार होता है, वह
अद्वैत ब्रह्म ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है।

0: इसीलिए उपनिषद कहती है कि उस ब्रह्मज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए हाथ जोड़कर शास्त्रवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास ही जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थ गुरु मेवा भिगच्छत समी पात सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। द्वैत और अद्वैत ज्ञान वेद पुराण गीता भागवत रामायण एवं बीजक आदि सभी धर्म ग्रंथों में विद्यमान हैं। इनमें द्वैत ज्ञान को समझना सभी साधकों के लिए आसान है, किंतु अद्वैत ज्ञान को समझना अत्यंत कठिन है। परंतु कोई तत्वदर्शी संत गुरु मिल जाए तो वे अत्यंत कठिन अद्वैत ज्ञान को भी सरलता से समझा दें। अद्वैत ज्ञान को सरलता से समझाने के लिए ही जगतगुरु भगवान आदि शंकराचार्य ने वेदों का मंथन करके अद्वैत वेदांत लिखा है। अद्वैत वेदांत के वाक्य में ये है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात नित्य रहने वाला ब्रह्म सत्य है और चलायमान जगत मिथ्या है। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तुम हो। इस प्रकार जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान अद्वैत ज्ञान है। वेदांत शास्त्र का अहम् ब्रह्मास्मि इस वाक्य के अनुरूप ही सद्गुरु कबीर साहब का सोहम शब्द है। सोहम का तात्पर्य यह है, स वह ब्रह्म अहम् मैं ही हूँ। सोहम शब्द का साक्षात्कार सद्गुरु ही करा सकते हैं। जिस प्रकार हमको अपना ही मुखमंडल को देखने के लिए हमें दर्पण की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमको अपनी आत्मा में ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए हमें सद्गुरु का ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। इस लोक में वह कौन है जिसको प्राप्त करना दुर्लभ है? इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न के साथ ही भगवान शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में दिया है। जैसे किम दुर्लभम सद्गुरु स्थित लोके, इस लोक में दुर्लभ क्या है? दुर्लभ उसको कहते हैं जिसको मनुष्य सरलता से पा न सके। तो शंकराचार्य कहते हैं कि इस लोक में दुर्लभ क्या है, और वही कहते हैं कि सद्गुरु का मिलना ही अत्यंत दुर्लभ है। इन्हीं शब्दों के साथ आज वक्तव्य को विराम दिया जा रहा है। साहिब बंदगी, बंदगी साहिब।
1: अभी आप सुन रहे थे आचार्य महंत डॉक्टर श्याम दास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संतवाणी।

0: त्याग कर ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और चलिए इसी के साथ आज के इस भजन को यहीं पर हम विराम देंगे और श्रावण मास पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं जो मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा आचार्य मोहनाथ आर्य द्वारा। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: सर्वेभ्यो सादरम नमो नमः। मॉरिशस आर्य रवि वेद प्रचारिणी सभा की ओर से प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य मोहन आर्य श्रोत बंधु आज आप सभी के मध्य में वेद के एक मंत्र की व्याख्या को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका विषय है ईश्वर की उपासना से हमें क्या लाभ है। बंधुओं, परमात्मा ने इस दुनिया में हमें भेजा और उस ईश्वर की कृपा से हम सब लोग अपना ये जीवन चला रहे हैं। जो कुछ हमें दिख रहा है, जो कुछ इस संसार में हो रहा है, सब परमात्मा की कृपा है। हमें उस ईश्वर का धन्यवाद, उस ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना चाहिए। परंतु ये सामान्य जगत समझता है कि ईश्वर की उपासना से हमें क्या लाभ। तो आइए अब हम वेद के मंत्र को लेकर कुछ लाभ की चर्चा करेंगे। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद के 19वें अध्याय के 50वें मंत्र की व्याख्या की। तो यजुर्वेद में वो मंत्र आता है, देवी उषासा अश्विना सुत्रा मेन्द्रे सरस्वती

अलुम्नवाच मास्य उषाशाभ्याय ददुरिंद्रियम वसुवने वसुधेयस्य व्यंतु यज। बंधुओं, इस मंत्र की बड़ी सरल व्याख्या ऋषिवर देवदयानंद अपने उस यजुर्वेद भाष्य में करते हैं। मैं तो कहूँ कि ऋषिवर देवदयानंद की उस उदारता को देखना कि जहाँ वेद के मंत्र की व्याख्या या वेद के मंत्रों का अर्थ समझने के लिए एक व्यक्ति को अनेकों वर्षों तक अध्ययन करना होता है और बड़े तपस्या काल के पश्चात हम वेद के मंत्रों का अर्थ कर पाते हैं। परंतु ऋषिवर देवदयानंद को देखो और उनकी उदारता को देखो कि इतने कठिन वेद मंत्र जो कठिन संस्कृत में लिखे हुए हैं उनकी व्याख्या वो कितने सरल अर्थों में करते हैं। जहाँ आप अन्य विद्वानों को देखेंगे तो वो लोग संस्कृत की तो बात दूर, हिंदी भी इतनी कठिन लिखते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को समझ ही ना आए। परंतु उनका कारण ये होता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जी हम कितने विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन ऋषिवर देवदयानंद को देखना, कितने उदार मना वो व्यक्ति जो संस्कृत भी लिखे तो इतनी सरल अर्थों में, और बंधुओं उस यजुर्वेद के मंत्र की व्याख्या करते हुए ऋषिवर देवदयानंद लिखते हैं, संधि बेलायाम सयन आलस्य आदिकम विहाय ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति ते अतुलाम श्रियम प्राप्नुवन्ति। बंधुओं, ऋषिवर कह रहे हैं कि संधि वेलायाम, जो संधि वेला में शयन आदि आलस्य को छोड़कर ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनको क्या प्राप्त होता है? अतुलाम श्रियम प्राप्नुवन्ति, उनको अतुलनीय धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और केवल धन ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता बंधुओं, जो व्यक्ति सच्चे मन से सच्चे हृदय से ईश्वर की शुद्ध उपासना करता है वो व्यक्ति जो चाहे उसे वह प्राप्त हो सकता है। आवश्यक है कि हम शुद्ध परमेश्वर की शुद्ध उपासना करें। जब हमारे ऋषि मुनियों से पूछा गया कि जी ईश्वर की उपासना का क्या लाभ होगा, तो वेद का ये मंत्र तो बता ही रहा है कि ते अतुलाम श्रियम प्राप्नुवन्ति, परंतु अनेकों लाभ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे एक सामान्य सा हम उदाहरण लें तो हम इस दुनिया में दो कार्यों के लिए जन्म लेते हैं, एक होता है भोग और दूसरा होता है अपवर्ग। अर्थात परमात्मा ने हमें दो कार्यों के लिए इस दुनिया में जन्म दिया, भोग और अपवर्ग। अब ये भोग और अपवर्ग क्या है? भोग होता है अर्थात हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे उनका फल हमें भोगना है, और नए कर्मों को इस दुनिया में हमें भोगना है। पश्चात भोग के बाद हम लोग अपवर्ग ईश्वर की ओर बढ़े, उस ईश्वर के आनंद की ओर बढ़ते चले जाएं। परंतु इस दुनिया ने क्या किया, केवल कर्मों को भोगती चली गई भोगती चली गई, ईश्वर की उपासना उस ईश्वर के आनंद से कोई लेना देना नहीं रहा। इसलिए महर्षि भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा था कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कि हम इस दुनिया में भोगों को भोगने के लिए आए थे लेकिन भोगों ने ही हमें भोग लिया। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कि हम तपो को तपने के लिए आए थे, तपो ने ही हमें तपा दिया। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हम अपनी तृष्णाओं को जीर्ण करने के लिए आए थे लेकिन उन तृष्णाओं ने ही हमें जीर्ण कर दिया है। कालो नया तो वयमेव वयातात, हम काल को व्यतीत कर रहे थे लेकिन धीरे धीरे हम ही व्यतीत होते चले जा रहे हैं। तो बंधुओं, स्मरण रखना कि हमें भोगों को तो भोगना ही है परंतु साथ में अपवर्ग की प्राप्ति भी हम लोगों को करना है, अर्थात ईश्वर की ओर भी हमें बढ़ना है। अब ईश्वर की उपासना, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की प्रार्थना से क्या प्राप्ति होगी? तो बताया गया कि जो भोग हम भोगने के लिए आए हैं, अर्थात पिछले जो हमारे पुण्य कर्म थे उनका फल तो हमें पुण्य मिलने वाला है, परंतु जो

पिछले हमारे बुरे कर्म थे उनका फल हमें बुरा मिलने वाला है, और जब अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। परंतु जब बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा वहाँ पर हमें दुख भी होगा, दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी, हर प्रकार का कष्ट उसमें हमें होगा। और जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है उसे ईश्वर उन कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारा वेद का मंत्र कहता है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। हे प्रभु, हमें आत्मबल प्रदान करना, जो दुख दर्द कष्ट हमारे जीवन में आए उन्हें सहन करने की शक्ति हमें प्रदान करना। तो इससे और बड़ा हमें क्या चाहिए कि हमें ईश्वर की उपासना करने से दुखों को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाए, तो और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु की उपासना करें कि जिससे हमें आत्मबल प्राप्त हो, धन ऐश्वर्य प्राप्त हो, सुख शांति और तृप्ति प्राप्त हो, और हमारी आत्मा केवल एक ही वाणी निकाले, प्राप्तम प्रापणीयम भवति, आनंदम प्राप्त आनंदी भवति। कि प्रभु, हमें जो प्राप्त करना था प्राप्त हो गया, जो आनंद हमें चाहिए था वो हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये वाणी तभी निकलेगी जब हम लोग ईश्वर की उपासना करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इति ओम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: सुबह के ठीक 6:30 हैं।
3: नमस्कार, मंगलवार 18 अगस्त 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज की सुर्खियां इस प्रकार हैं। डर्बन में आयोजित 46वें सादिक शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी साझा चुनौतियों पर चर्चा करने और एक मजबूत सादिक के निर्माण के लिए एकत्र हुए, जिसमें प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम भी शामिल हुए। समुद्र तट से सटी सरकारी भूमि, ये शब्द पिछले गुरुवार से चर्चा में है, जब भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने पॉइंटिस समुद्र तट का दौरा कर सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच का जायजा लिया। आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों के टिंटेड शीशों, विशेषकर चिकित्सा कारणों से दी जाने वाली अनुमति के लिए नए दिशा निर्देश ला रहा है। इसके तहत आगे की विंड स्क्रीन और साइड विंडो से कम 75% रोशनी आनी चाहिए। और विदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान समझौते के बीच अमरीकी सहयोगी ओमान को रास्ते में आने पर बम से उड़ाने की धमकी दी। सादिक के सदस्य देशों के 16 नेता 46वें राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन के लिए कल सोमवार को डर्बन में एकत्र हुए। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम भी इस बड़े इलाकाई सम्मेलन में अपने समकक्षों के साथ उपस्थित रहे, ताकि खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य एक और अधिक मजबूत सादिक का निर्माण करना है।
4: डर्बन में सादिक के 16 सदस्य देशों के नेता सोमवार सुबह 46वें सरकारी व राष्ट्र नेताओं के शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन के लिए एकत्र हुए। इनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी शामिल रहे, जिनका स्वागत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने डर्बन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया। सादिक की अध्यक्षता संभाल रहे दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय समुदाय के भविष्य पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित होने के लिए सभी राष्ट्र नेताओं का आभार व्यक्त किया। औपचारिक समारोह के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री की उपस्थिति का भी विशेष उल्लेख किया गया।
5: फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस वी वेलकम ऑनरेबल Dr. Navi Chandra Ramgolan, Prime Minister.
4: लचीले, टिकाऊ और समावेशी औद्योगिकरण के तहत आयोजित इस 46वें शिखर सम्मेलन में बुनियादी ढांचे के विकास तथा कृषि और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में बदलाव पर विशेष

0: जोर दिया जा रहा है। उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण को और मजबूत करना है।
1: We must turn our borders into bridges and we must turn our resources into industries and we must turn our youthful population into a powerful democratic dividend that will benefit all the peoples of Southern Africa. And we must turn this solidarity that has been so strong over the years into a shared prosperity. And this summit must therefore inspire a new era of regional integration that delivers dignity, opportunity, and the hope of every citizen of Southern Africa.
0: इससे पहले सादेक के कार्यकारी सचिव एलियास एमपेडी मागुजी ने आज के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सादेक की रणनीतिक भूमिका पर जोर दिया, खासकर एक ऐसे समय जब दुनिया अनेक चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना कर रही है।
2: Our ambition must be to move beyond the export of raw materials and position SADC as a globally competitive center for beneficiation, value addition, manufacturing, innovation, and indeed the industrialization we are pursuing.
0: उद्घाटन समारोह में अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ तथा सादेक के पदमुक्त अध्यक्ष जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगागुआ के संदेश भी शामिल थे, जिन्होंने क्षेत्र में अधिक एकता और एकजुटता का आह्वान किया। उद्घाटन समारोह का समापन जिम्बाब्वे से दक्षिण अफ्रीका को सादेक की अध्यक्षता के आधिकारिक हस्तांतरण के साथ हुआ। शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों और अंतिम घोषणा की प्रतीक्षा के बीच नेताओं ने कई क्षेत्रों में प्रगति करने की अपनी इच्छा जताई। आर्थिक एवं औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, शांति और स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के प्रति मजबूती तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दक्षिणी अफ्रीका की आवाज़ को और मजबूत करना।
3: लगभग एक हफ्ते बाद फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत कल सोमवार 17 अगस्त को दो और पुलिस अधिकारियों से अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। ये हैं सेवानिवृत्त पुलिस सर्जेंट लुई क्लिफोर्ड मुइज, मिकाएल ओजेंड्रा और सर्जेंट विद्युत जीवन। माना जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ी रकम हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसे रिश्वत या अनुचित लाभ माना जा सकता है। मंगलवार 11 अगस्त को कांस्टेबल ऋषि गनौरी और सर्जेंट रामकृष्ण सिंह नंदराम से भी एफसीसी में पूछताछ की गई थी। ये जांच 30 मार्च 2024 को स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट की स्पेशल इंटेलिजेंस सेल की एक टीम द्वारा वाली दे प्रेत के एक निवासी के घर पर की गई छापेमारी के अभियान से संबंधित है। घटना के समय दोनों पुलिसकर्मी इसी यूनिट में तैनात थे और उस अभियान में भाग लेने वाली टीम का हिस्सा थे। समुद्र तट से सटी सरकारी भूमि, पिछले गुरुवार से ये शब्द बहुत सुनने को मिल रहे हैं, जब भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने समुद्र तटों तक पहुंच का जायजा लेने के लिए पॉइंटिस ने समुद्र तट का दौरा किया था, क्योंकि कुछ लोग अपनी समुद्र के किनारे स्थित संपत्ति की बाढ़ को इन सार्वजनिक स्थानों तक बढ़ाने की अनुमति दे रहे हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज पीमा एफओ पर समुद्र के किनारे एक आवास की खरीद को लेकर 2024 में मंत्री द्वारा की गई एक पोस्ट सामने आई, जिस पर शकील मोहम्मद ने कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए तुरंत जवाब दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉरिशस में समुद्र तट सभी के लिए सुलभ है, इसलिए कोई निजी समुद्र तट मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे भूखंड जरूर हैं जिन्हें सरकार लीज पर दे सकती है। प्रणव बिहारी, रजनी बिकर।
4: सीमांकन को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मॉरिशस की कानून प्रणाली तट और ज्योमेट्रिक चरण के बीच अंतर करती है। तट लो वाटरमार्क और हाई वाटरमार्क के बीच स्थित होता है। इस क्षेत्र पर स्वतंत्र आवाजाही कानून द्वारा संरक्षित है और इसे अवरुद्ध करना प्रतिबंधित है, और इसे हाई वाटरमार्क से 1807 से तय किए गए नियमों के अनुसार जमीन के भीतर की और लगभग 81 मीटर से अधिक की चौड़ाई में ज्योमेट्रिक चरण शुरू होते हैं। ये द्वीप के चारों ओर फैले हुए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 2110 हेक्टर है, और ये सभी पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है। कानून के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति इनका मालिक नहीं बन सकता है।

0: लेकिन इससे उनका लीज पर दिया जाना बाहर नहीं होता है, जैसा कि होटलों और कुछ रियल एस्टेट परियोजनाओं के मामलों में पहले से ही है। हालांकि सरकार द्वारा दिए गए ये लीज किसी भी स्थिति में तट के निजीकरण की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए पहुंच को सीमित करने के वास्ते कोई विभाजन या बैरियर नहीं लगाए जा सकते। वही नियम सार्वजनिक समुद्र तटों पर भी लागू होते हैं, जिनमें बीच अथॉरिटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हाई वाटर मार्क और लो वाटर मार्क से 100 मीटर की दूरी के बीच का क्षेत्र शामिल है।
1: आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों के टिंटेड शीशों, खासकर चिकित्सीय कारणों से दी जाने वाली अनुमति के आवेदनों को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश लागू करने की तैयारी कर रहा है। वाहन की सामने की विंड स्क्रीन और आगे की साइड विंडो से कम 75% रोशनी अंदर आनी चाहिए। हालांकि 5% की अतिरिक्त छूट की अनुमति होगी। नए दिशा निर्देशों में ये भी स्पष्ट किया जाएगा कि किन बीमारियों के मामलों में अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा और दस्तावेजों की जांच के लिए एक वेरिफिकेशन प्रणाली भी लागू की जाएगी। आंतरिक परिवहन मंत्री उस्मान माउमेद के अनुसार ये दस्तावेज फिलहाल तैयार किया जा रहा है। मंत्री उस्मान माउमेद को सुनते हैं, जिनसे बात की राजमिला सीतामणि ने विवरण अभी उदय का है।
2: रास्ते पर ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनके शीशे टिंटेड हैं, यानी बाहर से आसानी के साथ अंदर में क्या हो रहा है दिखाई नहीं दे सकता है, परंतु गाड़ी के आगे और उसके दाएं व बाएं के शीशे ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होने चाहिए, ये नियम के अनुसार है। फिर भी ऐसे भी लोग हैं जिनकी चिकित्सा संबंधी समस्या है, तो उन लोगों के लिए नियम में कोई सुधार नहीं लाया गया था। हमने एक दस्तावेज तैयार की है जो अन्य देशों में इसी प्रकार की स्थिति पाई जाती है और वहां पर किस तरह के कदम उठाए जाते हैं इस पर भी हमने उसको शामिल किया है। इस दस्तावेज में हमने नई गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देशों को शामिल किया ताकि भूमि व परिवहन मंत्रालय के परमानेंट सचिव ये फैसला ले सकेंगे कि उस व्यक्ति की गाड़ी के आगे दाएं व बाएं के शीशे टिंटेड होने चाहिए या नहीं।
1: अगले महीने 10 और 11 सितंबर को मॉरिशस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के महानिदेशक दाहन तांग की मेजबानी करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य मॉरिशस और विपो के बीच सहयोग को मजबूत करना है, साथ ही ये बौद्धिक संपदा और नवाचार को बढ़ावा देने से जुड़े कई मामलों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। विदेश मामलों के जूनियर मिनिस्टर हाजे नलसिंगन के अनुसार चर्चा मुख्य रूप से पैरेलल इंपोर्ट लाइसेंसेज और पेटेंट पर केंद्रित होगी। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर व्यापार और स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ कई कार्य सत्र आयोजित किए जाने की योजना है। मंत्री राजे नलसिंगन को सुनते हैं, जिनसे बात की राजमिला सीतामणि ने, विवरण अशिता रघु का है।
3: Donc le visa Fairly avec beaucoup de précautions, le visa Fairly, pourquoi pas baissement de prix, mais bien aussi assure la qualité. Mais pas juste le parallèle importation, parallèle licensing, on a plusieurs manichures qui nous visa amendent nos bonnes législations. Donc il y a une occasion, nous gagnons pour parler, une discussion avec le directeur général là, et nous faisons une requête aussi, et il y a les autres experts qui vous viennent Maurice bientôt, pour aider nous pour développer une stratégie.
1: और विदेश के खबरों में, फॉक्स न्यूज़ के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बम से उड़ाने की धमकी दी है यदि वो ईरान के साथ उनके प्रशासन की अपनी बातचीत के रास्ते में आता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए अमेरिका और ओमान तेहरान के साथ अलग अलग बातचीत कर रहे हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं। ये अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान लगभग 6 महीनों से काफ़ी हद तक बंद रहा है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। एक जोरदार एंटीसाइक्लोन स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण नम और स्थिर हवाएं बह रही हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह देश भर में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद को बादल छाए रहेंगे और देश के पूर्व, दक्षिण तथा सेंट्रल प्रांतों पर वर्षा होगी। कभी कभी जोरदार वर्षा हो सकती है, खासकर ऊंचाइयों पर। कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो पर जोरदार बारिश होगी, ऊंचे इलाकों पर कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस,

नेल आंखों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, हवा पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। दोपहर बाद को लगूनों में समुद्र की स्थिति में सुधार आएगा। सूर्योदय 6:30 बजे और आज शाम 5:57 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम कादर कुन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय सुबह के 6:44 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। एसएसओ रोड इलो कांस्टेबल में 66 साल की 66 इयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती बुलक पैदाशी नाम पुनीत और जो बंधु नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज सुबह 10 बजे उनके पति श्री राधाकिशन बुलक के घर एसएसओ रोड इलो कांस्टेबल से उठाकर कांस्टेबल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। सिवेंचिनियन रोड गुडलैंड्स में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री मदेमुतु चिनियन जो मुगेश चिनियन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे विलेन चिनियन के घर सिवेंचिनियन रोड गुडलैंड्स से उठाकर बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। स्वामी शिवानंद एवेन्यू फ्लोरियाल में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कमलावती राधा लक्ष्मी नरचा पैदाइशी नाम भी सिसर और जो अनिता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पति सिवन रचिया के घर स्वामी शिवानंद एवेन्यू फ्लोरियाल से उठाकर आले ब्रियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रेलवे रोड हाईलैंड्स में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री धनीलाल सुलिक जो सूर्यदेव नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले क्यूपिप नगर पालिका के पुराने कर्मचारी थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती बसंती सुलिक के घर रेलवे रोड हाईलैंड्स से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 11 स्थिति से आशा दीपिने में 25 साल के 25 ईयर्स ओल्ड के श्री किसावेन वीरेन जो किसावेन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पिता श्री वीरेन कृष्णा के घर नंबर 11 स्थिति से आशा देपिने से उठाकर खौन रोजाली की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रामपॉइंट स्ट्रीट विल्नोमीबर्ग में 37 साल के 37 ईयर्स ओल्ड के श्री कमलेश आदिंगाडू जो मोगाम्बो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी माँ श्रीमती लक्ष्मी आदिंगाडू के घर हॉम स्ट्रीट विल्नोमीबर्ग से उठाकर तोंबोमीबर्ग की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शिवाला रोड मर्द ऑस्ट्रेलिया में 46 साल की 46 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शास्त्री कावलीसव पैदाइशी नाम बिगन और जो वीणा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर शिवाला रोड मर्द ऑस्ट्रेलिया से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मंडपलेन मिडलैंड्स में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री राज नोयन जो बुबुनु नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके घर मंडप लेन मिडलैंड से उठाकर मिडलैंड की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मोरा पेटिट रिवियर में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री शिवप्रसाद सिंह मंगला जो अजीत नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। वे बी 24 बंगाली स्ट्रीट लातो के निकट साबल रहते थे। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे मोरा पेटिट रिवियर से उठाकर सिपाही ब्रुले वाले दे प्रेट की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। सावन रोड नोवेल फ्रांस में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धर्मावती मंदारी पैदाइशी नाम रामचंद की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे संजीव मंदारी के घर सावन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर मारी जाने

0: रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कोंगुल बोमेग्रोनिये में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री विती कतों, जो सिंगा नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर कोंगुल बोमेग्रोनिये से उठाकर कोंगोपाल शामुनि की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बसंत राय रोड लाहौजा में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री अशोक कुमार सिपुल, जो संजय नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। ओकीदे लेन अमोरी में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की कुमारी नगेश्री रामसरन, जो सुमंती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर उनकी मां सुचिता माता बदल के घर ओकीदेलेन आमोही से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट नून। आनंद रोड लेस्पेरांस त्रिबुशे में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमावती रामलगन, पैदाइशी नाम गोबिन और जो परमावती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे विक्रम रामलगन के घर आनंद रोड लेस्पेरांस त्रिबुशे से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1:30। ग्रेसलिन खुशनुआ में 48 साल के 48 ईयर्स ओल्ड के श्री सालेश कुमार गुडो, जो कोको नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती रीना गुडो के घर ग्रेसलिन खुशनुआ से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:30। पालमा एवेन्यू कात्रो कोको में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय रामेश्वर, जो ये शुफ टैक्सी नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुरेखा रामेश्वर के घर पाल्म एवेन्यू कात्रो कोको से उठाकर लावांचुया के शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। फीफा ने अपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर केविन लामू को निकाल दिया। सख्त बाय फीफा। केविन लामू ने प्रेसिडेंट इन्फांटिनो के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसीलिए उसे निकाला गया। केविन लामू ने कहा था कि इन्फांटिनो ने जो प्लान बनाया था प्राइवेटाइजेशन का, वो केवल इन्फांटिनो का था, फीफा का नहीं। प्रोजेक्ट आगे नहीं गया पर केविन लामू को जाना पड़ रहा है। फिर भी इन्फांटिनो अभी भी गर्म तेल में है। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में कल कार्डिफ और रेक्साम के बीच मैच ड्रॉ गया 1-1। मैच के अंतिम सेकंड में कोलविन ने कार्डिफ के लिए इक्वलाइज किया। स्पेन के ला लीगा में भी ड्रो मैच, डिपोर्टिवो 1-1। कोपा इटालिया में पीसा और एम्पोली के बीच मैच ड्रो 1-1, पेनाल्टी पर पीसा की जीत। फिर सासुएलो 3 सेसेना 0, क्रिमोनेजे 2 सामदोरिया 0, पालेर्मो 2 लेचे 0। आज से यूईएफए चैंपियंस लीग के प्ले ऑफ खेले जाएंगे, मतलब प्ले ऑफ पार करके सीधे ग्रुप स्टेज में। दिनामो जागरेब का मुकाबला विकिंग टीम से, फेनेरबाचे ओलंपिक, लियों लेव्स्की सोफिया एके एथेंस, बाकी मैच कल खेले जाएंगे। क्लब फ्रेंडलीज में आज होफेनहाइम का मुकाबला बायर्न म्यूनिख से होगा। फ्रांस न्यूज। स्पेन का कप्तान स्वदेश लौट आया। कल वो बार्सिलोना पहुंचा अपना ड्रीम मूव पूरा करने के लिए। बार्सा सिटी को 65 मिलियन देगा रोड्री के लिए। सिटी के साथ 12 ट्रॉफीज जीत पाया था, 4 प्रीमियर लीग, 2 एफए कप, 3 ईएफएल कप और 1 चैंपियंस लीग। फिर स्पेन के साथ चैंपियन बना था, वर्ल्ड चैंपियन, जहां उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी दिया गया था। रोड्री जा रहा है तो जवान खिलाड़ी आ रहा है, अयूब बुआदी आ रहा है सिटी में। लिल का मोरक्को इंटरनेशनल खिलाड़ी बुआदी का दाम लगभग 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का है वर्ल्ड

0: कप में बुआदी मोरक्को के साथ 5 मैच शुरू कर पाया था। केवल 18 साल का है मिडफील्ड खिलाड़ी। बुआदी के अलावा सिटी चेल्सी से एंजो फर्नांडेज को भी साइन करना चाहता है। पहले से इंग्लैंड के इंटरनेशनल खिलाड़ी एलियट एंडरसन को ब्रिटिश रिकॉर्ड फी पर साइन कर लिया है मैनचेस्टर सिटी ने। चेल्सी ने पेड्रो नेटो पर 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का दाम रखा है। अल हिलाल, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल और टोटनहम हॉटस्पर सब के सब नेटो के दीवाने हैं। टीम टॉक के अनुसार लिवरपूल पेरिस सैन जर्मेन से ब्राडली बारकोला के साथ इब्राहिम एनजाय को भी साइन करना चाहता है। टोटल 155 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, 155 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर दोनों को खरीदना चाहता है लिवरपूल, लेकिन पेरिस सैन जर्मेन इससे ज्यादा पैसा चाहता है। क्रिकेट, श्रीलंका टेस्ट सीरीज के पहले मैच में अभी के लिए 3 दिनों के खेल के बाद भारतीय टीम की स्थिति मजबूत है। टीम इंडिया ने 462 रनों का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम के पहले इनिंग्स में 284 रन पर ऑल आउट हुई, यानी 178 रन पीछे। मानव सुतर 4 और जडेजा 3 विकेट ले पाए, सो 178 रनों की बढ़त लिए भारतीय टीम आज चौथे दिन के खेल में ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर डिक्लेयर करना चाहेगी। एडवांटेज टीम इंडिया 178 रन की लीड, काफी अच्छी लीड है। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: This is Radio Mauritius.
2: Minister of Labour and Industrial Relations और MBC के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बा नू थावाई नू लाविनिय। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आसिया इंजीनियरिंग एंड इंटीरियर डेको लिमिटेड जुन वालोंचिना फिनिक्स में पावल जाला 4 बरिस के लिक्स पेयंस होला कैबिनेट मेकर के तलाश में बा। जस्ती जानकारी खातिन 5775-5933 पर कॉल करिए जा। अपन एप्लीकेशन mimranbokus@gmail.com पर भेजिया जा। रिटेल ट्रेड के सेक्टिया में अल बरकत मार्केटिंग लिमिटेड जुन रॉयल रोड ओयता वाकवा में पावल जाला स्टोर कीपर और सेल्समैन के तलाश करता। जस्ती जानकारी खातिर फोन करिया 5827-0807 या 6840-632 पर कॉल करिया। आखिरी तारीख बा 21 अगस्त 2006। द क्यूबिकल लॉट रॉयल रोड फिनिक्स के बूलवर्थ मॉरिशस लिमिटेड कास्कावेल के आउटलेट खातिर शॉप असिस्टेंट के तलाश करत बा। जेकर SC बा, जस्ती जानकारी खातिर कॉल करिया 404-6090 पर और नहीं तर 5798-9536 पर। अंतिम तारीख बा 31 अगस्त 2006। क्लोवेल फिनिक्स और वालोंचिना में हाउसमेड और करियर के जरूरत बा। टेलीफोने करिया 6964031 और नहीं तो 6976458 पर। बेल्वी मोरेल में एगो माली या गार्डनर के जरूरत बा। 412-6925 पर कॉल करिया। कुंगुमा में प्राइवेट कार चालक माली के जरूरत बा। कॉल करिया 261-4524 या 270-1122 पर। गुडलैंड्स में हाउसमेड के जरूरत बा। जस्ती जानकारी खातिर टेलीफोने करिया 282 59

17 या 282-5918 पर कॉल करिए। मैकेनिक के सिक्तिया में स्कूल लेन पिचिगाफ्टे के सुदेश टायर सेंटर लिमिटेड दो बरिस के तजुर्बा होला टायर मैन और व्हील अलाइनमेंट टेक्नीशियन के खोज करत बा। जस्ती जानकारी खातिर 578-712-34 पर कॉल करिया। अंतिम तारीख है 1 सितंबर 2026। जॉब कॉन्ट्रैक्टर के सेक्टर में प्लॉट नंबर 6 बेल सूस पॉम्प्लेमूस के एएम इलेक्ट्रिकल एंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड एगो इलेक्ट्रिशियन के खोज करत बा। जस्ती जानकारी खातिर कॉल करिया 5751-0599 पर। डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ जनरल मौशोजीज के सेक्टिया में मामजल जानी गुडलैंड्स के सुपर प्रोफाइल लिमिटेड दुबरीस के अनुभव होला लॉरी ड्राइवर और हेल्पर के खोज करत बा। जस्ती जानकारी खातिर 5255-0391 पर कॉल करिया। अंतिम तारीख है 6 सितंबर 2026। मैकेनिक के सिक्तिया में रिजर्वॉयर रोड गुडलैंड्स के इको डिजाइन कंसल्टिंग लिमिटेड एगो वर्कशॉप एडमिन के खोज में बा, जेकर HSC बा और 3 बरिस के लेक्सपेयंस बा। सकी कॉल करे 5735-7750 पर। अंतिम तारीख है 30 अगस्त 2026। जॉब कॉन्ट्रैक्टर के सेक्टिया में महादेव रोड मामजल जानी गुडलैंड्स के BCM एक्सकावेशन वर्क्स लिमिटेड एगो एडमिन क्लर्क के खोज करता, जेकर HSC बा सकी टेलीफोन करे 580-32-986 पर। न्यू रोड रोशनुआ के गाराज पुल लिमिटेड 3 बरिस के तजुर्बा के साथ होला एगो कार पेंटर के और संगे पैनल बीटर के तलाश करता। जस्ती जानकारी खातिर टेलीफोने करिया 5757-2905 पर और सकी हौजा सीधा जाई के। रॉयल रोड नुवेल फ्रांस के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से करल एगो सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन के खोज करत बा। जस्ती जानकारी खातिर टेलीफोने करिया 5291-1881 पर। अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2026। प्लेजांस शॉपिंग रोजबेल के पानाहोची मॉरिशस से प्राप्त करल कैंडिडेट लोग के वेटर कैशियर और किचन हेल्पर के नौकरी खातिर आमंत्रित करल बा। जस्ती जानकारी खातिर टेलीफोने करिया 4549603 और नहीं तो 5421-9327 पर। अन्यतस खुद सके हौजा पर जाकर अपना अर्जी देवे के। त ई रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस तथा MBC के मिलल जुलल सहयोग से नू थावाई नू लाविनिया। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियां। ये विज्ञप्ति है रोज हिल के आसपास के इलाके जिनमें है एवेन्यू बियतो, कुछ इलाके एवेन्यू कोदेगौड स्टैनले, कुछ इलाके सेंट एन एवेन्यू एमिल लावाल एवेन्यू क्रेटिन के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल बुधवार 19 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के शाम के 5:30 बजे के बीच, 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ शिबेल के आसपास के कुछ इलाके जिनमें है रेजिडेंस शिबेक

Central Municipal Sir Gaëtan Duval, Residence Lotus, WMA Shebeck के निवासियों को भी सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार 18 अगस्त को सुबह साढ़े

0: के साथ आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
3: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

0: रेडियो मॉरिशस की लहरों पर सुबह का नजराना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, पुनः उपस्थित हो चुकी हूं आपकी सेवा में। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 7:05 होने जा रहे हैं। मंगलवार की सुबह है और बिल्कुल 18 तारीख 2026 का वर्ष और आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो, दिल से बस यही हम प्रार्थना करते हैं। और बेहतरीन मज़ेदार गीतों के साथ सजाया हुआ आज का ये सफ़र हम अभी थोड़ी ही देर में प्रस्तुत करेंगे, पर उससे पहले प्रथा अनुसार लेते हैं आज का चिंतन, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शांति मुहाबिया। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: अभिमान और स्वार्थ ऐसी तीक्ष्ण तलवारें हैं जो मनुष्य की आयु को काटकर उसे मृत्यु की ओर ले जाती हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति अभिमान और स्वार्थ से दूर ही रहते हैं।

0: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
0: रेडियो मॉरिशस,
1: झलकियां,
0: झलकियां।

बिल्कुल सुबह का नजराना कार्यक्रम के बीच रखा हुआ आज का ये सेगमेंट है जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आज कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजराना कार्यक्रम के बाद। बिल्कुल पहले हम आपको बता दें कि जी हाँ, सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इस वक्त प्यारे पुराने गीतों का ये सफ़र जारी रखेंगे। थोड़ी ही देर में 8 बजे के भोजपुरी समाचारों के साथ जुड़ेंगे और फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी अभिनेत्री के साथ जो नेपाल की है लेकिन भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक अलग ही जगह बनाई है और इसके लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और बिल्कुल 8:50 पर हम जुड़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम में, जहां पर हमारी धरोहर में हमारे साथ जुड़ेंगी किरण जानकी और कुछ बेहतरीन जानकारियों के साथ वे सेगमेंट को सजाती हैं। साथ ही साथ भोजपुरी गीत का एक बहुत ही प्यारा सा आनंद उठाते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और उसके तुरंत बाद 9 बजे के समाचारों के साथ जुड़ेंगे। 9 बजे के समाचारों के बाद बेशक आज की चर्चा का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा और आज की चर्चा के कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे पर। बिल्कुल आज हमारे साथ जुड़ेंगी सुमिता सरकार जो इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित रहेंगी और डॉक्टर संयुक्ता आज की हमारी मेहमान होंगी। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पाएंगे, साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर आप इसे देख पाएंगे और MBC ऑनलाइन पर आप इस कार्यक्रम को दोबारा से देख पाएंगे। डेफिनेटली इस कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। बेशक इसी के साथ यहाँ पर कई सारे ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं और जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम 9 बजे से 10 बजे के बीच, 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम, भक्तिमय गीतों का ये कार्यक्रम रहेगा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे ज्ञान चक्र कार्यक्रम जो विशेषकर श्रावण मास पर आधारित है और आज का ये कार्यक्रम सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसके तुरंत बाद वेद सुधा का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा जिसमें आचार्य सुदेश बद्री जी हमारा साथ देंगे। भक्तिमय भजनों को जारी रखा जाएगा तुरंत उसके बाद। 11 बजे तक मैं और आपका साथ रहेगा और बिल्कुल 11 बजे के समाचारों के बाद आप विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे जिसकी शुरुआत होगी उर्दू कार्यक्रम के साथ और ये कार्यक्रम शम्मी फरोसा लेकर आएंगी सैयदा सुबाई। 12 बजे सौंदर्य लहरी तेलुगु भाषा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी प्रस्तुतिकरण होगी वर्षा द्वारा। 12:30 बजे सीताबाई दरमिया लेकर आएंगी मराठी कार्यक्रम। 1 बजे RSC की प्रस्तुति में होगा तमिल भाषा का कार्यक्रम। 1:45 बजे आप एंजॉय कर पाएंगी गुजराती गीतों को अमिता की प्रस्तुति में। दोपहर के 2 बजे डेविड की प्रस्तुति में होगा मैंडरीन का कार्यक्रम। ये चलेगा 2:30 बजे तक और 2:30 बजे आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर आएंगी रोशनी। ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा शाम के 4 बजे तक। शाम के 4 बजे पुनः तमिल भाषा का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे कलाईवानी वीरन द्वारा। शाम 5 बजे भूले बिसरे गीत लेकर आएंगी उषा जो चलेगा शाम के 6 बजे तक। 6 बजे देश विदेश की खबरें समाचार बुलेटिन में। 6:30 बजे पुनः विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का गुलदस्ता सजाया जाएगा जिसकी पहल होगी हांगकांग द्वारा मैंडरीन कार्यक्रम के साथ। शाम 7 बजे पुवाना लेकर आएंगी तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे कृतिका की प्रस्तुति में होगा तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 7:50 पर श्री रीश रामा की प्रस्तुति में मराठी

गीतों का कार्यक्रम 8:10 पर भजले प्रभु का नाम भक्ति में ये यात्रा में आपका साथ देंगी अनीता। रात के 8:40 पर महफिल शब कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा निसार अख्तर द्वारा, और उसके तुरंत बाद 9 बजे से लेकर 11 बजे तक भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, जिसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी आरजे प्रताप सिंह द्वारा। रात के 11 बजे से 12 बजे तक आप एंजॉय कर पाएंगे पुराने गीतों का सफर सुनहरे पल में, जहां पर नीतू शाह आप सभी का साथ देंगी। और रात के 12 बजे से कल सुबह 5:30 बजे तक आप सुन पाएंगे ओवरनाइट प्लेलिस्ट, जो सजाई जाएगी हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा। वैसे आपको याद दिला देते हैं कि 5:30 बजे से 6 बजे के अंतर्गत आप सुन पाएंगे विविध संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम, जो श्रावण मास के उपलक्ष्य में आधारित रहेगा, जिसमें आप सुन पाएंगे सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन, सनातन धर्म मंदिर परिषद, हिंदू महासभा, आर्य सभा मॉरिशस, गहलोत राजपूत महासभा और आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा हमारे आचार्यों द्वारा दिए गए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसे श्रवण करके हम इस श्रावण मास को और भी पावन बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये थी सूची हमारे रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रमों की। वैसे हम आपको ये भी बताते चले, दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच मैं एक बार फिर आप सभी की सेवा में उपस्थित रहूंगी उड़ान की कहानी कार्यक्रम को लेकर रेडियो मनोरंजन के लहरों पर। आज हमारे साथ जुड़ेंगी श्रीमती श्रेष्ठ बाल गोविंद, और श्रेष्ठा जी जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो अवश्य आप हमारा साथ दीजिएगा दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन के लहरों पर। चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को जारी रखते हैं और लाजवाब गीतों से सजाया हुआ ये कारवां आगे बढ़ाते हैं कुछ ऐसे ही प्यारे सुने अनसुने गीतों के साथ।

तलत महमूद की लाजवाब सी आवाज और अनहोनी फिल्म से लिया हुआ ये गाना भाई, खुशी से बीते दिन, खुशी से बीते दिन हर रात एक सौगात हो, जिस तरफ आपके कदम पड़े वहां फूलों की बरसात हो। हाय, ऐसा कोई लिखकर भेज दे तो कितना प्यार आता है उन पर। और प्यार भरे गीतों के इस सफर में हम भी तो प्यार ही बरसा रहे हैं, और प्यार बरसाना कोई छोटी बात नहीं। 7:21 आज का दिन सभी के लिए बहुत ही प्यारा बीते, बस दिल से यही हम सभी के लिए प्रार्थना करें। कई बार होता है ना कि हम दूसरों के बारे में इतनी कई बार गलत या कड़वी भावनाएं अगर दिल में पाल लें तो भाई कड़वापन तो हमें भी मिलना ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए तो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं पर दिल से ऐसी भावना निकलनी चाहिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स कैसे अपने आप जगह पर लगने लगती हैं, समस्याएं बस किनारे होने लगती हैं और रास्ता साफ नज़र आने लगता है। और ऐसे लाजवाब गीतों के साथ भाई हम तो यहाँ से दवाई का डोज भेज रहे हैं आपके लिए, और बस प्यार भरे गीतों को आप भी दिल से सुन रहे हैं यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ चलिए नया अंदाज फिल्म से लिए हुए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर साहब की आवाज़ में, दो मीठे बोल आपके और किसी और के भी भाई पूरे दिन को सच में बदल सकता है। कहते हैं ना कि प्यार भरी बातें किसी से आप बोल दो ना, तो ये जो बातें हैं, ये बातों की जो मिठास है वो किसी के लिए एक बहुत जादुई काम करती है। तो चलिए इस जादू को अपनाते हुए आपके लिए ये प्यारा सा गाना ले आए हैं हम।

0: भाई प्रभाव करना ही है तो किसी के मन पर ऐसा प्रभाव डालिए कि वो हमेशा आपके बारे में अच्छी बातें सोचे, ना कि आपके बारे में सोच सोच कर उसके आंखें नम हो जाएं। और ये प्यारा सा गीत उजाला फिल्म से लिया हुआ था, भाई तेरा जलवा जिसने देखा, लता जी की प्यारी सी आवाज, 1959 के दौर का गाना। और ऐसे ही जलवों के साथ गानों का ये सफर हम जारी रखेंगे। भाई कहते हैं ना, रोज सुबह आंख खुलना ही जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शिकायतें छोड़कर शुक्रगुजार रहना बहुत जरूरी है। आभार प्रकट कीजिए, कृतज्ञ रहिए, ग्रेटफुल रहिए कि कम से कम आज आंख तो खुली, कम से कम भगवान ने हिम्मत तो दी आपको कुछ करने की, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे दोस्त। और चलिए यहाँ पर 7:32 लाजवाब गीतों का ये सफर जारी रखते हैं। और अभी थोड़ी ही देर में छोटी सी बात जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, आते हैं उसको लेकर थोड़ी ही देर में।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
0: राज हट और 1956 के दौर का ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में 7:32।

7:41 और फिल्म कन्हैया का ये गीत था। मुकेश साहब की आवाज़ में 7:41 हो चुके हैं और चलिए आपकी बेसब्री से इंतज़ार बस यहीं पर ख़त्म होती है और छोटी सी बात में आपका हम स्वागत करते हैं, जहां पर हम कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर आते हैं जो ज़िंदगी को एक अलग मोड़ देती है, एक अलग मायना देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। चलिए आज की ये कहानी है एक टूटे हुए पंख की। एक घने जंगल में एक छोटा सा पक्षी रहता था। वो बाकी पक्षियों की तरह भी ऊंचा उड़ने का सपना देखा करता था। एक दिन एक बहुत तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि छोटा पक्षी पेड़ से टकराकर गिर गया और उसका एक पंख घायल हो गया। अब वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। बाकी पक्षी उसका बेहद मजाक उड़ाते थे और कहते, अब तुम कभी आसमान में उड़ नहीं पाओगे बेटा। ये सुनकर पक्षी बहुत दुखी हुआ। वो कई दिनों तक अकेला बैठा रहा, लेकिन एक सुबह उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, अगर मेरा एक पंख टूटा है तो क्या हुआ, मेरी हिम्मत तो अब भी जिंदा है। उस दिन से उसने रोज कोशिश करना शुरू कर दिया। वो थोड़ा उड़ता फिर गिर जाता, लेकिन हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपने मजबूत पंख और हिम्मत से सहारा बस जुटाया, फिर से उड़ना सीख लिया। एक दिन वही छोटा सा पक्षी सबसे ऊंचा उड़ रहा था। अब बाकी पक्षी उसे हैरानी से देख रहे थे। पक्षी मुस्कुराया और बोला, उड़ान पंखों में नहीं होती, उड़ान तो हौसलों

से होती है। दोस्तों, अगर दिल में हिम्मत और विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी कमजोरी भी हमें रोक नहीं सकती, असंभव भी संभव बन जाता है। और ये कहानी हर एक इंसान पर लागू पड़ती है। कई बार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हम इतनी बार गिर चुके हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, चाहे फिर वो घर पर हो, चाहे फिर वो काम में हो। लोग क्या सोचते हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, जो लोग हमें बातें सुनाते हैं, जली कटी सुनाते हैं, यही वो लोग होंगे जो आपकी कामयाबी पर आपसे हाथ मिलाएंगे और आपसे कहेंगे, भाई हमें तो पूरा यकीन था कि तुम कर दिखाओगे। तब मुस्कुराकर आप जरूर कहिएगा कि आपकी इस बातों के वजह से ही मैं कर पाया हूं या मैं कर पाई हूं। दे दीजिएगा उनको वो क्रेडिट कि आप नहीं होते तो भाई हमारा क्या होता, और फिर दिल ही दिल मुस्कुराइएगा। आशा करते हैं आज की छोटी सी बात ने आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी भर ही दी होगी, क्योंकि हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। इसी बात पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तो दे दीजिए।

चलिए गाते हंसते मुस्कुराते आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी के नामों को हम बिल्कुल शामिल करते हैं आज के इस सेगमेंट में, जहां पर हमारे साथ जुड़ी हुई है नुवेल फॉन्स से गायत्री जी, बेटा अजय, मामी है कल्याणी मोहन मेबग से, और उनकी प्यारी भाभी शकुंतला मोह थाईलोंग से साथ दे रही है, और उनकी खास सखी गीता बाई जो हमेशा साथ देती हैं, माकुआ से जुड़ी हुई हैं शोभा जी, साथ है अनुषा और शर्वीना, और आज जन्मदिन मना रही हैं प्यारी सी अर्नवी उनके मम्मी पापा की ओर से, और साथ ही साथ अवनीश की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, फूफो आरती, फूफा है प्रीतम, पूरन परिवार और बिमल परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, सेवा बापू कॉलेज के सभी दोस्तों की ओर से अर्नवी को ढेर सारा प्यार, और हमेशा की तरह आपकी प्यारी बहनें प्रेमिला जयमंगल, वीना जी और राधा बाल गोविंद जो जुड़ी हुई हैं मूचिदा से, और साथ ही साथ माला सुमारू यहाँ पर काटुबोन से जुड़ी हुई हैं, माधुरी जी फ्लोगियाल से, क्लाविट से विजय बंधन और उनका परिवार, पत्नी है रेखा, बहने हैं बिंदु, चंदनी और कुमारी, सभी दोस्तों के साथ आप भी हमेशा जुड़े रहते हैं। अनीता लाल जी आपका प्यारा सा मैसेज कभी नहीं चूकता। ईतू परिवार, गोगा परिवार, नागेश्वर परिवार जो मोडालबिया से जुड़ा हुआ है, अमृता जी ओकुले से साथ दे रही हैं, अमीना जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं पोफाले से, थैंक यू सो मच, सरिता जी कैथोबोन से जुड़ी हुई हैं, गीता जी पोफे से साथ दे रही हैं अपने प्यारे पति रोहित के साथ, साथ है तीन नाती आदित्य आरव और तनीश, और प्यारी सी परी जानवी गोप से जुड़ी हुई हैं सुनीता जी, तीन बहनों के साथ विमला, अमृता और वीना जी, क्योपिप से है गीता जी, साथ है रिवेजपुर से उदय जी, आपके सभी परिवार के साथ आपकी पत्नी है संगीता, दो प्यारी बेटियां स्मृति और कीर्ति, दामाद है नागेश, साथ है आपका नाती केयान, आपकी समधन ज्योति जो समधी जी है सुनील जो हमेशा बुआशेगी से हमारा साथ देते हैं कोरक परिवार के साथ, यहाँ पर राजन लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाफ्लोगा से, आपकी प्यारी पत्नी माला, दो प्यारी बेटियां प्रगति और प्रार्थना, आपकी प्यारी बहन और उर्मिला तुलसी के साथ, कतकुकु से हैं कमला जी, सभी रामन और सीपोल परिवार के साथ, गौबा से जुड़ी हुई हैं शिवरानी जी, और सभी सोनाही परिवार का नाम जोड़ते हैं, आपके बेटे हैं सुधीर शर्मा सोनाही काटोबोन से, बहू है रोशनी, साथ है पोते शिरीष, बहू शिखा और नाती शिवान, साथ है बेटे राज, बहू आरती जो है गौबा से, नाती यश, बहू अंजलि और साथ है कबीर, आपकी प्यारी बेटी शर्मिला सीचन काटुबोन से, उर्वशी रघुबा और साथ ही साथ आपकी प्यारी बहन कृष्णा कुमारी गौरी शंकर यूके से, हाईलैंड से जुड़ी हुई हैं उषा जी कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार के साथ, सुदेवी जी साथ दे रही हैं मोका से अपने पति और बच्चों के साथ, 15 तारीख को उनका जन्मदिन था, बिल्कुल आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहेंगे, साथ ही साथ सेंट जूलियन विलार से जुड़ी हुई हैं नीता खिदनी जी, सभी खिदनी परिवार के साथ, और आपकी खास सखी जो है बेल्वेडिया से स्वाधिका जी का नाम जोड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में, घोंबुआ से लीलो जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आज खेत में नहीं है शीला जी, अगर आप सुन रही हैं तो ज़रूर आपका नाम शामिल करते हैं, और बहन

मानदी के साथ। माफ कीजिएगा घोंगोप से जुड़ी हुई हैं श्यामा रघुनंदन, भैया हैं जयप्रकाश, भाभी नम्रता, केशव और युधीश जो लिस्पेरेंस त्रिबुशे से साथ देते हैं, माफ कीजिएगा लिस्पेरेंस पीतों से, और आपकी प्यारी सखियां विश्वानी दुखी जो है कोडिमा से, और वीना रामफल जो हैं त्याहूर से। इस वक्त क्लेफों वाकवा से जुड़ा हुआ है लक्षम सीगोबिन का परिवार, और सीगोबिन परिवार के साथ साथ शिव मंदिर के सभी सदस्यों का नाम आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं, और सभी को श्रावण के इस पावन मास की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम में चलिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और पोम्पलेमूस से यहाँ डेजी रानी जुड़ी हुई हैं, और आज अपने प्यारे बेटे राजीव को शादी की सालगिरह बहुत बहुत बधाई देना चाहती हैं। राजीव हैं और साथ है आपकी बहू इरीना, और बिल्कुल 20 तारीख को राजीव आप अपना जन्मदिन भी मनाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी प्यारी मम्मी की ओर से, आपकी प्यारी पत्नी इरीना, और साथ है बेटा इलेश, बेटी रूही, सभी लखू कलकतिया माता बदल परिवार, चार बहने चार बहनोइयों की ओर से। कोडिमास की ओर से यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रेमिला सी गुलाम, साथ है आपकी प्यारी बहनें रागिनी और साधना जो है बेचू परिवार ग्रीष्मा फ्लाक से, और अनसुया राम केलावन जो हैं त्रियोले से, और सभी को श्रावण की पावन कामनाएं आप देती हैं। मंगल कामनाएं की कामनाओं के साथ यह मास आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहे, फलदायक रहे, और मनोकामनाएँ सभी की पूर्ण हो। यहाँ पर पिचव्यजय से हमेशा जुड़ी रहती हैं गायत्री जी, जी हाँ सैंपिया से जुड़ी रहती हैं आपकी प्यारी बहन अमृता, भाभी हैं मीरा, और आपकी भगिनियाँ हैं नेहा, क्षिति, दिव्या, गिरिशा, मेधा, साथ है सुधीर, कमलेश और बहू सुधा के साथ। जन्मदिन मना रही हैं राजश्री भोला, जिनको 60 वर्ष हो चुके हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही हैं रानी तुलसी की ओर से जो है मोडालबिया से, और आपके पति है कृष्ण, साथ है बेटा किशन, कवि, युवराज, परी, शनाया, कृष्टि, दिव्या, मुनाली और साथ है पिंकी और बबीता, साथ है नातिन चेष्विका, और सभी तुलसी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आफेज आप भी साथ दे रही हैं लाविनिया से, तो लाविनिया सैंपिया से आप जुड़ी हुई हैं, आज आपके दामाद जी का जन्मदिन है जिनका नाम है सलीम, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां दे रही हैं सासू माँ आफेज, और आपकी बेगम है रोजीदा, सभी रोजिया परिवार की ओर से और बाबा साहेब परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएँ आपके नाम। कृष्णावती जी हमारे साथ हैं, नानी जुड़ी हुई हैं प्लान मायों से, उनका दिल बड़ा ही खुश हुआ तलत महमूद के गीतों को सुनकर, और वे बेहद बस प्रसन्न हो गई। आप खुश रहें, आप हम तो यही कोशिश में लगे रहते हैं कि गीतों के माध्यम से आपके दिल की खुशी कभी कम ना होने पाए। यहाँ पर दुमन परिवार यानी विश्वानी दुमन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वाकवा से, लक्ष्मी जी जुड़ी हुई हैं बॉम्बू से अक्षय और आशनी के साथ, और छोटी सी बात को बेहद पसंद करते हैं। चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम जोड़ेंगे इस प्यारे से गीत के साथ, और बेशक हम आपका साथ देंगे अभी थोड़ी ही देर में, और इस प्यारे से गीत को आपके नाम करेंगे, फिल्म है प्रोफेसर और गाना है मोहम्मद रफी साहब की प्यारी सी आवाज में। इसी गीत के साथ लेते हैं एक ब्रेक, और आएंगे अभी समाचारों के बाद आपकी ही सेवा में उपस्थित रहेंगे, एक छोटी सी मुलाकात जहां पर मुलाकात आपकी करवाएंगे एक ऐसी अभिनेत्री के साथ जिन्होंने बहुत बहुत चैलेंजेस को फेस किया, पर फिर भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक जगह कायम बनाई। तो बस सुनते रहें, गुनगुनाते रहें, और आते हैं अभी थोड़ी ही देर में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजर के 8 बजे जलवा। नमस्ते, आवाज भोजपुरी में समाचार सुने जा। डर्बन में आयोजित 46वां सार्क शिखर सम्मेलन में सदस्य देश के नेता खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसे साझा चुनौती पर चर्चा करेगी और एगो मजबूत सड़क के निर्माण खातिर एकत्र होलन, जिनमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामग्राम भी शामिल रहलन। समुद्र तट से सटल सरकारी भूमि, इस शब्द पिछला बिफे से चर्चा में बाटे, जब भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद मोइंदीस ने समुद्र तट के दौरा कर सार्वजनिक समुद्र तट ले पहुंच के जायजा लेलन। कुछ संपत्ति मालिक अपन समुद्र किनारा की जमीन के बाहर सार्वजनिक क्षेत्र तक बढ़ावत हवन स। यही बीच फेसबुक पेज पीमाएफओ पर 2024 के मंत्री के एगो पुराना पोस्ट सामने आल, जे पर वो स्पष्टीकरण देलन। आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहन के टिंटेड शीशा, विशेषकर चिकित्सा कारण से देवल जाए होला अनुमति खातिर नवा दिशा निर्देश लावता। एकर तहत आगे के विंड स्क्रीन और साइड विंडो से कम 75% रोशनी आए के चाही। मंत्री उस्मान माउमेद के अनुसार इस संबंध में विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रमाण पत्र और दस्तावेज की जाँच हेतु एगो नवा वेरिफिकेशन प्रणाली तैयार करल जाता। और दूसरा देश के खबर में, डोनाल्ड ट्रंप ईरान समझौता के बीच अमरीकी सहयोगी ओमान के रास्ते में आए परी बम से उड़ा के धमकी दे रहे बाटे। देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त। भल अपन ध्यान खातिर धन्यवाद, नमस्ते। आवाज मर्डनी की खबर सुन जा। एसएसओ रोड ईलो कॉन्स्टेबल में 3 करोड़ 46 के श्वसन सीजों की श्रीमती धनवंती बुलक, पैदायशी नाम पुनीत, आज बंधु नाम से जस्सी जानते जात्रा लंजाओ गुजर कल हवन और करमाटी आज फजर के 10 बजे होकर पति राधा किशुन बुलक के घरे एसएसओ रोड ईलो कॉन्स्टेबल से उठा के कॉन्स्टेबल की शमशान भूमि दे चावल जाए। सिवन चिनियन रोड गुडलैंड्स में 3 करोड़ 16 बरिस के श्वसन सीजों के श्री मौदे मुतु चिनियन, जे मुगेश चिनियन नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर गल हवन और करमाटी आज दिन के 1 बजे कर बेटा विलन चिनियन के घरे सिवन चिनियन रोड गुडलैंड से उठा के बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले चावल जाए। स्वामी शिवानंदा एवेन्यू फ्लोरियाल में 3 करोड़ 9 बरिस के 69 के श्रीमती कमलावती राधा लक्ष्मी रचिया, पैदाशी नाम भी सिसर, आज अनिता नाम से जस्ती जानते जाथर लंजाओ गुजर गल हवन और करमाटी आज दिन के 2 बजे करपति सिवन रचा के घरे स्वामी शिवानंदा अविनी फ्लोरिया से उठा के आले भैयों के शमशान भूमि दे चावल जाए। रेलवे रोड हाइलैंड्स में 4 करोड़ 2 बरिस के कथोवेंडोजों के श्री धनीलाल सुली के जी सूर्यदेव नाम से जस्ती जानते जाथर लंजाओ गुजर गल हवन और करमाटी आज दिन के 11 बजे कर पत्नी बसंती सुलिक के घरे रेलवे रोड हाइलैंड से उठा के बिकाहा के शमशान भूमि ले चावल जाए। नंबर 11 सीते से आशा दीपिने में 25 बरिस के वेंसैकों के श्री किसावन विरेन, जे किसावन नाम से जस्ती जानते जाथर लंजाओ गुजर गल हवन ओकरमाटी आज दिन के 11 बजे होकर पिता वीरेन कृष्णा से उठा के घरे से उठा के नंबर 11 स्थित से आशा देपिने से उठा के घन हो जारी के शमशान भूमि ले चावल जाए। रामपॉय स्ट्रीट विनोमीबर्ग में 1 करोड़ 17 बरिस के थनसेतों के श्री कमलेश अदिंगाडू, जे मुगाम्बो नाम से जस्ती जानते चाथरा लंजाओ गुजर कल हवन ओकरमाटी आज दिन के 2 बजे ओकरमा श्रीमती लक्ष्मी अदिंगाडू के घरे रामपॉय स्ट्रीट विनोमीबर्ग से उठा के तोम्बोमीबर्ग के शमशान भूमि ले चावल जाए। शिवाला रोड मधुस्थालिया में 2 करोड़ 6 बरिस के 41 सीजों के श्रीमती

ती शास्त्री कावली स पैदायशी नाम भी गन आरजे वीना नाम से जस्ती जाने तजात्रा रंजाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के एक बजे उकर खरीश वाला रोड मधुस्थालिया से उठा के मधुस्थालिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। मंडपलेन मिडलैंड्स में तीन कोरी तीन बरिस के स्वसंतवाजों के श्री राज नोयन जे बुबनु नाम से जस्ती जाने तजात्रा रंजाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के

0: नाम से जस्ती जाना तजा तलन जाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के तीन बजे मोहापित सितवियत से उठा के सिपाही भोले वाले दिपैत के शमशान भूमि ले जावल जाए। सावन रोड नोवेल फ्रांस में 3 करोड़ 17 बरिस के सुसंजी से टोंके श्रीमती धर्मावती मंदारी पैदाइशी नाम रामचंद गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकर बेटा संजीव मंदारी के घरे सावन रोड नोवेल फ्रांस से उठा के मारिशानी रोज बैल की शमशान भूमि ले जावल जाए। कांगुल बौश में ग्रेनिये में 4 करोड़ 20 के 80 के श्री विती कातों जे सिंगा नाम से जस्ती जानते जाटलन जाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकर घरे कांगुल बौश में ग्रेनिये से उठा के कांगोपाल शामुनी के शमशान भूमि ले जावल जाए। बसंत राय रोड लाहौजा में 3 करोड़ 20 के 60 के श्री अशोक कुमार सिपुल जे संजय नाम से जस्ती जानते जाटलन जाओ गुजर गल हवन ओकर माटी बाद में उठावल जाए। ओकीदे लेन आमोरी में 3 करोड़ 19 बरिस के 79 के कुमारी नगेश श्री राम सरन जेसुमंती नाम से जस्ती जाने तेजात रनन जाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन के 12 बजे ओकर माँ सुचिता माता बदल के खरे ओकीदे लेन आमोरी से उठा के लावों चुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। आनंद रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे में 4 करोड़ 20 के 80 के श्रीमती परमावती रामलगन पैदाइशी नाम गोबिन आरजे परमावती नाम से जस्ती जानते जातरलन जाओ गुजर कल हवन ओकर माती आज दिन के 1:00 ओकर बेटा विक्रम रामलगन के घरे आनंद रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे से उठा के वहीं की शमशान भूमि ले जावल जाए। ग्रेस लेन होशनुआ में 2 करोड़ 8 बरिस के कहों चुतों के श्री शैलेश कुमार गुदा जे कुको नाम से जस्ती जानते जातरलन जाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन के 2:00 ओकर पत्नी श्रीमती रीना गुदा के घरे ग्रेस लेन खुशनुआ से उठा के पीतों के शमशान भूमि ले जावल जाए। पाल्म एवेन्यू का ठोकुको में 2 करोड़ 19 बरिस के 59 के श्री अजय रामेश्वर जे ये शुफ टैक्सी नाम से जस्ती जानते जातरन जाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकर पत्नी श्रीमती सुरेखा रामेश्वर के घरे परमावेन्यू कथ कुको से उठा के लावों चुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोक में डूबल इस सब परिवार लोग के प्रति हमने संवेदना प्रकट करे थे। जा
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: 8:13 होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नजर डालते चले। ये विज्ञप्ति है शिबैल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर रगिजदों शिबैक, सेंट्रल म्यूनिसिपल गायतों जुवाल, रेजिडेंस लोटस, WMA शिबैक के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार 18 अगस्त को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 3:30 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
4: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना,
3: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
2: जी हाँ, मंगलवार का दिन है और मंगलवार आपकी मुलाकात करवाते हैं एक अभिनेता या अभिनेत्री के साथ। और बिल्कुल एक छोटी सी मुलाकात सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंतर्गत रखा ये सेगमेंट भी, इसे भी बहुत दिलचस्प गीतों के साथ हम सजाएंगे। वैसे आपको बताते चले, ये जो अभिनेत्री है

वो एक नेपाली अभिनेत्री हैं, शायद आपके नाम आपके दिमाग में वो नाम आ ही गया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनीषा कोइराला की, जिन्होंने 16 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाया। और बिल्कुल 55 वर्षीय मनीषा कोइराला जो भारतीय सिनेमा के साथ साथ तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, प्रकाश कोइराला की बेटी और बीपी कोइराला की नातिन। एक समय था जब ये सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में इनका नाम लिया जाता था। इनके पूरे जीवन काल में उन्होंने 3 फिल्मफेयर अवार्ड्स, 1 फिल्मफेयर साउथ का अवार्ड, 1 फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड और 2001 में नेपाल सरकार द्वारा उनको दिया गया ऑर्डर ऑफ गोरख दक्षिणा बहु का अवार्ड। आइए आज उनकी कहानी आपको सुनाते हैं, उन्हीं के जीवन पर आधारित कुछ ऐसी जानकारियां आपके साथ हम साझा करते हैं। वैसे हम आपको ये भी बताते चले, मनीषा कोइराला ने अपना डेब्यू किया था 1989 में नेपाली फिल्म फेरी भटौला के साथ। और बेशक वे नजर आई थी पहली बार के लिए हिंदी सिनेमा में, यानी फिल्म सौदागर में। यानी उन्होंने बॉलीवुड और कॉलीवुड फिल्में भी की हैं। कई सारी ऐसी फिल्मों में उन्होंने एक बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस के साथ अपने फैंस के दिलों में जगह बनाई, जैसे 1995 में आई फिल्म बॉम्बे, 1996 में अग्निसाक्षी, 1996 में ही इंडियन, 97 में आई फिल्म गुप्त द हिडन ट्रुथ, 99 में कच्चे धागे, 99 में ही आई मुदलवन, 2002 में कंपनी, 1994 की मूवी को तो आप भूल नहीं सकते, 1994 में आई थी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही भोला किरदार किया था और इस रोल के लिए उनको बेहद बेहद प्रशंसाएं भी मिली और कई सारी आलोचनाएं भी उनको सुननी पड़ी। पर फिर भी उनका जो किरदार था, उनका जो रोल था, काबिले तारीफ। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, 95 में फिल्म आई अकेले हम अकेले तुम, और बिल्कुल खामोशी जो आई थी 1996 में, द म्यूज़िकल खामोशी द म्यूज़िकल, दिल से आई फिल्म 1998 में, और 2001 में आई फिल्म विमेन लज्जा, महिलाओं पर आधारित ये फिल्म थी लज्जा। वैसे तो उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं, पर साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि मनीषा कोइराला का जो जन्म है वो एक हिंदू परिवार में हुआ था। 16 अगस्त 1970 में 1970 में वे जन्मी कोइराला परिवार में। और बिल्कुल कोइराला परिवार जो है वो नेपाल काठमांडू में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध फैमिली है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ परिवार है। उनके पापा प्रकाश कोइराला, जो कि एक पॉलिटिशियन और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं नेपाल्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। उनकी मामा सुषमा कोइराला एक होम मेकर रही हैं, और कोइराला मनीषा कोइराला के एक भाई हैं सिद्धार्थ कोइराला, जो कि बॉलीवुड एक्टर बन चुके हैं। और साथ ही साथ उनके दादा बिश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे 1950s के दौर में, 1950s से लेकर 1960s में वे प्रधानमंत्री थे। और उनके दो चाचा गिरिजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला। वैसे आपको ये भी बताते चले कि मनीषा ने अपनी ज़्यादातर जिंदगी भारत में बिताई है, जहाँ पर वे वाराणसी में पढ़ती थी, और उनकी उनका ननिहाल रहा है। और कुछ सालों के लिए वे दिल्ली और मुंबई में भी रह चुकी हैं। साथ ही साथ उनका होम टाउन हम वाराणसी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने वसंत कन्या महिला महाविद्यालय विश्वविद्यालय जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वैसे उन्हें हमेशा से डॉक्टर बनना था,
पर फिर जाकर उन्होंने दिल्ली में आर्मी पब्लिक स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की और बिल्कुल वे काफ़ी इंडिपेंडेंट रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे वे बढ़ी और साथ ही साथ उन्होंने

एक्टिंग के क्षेत्र को एज अ करियर बनाया और फिर वे मुंबई शिफ्ट हो गई ताकि और मुंबई में उनको काफी सारे स्कोप थे। वैसे शुरुआत में जैसे हमने आपको बताया 1989 में उन्होंने नेपाली फिल्म की थी फेरी भेटोला, जो कि एक एक्सपेरिमेंटिंग मूवी थी। फिर उन्होंने कई सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स हाथ में लिए और उस पर ज्यादा फोकस किया। 1991 में उनको लॉन्च किया सुभाष घाई ने फिल्म सौदागर में, जो कि एक बहुत ही बड़ी कमर्शियल सक्सेस फिल्म रही। और ऐसा भी कहा जाता है कि कई सारे लोगों ने उनके चेहरे में माधुरी दीक्षित की झलक को पहचाना, मिलता जुलता चेहरा, ऐसे कई सारे लोगों ने कहा था। हालांकि 1991 में आई थी फिल्म सौदागर और उसी साल एक और फिल्म आई थी फर्स्ट लव लेटर, जो उतना कमाल नहीं दिखा पाई थी। 1992 में यलगार भी कुछ खास जगह नहीं बना पाई। अनमोल और धनवान जैसी फिल्में भी कई सारे बार हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स का ऐसा कहना था कि उनके लिए पनौती रही मनीषा कोइराला। पर चलिए, फिल्म जगत है, ऊंच नीच तो चलती रहती है। यहाँ पर आपको सुनाते हैं उन्हीं के डेब्यू का ये गाना जो बहुत ही मशहूर हुआ था, और सच में देखा जाए तो ये गाना काबिले तारीफ। बिल्कुल, सौदागर का टाइटल ट्रैक। इस फिल्म में नजर आए थे विवेक मिश्रान एज अ डेब्यू। दोनों ने इस फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी।

वैसे आपको बताते चले, 9 अगस्त 1991 यानी 1951 में 91 माफ कीजिएगा 1991 में ये फिल्म रिलीज हुई थी यानी सौदागर। और सितंबर में यही जोड़ी दोबारा से नजर आई यानी

17th of सितंबर को रिलीज हुई फिल्म फर्स्ट लव लेटर। इस फिल्म में विवेक मिश्रान और मनीषा कोइराला एक बार फिर नजर आए थे और इस फिल्म में चंकी पांडे ने बहुत ही छोटा सा रोल किया था, पर अफसोस की बात ये फिल्म उतना नहीं कमाल दिखा पाई जितना सौदागर फिल्म दिखा पाई थी। पर चलिए, आपके लिए हम एक और छोटा सा गाना लाए हैं फिल्म लव स्टोरी से लिया हुआ ये मशहूर सा गाना। मशहूर इसीलिए क्योंकि सच में ये गाना बहुत ही प्यारा था।

भाई तड़प तड़प दिन तो बीते, जागी जागी रहना भी बीती, पर इनकी नहीं प्रोड्यूसर्स की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिल्म जब नहीं चली तब ट्रायल के लिए तौर पर 1993 फिर में आई फिल्म अनमोल और धनवान, जब ये फिल्में भी नहीं चली तब जाकर प्रोड्यूसर्स को लगने लगा कि ओए होए ये तो बड़ा ही गलत चॉइस कर ली उन्होंने एक्ट्रेस की। पर कहते हैं ना कि मनीषा कोइराला हार मानने वालों में से नहीं थी। वैसे अनमोल का ये एक और लाजवाब गीत, वैसे उनके कई सारे ऐसे गाने हैं, फिल्म चाहे हिट ना हुई पर गानों की वजह से ये गाने एक अलग ही छाप छोड़ गए अपने फैंस के दिलों पर।

भाई यही दीवानगी ने तो उनको दीवाना बनाया, और दीवाना बने वो लोग जिन्होंने मनीषा कोइराला की फिल्मों को पसंद किया। और उसके बाद आई फिल्म 1993 में ही फिल्म धनवान, जहां पर एक ट्रायो दिखाई दिया गया और अजय देवगन, करिश्मा कपूर और मनीषा कोइराला पर फिल्माई गई ये मूवी थी धनवान। पर धनवान भी उनके प्रोड्यूसर्स को धनवान नहीं बना पाई। पर चलिए फिल्म फिल्म की बात है, और हमें तो ये गाना बेहद पसंद आया था।

0: बिल्कुल, फैसला तो यही मंजूर था ऊपर वाले को कि मनीषा कोइराला इसी क्षेत्र में आगे बढ़ती जाए, और उन्हें फिर फिल्म मिलनी थी विधु विनोद चोपड़ा की 1942 अ लव स्टोरी, जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर आधारित थी। वैसे हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मनीषा कोइराला को पहले इस फिल्म के ऑडिशन के लिए डिसमिस किया गया था, क्योंकि विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें कहा कि ये बहुत ही ख़राब एक्ट्रेस रही हैं, और उनका जो फर्स्ट स्क्रीन टेस्ट था वो उनको बिल्कुल नाखुश कर गया था, और इसकी जगह पर उन्हें लेना था माधुरी दीक्षित को। पर कहते हैं ना कि ऊपर वाले को जब कुछ मंजूर होता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
1: एक छोटी सी मुलाकात,
0: जी हाँ। फिर फाइनली उनके जब सेकंड स्क्रीन टेस्ट, सेकंड ऑडिशन हुआ, तब जाकर ये तय किया गया कि ठीक है, अब मनीषा कोइराला को लिया जाएगा रज्जो के रोल के लिए, जो फ्रीडम फाइटर थी और नरेन के प्यार में पड़ती हैं, नरेन यानी अनिल कपूर के प्यार में पड़ती हैं, जो कि एक पॉलिटिकल बेटा था ब्रिटिश कॉलोनियल एम्प्लॉई का। वैसे आपको ये भी बताते चले, उस दौर में यानी 90s के ज़माने में फिल्मों में किसिंग सीन बहुत कम देखने को मिलते थे, लेकिन इस फिल्म में जब ये सीन को शामिल किया गया था तब इस फिल्म को पेरेंटल गाइडेंस का मोहर लगाई गई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा, यानी एक तरह से सेंसो बोर्ड है जिन्होंने ये अलाव किया था, लेकिन ये बिल्कुल माता पिता की निगरानी में देखने वाली मूवी। हालांकि ये फिल्म उतनी ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन फिर भी मनीषा कोइराला को पहली बार के लिए नॉमिनेट किया गया था बेस्ट एक्ट्रेस के श्रेणी में। हालांकि उन्होंने केवल हिंदी फिल्में नहीं, बहुत सारी अन्य फिल्में भी की है, तमिल फिल्में भी उन्होंने की। मणिरत्नम की बॉम्बे, जी हाँ, पहले ये आई थी तमिल में, जिसमें वे नज़र आई थी अरविंद स्वामी के साथ, और ये फिल्म भी काफ़ी सनसनीखेज फिल्म रही, क्योंकि उन दिनों में जो मुंबई में अटैक्स होते थे उस पर आधारित फिल्म थी। हालांकि चलिए, आज के इस लिस्ट में हमने बॉम्बे फिल्म का भी गाना शामिल किया है, पर 1942 लव स्टोरी की बात करें और इसका गाना ना चलाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई प्यार तो हुआ उनकी प्यारी सी अदाओं के साथ, प्यार तो हुआ उनके नटखट भोलेपन के साथ, प्यार तो हुआ वो हर जवां दिल को उनके चेहरे की मासूमियत को देखकर।

भाई पुकारना क्या था, इनकी तो फिल्मों ने जिस तरह का जादू बस लोगों के दिलों में बनाना शुरू कर दिया, लोगों के साथ साथ प्रोड्यूसर्स भी फिर पीछे लग गए मनीषा कोइराला के। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो फिल्म 1942 लव स्टोरी आई थी, हालांकि ऐसे कहा गया कि वो फिल्म ने कमाल नहीं दिखाया, लेकिन सच में देखा जाए तो वो एक माइलस्टोन साबित हुई। और साथ ही साथ कई सारी ऐसी फिल्मों ने धीरे धीरे करते हुए मनीषा कोइराला को वो स्थान दिया, वो जगह दी, जिसके कारण वो सच में लोगों की चहेती बनती गई। और बिल्कुल जब हम बात करते हैं 90s के दशक की, तो अग्नि साक्षी का वो गाना हम कैसे भुला सकते हैं जो कितना हिट हुआ था, याद है ना आपको।

भाई वैसे तो हमारा मन कर रहा है कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाए, पर हम कह सकते हैं कि समय बहुत कम रह जाना है, इसीलिए उनके ही कुछ ऐसे गाने हम चला रहे हैं। और जैसे 1994 में आई थी फिल्म अग्निसाक्षी, इसके बाद आई 1995 में अकेले हम अकेले तुम, जिसमें वे नजर आई थी आमिर खान के साथ और एक अम्बिशियस महिला का रोल उन्होंने निभाया था। तो चलिए भाई, प्यार भरे गानों का ये सफर है। कई सारे राजाओं को इस रानी पर तिल्ला गया।

जहां पर उन्होंने अग्नि साक्षी में एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई थी जो अपने पति के दुर्व्यवहार से परेशान थी, वहीं पर उन्होंने अकेले हम अकेले तुम एक एम्बिशियस महिला की कहानी, जहां पर वे एक्ट्रेस बनना चाहती हैं और अपने एम्बिशन के लिए वो अपने घर परिवार को पीछा छोड़ जाती है, पर जाके उसे तब एहसास होता है कि उन्होंने क्या मिस किया, क्या गवाया। 1995 में फिल्म आई याराना, 96 में दरार और सलमान खान के साथ उन्होंने फिल्म की मझधार, साथ ही साथ 1996 में वे नजर आई फिल्म इंडियन में, जो कि तमिल मूवी की एक रीमेक फिल्म रही, और बिल्कुल हिंदुस्तानी में भी वे नजर आई थी कमल हसन के डबल रोल में, एक रोल के साथ थी कोइराला यानी मनीषा कोइराला और मीरा माटोंडकर और सुकन्या। और हालांकि ये फिल्म थी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमर्शियल सक्सेस और 150 करोड़ का उस फिल्म ने टर्नओवर दिया था, और इतना ही नहीं 1996 में आई द म्यूजिकल ड्रामा खामोशी, बिल्कुल संजय लीला भंसाली की इस मूवी में उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, यानी पहली बार उन्होंने डायरेक्ट की थी ये मूवी, जहां पर मनीषा कोइराला ने एनी की भूमिका निभाई थी, और एनी की भूमिका में उन्होंने एक मूक माता पिता के यहाँ जन्म लिया, जिसमें पापा की भूमिका में नजर आए थे नाना पाटेकर और मामा की भूमिका में नजर आई थी सीमा बिस्वास, और इस फिल्म में सलमान खान इस फिल्म में उनके सहकलाकार थे, और साइन लैंग्वेज उन्होंने बेशक सीखा था इस मूवी के लिए खामोशी। आइए इस गीत को भी हम साथ मिलकर सुनते हैं।

ऐसे गाने सुनते ही एनर्जी कितनी हाई हो जाती है, और ऐसी ही एनर्जी लेवल उनकी फिल्मों में नजर आने लगी, और बिल्कुल एक के बाद एक उनको भी क्या कमाल की मूवीज मिलना शुरू हो गई। और हम आपको बताते चले, 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंसेज में से रही थी मनीषा कोइराला की ये सबसे इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ उनको सेकंड फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ इस फिल्म में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर स्क्रीन अवार्ड्स भी उन्हें मिला। और इसी के बाद आई फिल्म गुप्त द हिडन ट्रुथ, जिसमें वे नजर आई थी काजोल और बॉबी देओल के साथ। 1998 में मणि रत्नम के साथ उन्होंने फिल्म की दिल से, शाहरुख खान इस फिल्म में उनके को एक्टर थे। हालांकि दिल से फिल्म में भी उनका काफी अच्छा एक रोल रहा था। 99 में आई थी फिल्म कच्चे धागे, और ऐसी कई सारी फिल्म्स के साथ साथ उनको ये भी क्रिटिक्स मिले थे कि उनकी जो एक्टिंग थी मीना कुमारी को अब मैच करती है, आज के जनरेशन की मीना कुमारी, ऐसा भी किसी ने कहा था। 99 में फिल्म आई लावारिस, और ऐसे कई सारी फिल्मों के साथ साथ बागी फिल्म में भी उन्होंने काम किया था। ग्रहण में वे नज़र आई थी जैकी श्रॉफ के साथ, और साथ ही साथ लज्जा में वे नज़र आई थी रेखा, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर के साथ, और मोक्ष फिल्म में वे नज़र आई थी अर्जुन रामपाल के साथ। और साथ ही साथ आपने देखा होगा फिल्म संजू, जो अभी रिसेंट में फिल्म आई थी, जिसमें रणबीर कपूर ने काम किया था, और उन्होंने पोर्ट्री किया था, एक बायोपिक में उन्होंने काम किया था, और बिल्कुल संजय दत्त की जीवनी पर आधारित थी ये फिल्म, जिसमें मनीषा कोइराला ने भूमिका निभाई थी नरगिस जी की। हालांकि उनकी इतनी सारी फिल्में, इतनी सारी बातें, पर यहां समय का इशारा बस हमें यही कह रहा है कि बातें बंद करो, गाने चलाओ। और बेशक मनीषा कोइराला की जो जीवन है वो साधारण नहीं रही, उन्होंने बस कह सकते हैं कि ओवेरियन कैंसर से भी उन्होंने बहुत ही संघर्ष के बाद वे निकली हैं। भाई चाहे फिल्म एक्टर हो, चाहे एक आम इंसान, कहते हैं ना कि जब जीवन में कोई ऐसे संघर्ष, कोई ऐसे सामना करना पड़ जाए जहां पर हमारे सेहत दांव पर लग जाती है, वो आसान नहीं होता। और कमबैक करना ऐसे माहौल में, वो तो भाई सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि एक तरह का वरदान कह सकते हैं। चलिए इसी के साथ फिल्म संजू का ये गीत, और इसी गीत के साथ आज हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा, और बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट के साथ, जो है हमारी धरोहर।

जो मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, बस उन्हीं के नसीब में वो सक्सेस लिखी होती है। और मनीषा कोइराला ने कर दिखाया, कैंसर सर्वाइवर पेशेंट, इस बड़ी सी जंग को उसने जीत कर एक मुकाम हासिल किया जिंदगी में, जो दूसरों को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी मुलाकात थी मनीषा कोइराला के साथ, और चलिए इसी के साथ हम बढ़ चले हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां पर इशारा किया जा रहा है हम जुड़े अब हमारी धरोहर के साथ, जहां पर किरण जान की कुछ ऐसी लाजवाब जानकारियां लेकर आती है हमारी धरोहर को लेकर। आइए उनका स्वागत करते हैं आज के इस सेगमेंट में, और इसी के साथ सुबह का नजराना कार्यक्रम का ये रहेगा आखिरी सेगमेंट।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। कल हमने त्रिपुरा के जो पुराना रॉक आर्ट बा ऊना कोटी ओकर पर बात करत रही जा। तो आज जरा ई पूर्वोत्तर भारत के छोटा त्रिपुरा पर ध्यान दे जा। ई सबसे सुंदर और मनोरम प्रदेश मानल जाला, जहाँ पर घना जंगल बा, पहाड़ी इलाका बा, नदी और झरना यहाँ पर भरल पड़ल बा। पर्यटन के दृष्टिकोण से त्रिपुरा काफ़ी उन्नत बा और यहाँ पर चा के उत्पादन होवेला, ई खातिर ई बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर ढेरों एडवेंचर के विकल्प बा, ऑप्शन बा, मनोरंजन के बहुत ही साधन बा और सांस्कृतिक समृद्धि से ई भरपूर बा। प्रकृति से जुड़ल ई प्रदेश प्राकृतिक और हस्तकला से निपुण बा। बुनाई और हथकरघा खातिर त्रिपुरा के जो हस्तशिल्प उद्योग बा वो बहुत विशेष है। त्रिपुरा आगे जनजाति के भूमि रहल। त्रिपुरा के प्राचीन नाम किरट देश रहल। बोलल जला कि ई प्रदेश के उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथ और अशोक के शिलालेख में भी मिलेला। 1972 में ई राज्य के गठन होल और तब से आज तक त्रिपुरा लगातार प्रगति की ओर बढ़ता। 19 गो जनजाति होला जगह है और यहाँ पर बहुत जंगल बा जहाँ पर ई सब जनजाति रहत रलन सा। मॉरिशस और त्रिपुरा के बीच कोनो खास संबंध तो नहीं बा, लेकिन ई जो सबसे बड़ा अंतर बा वो ई कि मॉरिशस में कोनो जनजाति नहीं है और त्रिपुरा में देखा था वह लगभग 20 गो जनजाति के ई घर है। त्रिपुरा के संस्कृति देश के अन्य अंतर पूर्व राज्य के संस्कृति से मिलता जुलता है, लेकिन बंगाल से सटे होवे के वजह से यहाँ पर बंगाल संस्कृति के भी गहरा प्रभाव बा। त्रिपुरा के लोग के नृत्य गायन और जीवन शैली के द्वारा यहाँ पर लोक संस्कृति के जो झलक बा वो बहुत सुंदर रूप से दिखेला। त्रिपुरा प्रसिद्ध लोक नृत्य के दौरान हुआ के संस्कृति के नज़दीक के अनुभव सक बा करे। यहाँ जो नृत्य बा वो नववर्ष पर ख़ास तौर पर होवेला और यहाँ के गरिया नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। संगीत और नृत्य त्रिपुरा के एगो अहम हिस्सा है। यहाँ पर 84% हिंदू के संख्या है। बंगाली

0: हिंदू के जस्ती प्रभाव भाई यहाँ पर, और बौद्ध और क्रिश्चियन धर्म के लोग के साथ सब कोई यहाँ पर मिलजुल के रहे लंसा। दुर्गा पूजा यहाँ के मुख्य त्यौहार है और यहाँ के अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। मुख्य फसल यहाँ पर चावर है और पूरा राज्य में यहाँ पर चावर के खेती होवेला और चावर के संगे संगे चाह के भी खेती होवेला। यहाँ पर पर्यावरण बहुत ही स्वच्छ है और त्रिपुरा के जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट, वो 94% है। ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के मुकाबला पर्यटन के सबसे आकर्षक जगह है। यहाँ पर सबसे जस्ती पर्यटन आवेला और यहाँ पर ये दृष्टि से होटल उद्योग भी काफ़ी संपन्न है। और यहाँ के जो रॉक आर्ट के काल हम चर्चा करत रही ऊना कोटी, वो देखे लायक है। कहे कि एगो बहुत ही अचंभा करे होला अद्भुत रॉक आर्ट जो सकब्जा बोले 6वीं सदी 7वीं सदी में बनल बा। आज तक एकर पर सवाल बा कि कैसे ये बनल, के बनैलक, और यंत्र के बिना आज भी कहा ये बनावे के संभव रही। तो ई रहल त्रिपुरा राज्य पर थोड़ा जानकारी, जहाँ के सबसे बड़ा विशेषता ओकर ऊना कोटी रॉक आर्ट है। कार्यक्रम के ध्यान से सुन ला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: चला इसी के साथ किरण जानकी जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा, और एगो बढ़िया भोजपुरी गीत संगे आज के कार्यक्रम के हाइजा पर समाप्त करब जा। काहे के 9 बजे समाचार के बाद आप सबको के साथ दियन सुमिता सरकार। आज की चर्चा कार्यक्रम जेकर सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस और MBC के तीसरा चैनल पर तू देखे सकब। तो इसी के साथ हमारी और आपकी अब मुलाकात होगी 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में। तब तक के लिए बस हमारा साथ जरूर देते रहिएगा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मंगलवार 18 अगस्त, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचारों को लेकर विधिमा आ चुकी है। विधिमा, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार सुमी, सभी को नमस्कार। पेश है संक्षिप्त समाचार। डर्बन में आयोजित 46वें सैडिक शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी साझा चुनौतियों पर चर्चा करने और एक मजबूत सैडिक के निर्माण के लिए एकत्र हुए, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल हुए। समुद्र तट से सटी सरकारी भूमि, ये शब्द पिछले गुरुवार से चर्चा में है, जब भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने पोइंदेसनी समुद्र तट का दौरा कर सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच का जायजा लिया। आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों के टिंटेड शीशों, विशेषकर चिकित्सा कारणों से दी जाने वाली अनुमति के लिए नए दिशा निर्देश ला रहा है। इसके तहत आगे की विंड स्क्रीन और साइड विंडोज से कम 75% रोशनी आनी चाहिए। मंत्री उस्मान माउमेद के अनुसार इस संबंध में विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जाँच हेतु एक नई वेरिफिकेशन प्रणाली तैयार की जा रही है। अगले महीने 10 और 11 सितंबर को मॉरिशस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के महानिदेशक दाहिन तांग की मेजबानी करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य मॉरिशस और विपो के बीच सहयोग को मजबूत करना है, साथ ही ये बौद्धिक संपदा और नवाचार को बढ़ावा देने से जुड़े कई मामलों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। विदेश मामलों के जूनियर मिनिस्टर अजय नरसिंघन के अनुसार चर्चा मुख्य रूप से पैरेलल इम्पोर्ट लाइसेंसेस और पेटेंट पर केंद्रित होगी। और विदेश में फिलीपींस के दक्षिणी क्षेत्र के एक कैथोलिक जूनियर हाई स्कूल के एक छात्र की उसके ही सहपाठी ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय अधिकारी ने बताया कि बाद में आरोपी छात्र ने भी आत्महत्या कर ली। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: आज की चर्चा।
1: मंगलवार 18 अगस्त, आप सभी का स्वागत हम करते हैं आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। आपको ये बता दें कि इस प्रोग्राम को इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर, साथ ही MBC प्ले ऐप पर भी। आपको ये भी बता दें कि इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही MBC के चैनल 3 पर सपहर के 4 बजे से। तो आइए आज की चर्चा इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। श्रोताओं, कल 19 अगस्त को एक बहुत ही विशेष दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवता दिवस। और हम मानव हैं तो मानवीय मूल्य हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। मानवीय मूल्य हमें क्या सिखाते हैं, अभी के समय में इसकी कितनी आवश्यकता है और इसका हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व क्यों है। आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर संयुक्ता जुड़ चुकी है। नमस्कार डॉक्टर संयुक्ता। और डॉक्टर संयुक्ता जो है वो फॉर्मर एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी है महात्मा गांधी संस्थान में, साथ ही वो योगा टीचर है, राजयोग टीचर है ब्रह्मा कुमारी में। तो डॉक्टर संयुक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और मानवता की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आज का यही होगा कि मानवता क्या है।
2: सबसे पहले तो दर्शकों को, श्रोताओं को प्रणाम, ओम शांति। और सुमिता जी, आपसे बहुत दिन बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हमें भी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर।
2: देखिए, जैसे कि आपने सुनाया कि कल हम लोग विश्व मानवता दिवस मना रहे हैं। हर साल सन 2008 से हम देखते हैं कि विश्व मानवता दिवस मनाते हैं। वैसे तो ये एक दिन मनाने का उत्सव

0: नहीं है, लेकिन हर क्षण हर पल मनाने का है। ये एक जैसे एक संस्कार होता है। तो मानवता, मानवता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इकाई में एकल होकर नहीं जीते हैं, हम एक द्वीप नहीं है, टापू नहीं है। लेकिन कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, एक ही परिवार। बीज एक है, जैसे एक वृक्ष होता है उसका बीज होता है, है ना, जड़ में नीचे की ओर वो बढ़ता जाता है, बीज जड़ों के रूप में और ऊपर की ओर भी बढ़ता है। तो मूलतः सूक्ष्म रूप से हम सभी जो हैं उस जड़ से, उस बीज से जुड़े हुए हैं। ये जो फैलाव दिखता है, विस्तार दिखता है, जो वृक्ष के पेड़ के पत्ते दिखते हैं, फल दिखते हैं, फूल दिखते हैं, वो सब मानवता है, हमारे अपने हैं और बराबर हैं। देखिए आम के पेड़ में तो आम का फूल ही लगेगा, वो फल भी वही लगेगा। तो इस दृष्टि से हम सभी एक है। हो सकता है रूप में थोड़े थोड़े, कोई आम कच्चे होते हैं, कोई किसी का रंग फीका होता है, ऐसे ऐसे, लेकिन मूलतः हम एक हैं। तो जब तक व्यक्ति में वो मानवता का संस्कार, मानवता का बीज जैसे सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक उसका जीवन हम देख सकते हैं कि विघ्नमय होगा, कष्टमय होगा। और यदि वो मानवता है तो जीवन बड़ा ही सरल, सुखद और बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संयुक्ता जी, इतने विस्तार से मानवता को हमें समझाने के लिए। अभी के समय में अगर हम मानवता की बात करें तो आज विश्व भर में बहुत से जगहों पर हम देखते हैं कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, आपसी मतभेद है, प्रेम और करुणा की कमी है, भाईचारे की कमी है। तो अभी की जो परिस्थिति है, इस पर आप क्या जो है अपने विचार देना चाहेंगी? क्या मानवता की कमी है? क्या हम अपने मानवीय मूल्यों को भूलते जा रहे हैं?
0: बहुत ही सुंदर प्रश्न है और विचारणीय बात है, क्योंकि देखिए आजकल हम देखते हैं बहुत सारी उपलब्धियां हैं। कहा जाता है कि मानवता ने बहुत प्रगति की है, उन्नति की है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का संसार बन गया है, अब तो AI आ गया है, क्या नहीं हुआ है, अच्छा है, चांद पर चले गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या मानव मानव में जो घनिष्ठता होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, जो जैसे हमने कहा ना, जड़ में भी वो जो बीज है वो जड़ में भी वो उसका फैलाव होता है, ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो तो है, बड़ा ही रमणीक है, बड़ा ही सुंदर है, फल दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर भी उस जड़ को अंदर सूक्ष्मता है, उतनी गहराई है, उतना प्रेम है जो सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देते, यही जो मानवीय मूल्य है, वो देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। तो उस अनुभूति में हम कहाँ तक सफल हैं, वो प्रेम की भावना, वो एकता की भावना, वो जैसे एक दूसरे परस्पर जो है सहयोग की भावना, आत्मीयता, उसमें कमी आ गई है। और जैसे आप कह रहे हैं युद्ध हो रहा है, तो ये युद्ध बाहर तो हो रहा है, जैसे गीता का भी कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध है, वो एक अहिंसक युद्ध है, लेकिन युद्ध सबके अंदर चल रहा है। और ये जो अंदर का युद्ध है वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा जैसे कि कष्टदायक है। हर एक व्यक्ति के अंदर में एक युद्ध चल रहा है, और इसकी कमी का मुख्य कारण यही है कि हम में वो आपसी सहयोग की कमी है, कि ये मेरे अपने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुमिता जी आप भी सहमत होंगे, हमारे दर्शक हमारे श्रोता भी सहमत होंगे कि आज कहीं ना कहीं जैसे स्वार्थ आ गया है, स्वार्थ का पलड़ा जो है अधिक भारी है, और परमार्थ जो व्यक्ति का, क्योंकि क्यों इस जीवन में आए हैं, इस शरीर में क्यों आए हैं, इस धरा पर क्यों आए हैं, ये पूछने वाला प्रश्न है। थोड़ा रुक कर, जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं एक फॉर्मूला है SOS, स्टॉप, रुकना, फिर ऑब्जर्व, जैसे ड्राइविंग करते हैं ना, अभी आए तो ये किया कई बार, स्टॉप, ऑब्जर्व और स्टीयर, थोड़ा सा रुक कर फिर से देखकर मेरा जीवन ठीक राह पर चल रहा है, फिर आगे बढ़े, ये बहुत

0: जरूरी है अपना मूल्यांकन करना, तभी वो मानवता का जो गुण है उसका प्रसार होगा, उसका हम प्रयोग कर पाएंगे जीवन में।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, आजकल की हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम भाग ही रहे हैं ना। आज हमारी एक इच्छा पूरी हो रही है तो एक इच्छा पूरी होते होते दूसरी इच्छा जाग जाती है, एक सपना पूरा नहीं किया कि अन्य और हजार सपने हम देख लेते हैं। यानी कि जो समाधान, जो संतुष्टि हमें अपने जीवन से चाहिए वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ गई है ना, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई है। और जब ज़रूरतें और इच्छाएं बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं हम में करुणा की कमी आ जाती है, हम में मानवीय मूल्यों की कमी आ जाती है, क्योंकि वो ठहराव नहीं होता है। अभी जैसे आपने कहा ऑब्जर्वेशन ना, थोड़ा सा रुकना, जीवन को ऑब्जर्व करना और फिर आगे बढ़ना। लेकिन हम भाग ही रहे तो हम रुक नहीं रहे हैं, तो रुक कर हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर रहे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, जो मिला है क्या उससे हम खुश है या नहीं। क्योंकि जीवन में हमें जो नहीं मिला है हम सदैव उसके बारे में सोचते रहते हैं, और जो मिला है उस पर हम कम ध्यान देते हैं। इस पर आप क्या विचार
0: है? बहुत सुंदर, जैसे प्रेमचंद जी ने भी कहा है, मनुष्य इच्छाओं का कोई अंत नहीं, एक के बाद एक बढ़ता जाता है। तो हम कहेंगे कि इच्छाएं कभी कभी अच्छा नहीं बनने देती, बहुत ज़्यादा इच्छाएं है ना, जैसे आपने कहा। क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है, मैं सोचती हूँ बच्चों को बचपन से ही ये सीख देनी चाहिए कि आपको जो मिल रहा है ना, उन उपलब्धियों, उन प्राप्तियों में संतुष्टता बहुत ज़रूरी है। द स्पिरिट ऑफ कंटेंटमेंट जिसको कहते हैं, संतोष करना। और जो आपको मिलना चाहिए जीवन में कोई रोक नहीं सकता, ये भी एक सच्चाई है। तो इसलिए जो कुछ है काउंट आवर ब्लेसिंग्स कहते हैं, जो प्राप्त हुआ है उसको देखें। और आप माने ना माने, हम सभी जानते हैं जो आपको जिस वक्त चाहिए वो आपको प्राप्त है। इसलिए बहुत सारी इच्छाएं होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। खास तौर में हम ही लोग अनुभव करते हैं, जब युवक थे, युवा थे बचपन में, तो ये एक होता है, होती है इच्छा कि हम आगे पढ़ें, आगे बढ़ें, आगे कुछ करें। ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है, और युवक मन में, युवा मन में ये होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने शुरू में ही कहा, एक दूसरे को देखकर एक स्पर्धा जिसको कहते हैं माड्रेस, रैट रेस, वो नहीं होना चाहिए कि दूसरे के पास ये है तो मेरे ही पास। हर एक की अपनी अपनी आवश्यकता है। यदि कुछ हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाया तो हो सकता है उसकी हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं, या अभी थोड़ा हम हमें और मेहनत करनी है, और तपस्या करनी है, और वो आएगा। जो कि देखिए इसी के साथ जुड़ा है हमारे कर्मों का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत सबसे एक्यूरेट, सबसे जैसे सैद्धांतिक सिद्धांत है, उसमें कोई कमी नहीं होती।
1: और कहते जैसे हम, कि हमें जो मिला अच्छा है, जो नहीं मिला शायद कहीं ना कहीं उसमें हमारी भलाई ही छुपी है।
0: कल्याण है जो भी हो रहा है हमें जीवन में। यदि इस सूत्र को लेकर आगे बढ़े, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसमें कल्याण निहित है, और उस जीवन से वो लेसन निकालना है, सीख निकालनी है, ये ऐसे हुआ तो क्यों ऐसे हुआ, क्या कमी है। तो इसलिए ये अपना जो स्वमूल्यांकन, फिर से हम कहेंगे, बहुत आवश्यक है। और इसके लिए ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसे विचार चाहिए। इसीलिए आजकल जो है हम देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, चार प्रकार के जो बुद्धिमता है उसकी बात की जाती है। फिजिकल इंटेलिजेंस जो शारीरिक है, फिर होता है आईक्यू, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस आईक्यू, फिर होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, और इन सभी को मिलाकर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो आज ये चारों को अपने आप में, मैं आजकल इसी पर अपना चार्ट लिखती हूँ, अपना अपनी स्थिति का रोज रात में। तो मैं इन चारों को जैसे मापदंड रखा है कि फिजिकल इंटेलिजेंस कहाँ तक अपने शरीर को यूज़ कर रहे हैं, जो भी योग्यता है उसको, फिर अपना जो आईक्यू है इंटेलेक्चुअल, और इमोशनल और एसक्यू को यूज, तो देखना है तभी वो सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि व्यक्ति में यही पूर्णता है। तो इन चारों आधारों पर अपने आप को अंकित करना है, देखना है कि कहाँ तक हम ये सब कर रहे हैं, तब संतोष रहेगा। और जो नहीं हुआ है उसके लिए ठीक है, योजना बनाए और उसको करें। और ये खुशी जै कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, जब तक ये खुशी नहीं तो क्या होगा, कभी भी हम खुश नहीं रहेंगे।

0: इसलिए आजकल माइंडफुलनेस पर
1: बहुत बात होती
0: है. माइंडफुलनेस, माइंडफुल मेडिटेशन या माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस का मतलब है बी इन द प्रेजेंट, हम वर्तमान में जिए. नहीं तो कहते हैं ना कि भूतकाल के चिंता में रहेंगे और भविष्य की चिंता में रहेंगे. तो अभी देखिए हम आपके साथ बैठे हैं, क्या दुख है? कोई दुख नहीं, आप इतने मुस्कुरा रही हैं. हम भी, आपका तो नाम ही सुमिता है, तो आप सभी मतलब सुंदर सुंदरतम रूप में आप प्रस्तुत होती हैं. तो इस प्रकार से हम यदि प्रेजेंट में, वर्तमान में जिए तो दुख नहीं होगा.
1: क्योंकि कभी ना कहीं हम अपने जीवन का जो अधिकांश समय है इसी चिंता में बिता देते हैं कि क्या हुआ, क्या या क्या होगा, और इसी चिंता में अपने आज को नहीं जी पाते हैं.
0: इसके लिए अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, बरी द पास्ट, उसको दफना दे. पास्ट जो हो गया ना, बीती सो बीती. फिर भविष्य की चिंता न करें, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट.
1: एग्जैक्टली,
0: यही जीवन शैली होनी चाहिए.
1: क्योंकि हमारा अगर वर्तमान अच्छा होगा तो अपने आप में भविष्य तो अच्छा होगा ही. हाँ. इसमें कोई डाउट नहीं है.
0: वर्तमान में बहुत बड़ी शक्ति है. यदि पास्ट में भी बुरा हुआ है तो वर्तमान में उसको सुधार
1: सकते हैं.
0: ये गुंजाइश है, मतलब वर्तमान में बहुत शक्ति है.
1: चलिए, आज हम विश्व मानवता दिवस पर बात कर रहे हैं. अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने विचार देना चाहते हैं, तो 4028085 है नंबर हमारा. संयुक्ता जी, इस दिवस को तो हर वर्ष 19 अगस्त को मनाया ही जाता है. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
0: इसका मुख्य उद्देश्य यह है, सबसे पहले तो जैसे जागृति लाना
1: जी,
0: कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जैसे मानवता दिवस कितना महत्वपूर्ण है. जैसे शुरू में हमने कहा ये तो हर पल हर क्षण मनानी है, लेकिन अच्छा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से ये एक दिन निर्धारित किया गया है, ये भी अच्छा है, ताकि संपूर्ण रूप से हमें जागरूकता आए कि बहुत महत्वपूर्ण है एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना. लेकिन इसमें भी क्या है, पहले अपने में स्थिरता चाहिए. व्यक्ति जब तक अपने आप, जैसे हमने कहा, आपने कहा कि संतुष्ट नहीं है, अपने आप समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है, तो फिर वो दूसरे की सेवा भी
1: सेवा
0: नहीं कर सकता,
1: नहीं करेगा.
0: अपने आप की तैयारी करनी है. मुझे लगता है बाद में आपने ये प्रश्न लाएंगे कि कैसे अपनी तैयारी करनी है. पहले अपने आप को, और ये बचपन से होता है. ये थोड़ा सा मैं इस पर बात करूंगी शायद बाद में, कि माता पिता अभिभावकों का उत्तरदायित्व अभी और बढ़ गया है. क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए, पहले ये था, कभी कभी सोचते थे कोई 60 वर्ष के बाद ना तब वो सेवा में लगेगा, 60 ईयर्स के बाद तब वो स्पिरिचुअलिटी में लगेगा. ये बिल्कुल गलत है. हम तो यह मानते हैं, स्वयं अपने जीवन से भी अनुभव पाया है कि बचपन से ही, हम तो कहेंगे जब बच्चा गर्भ में है
1: तभी से
0: माता पिता, जैसे माता जो है ये संस्कार अपने में जो बच्चा में जाएगा, इसीलिए गर्भाधान संस्कार करते हैं.
1: और कहीं ना कहीं जब माँ गर्भवती होती है तो कहा ही जाता है ना, आपको अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए या पढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे में भी वो संस्कार पहले ही से आए.
0: और जो गर्भ में है ना वो तो बस सीमित है, वो बाहर की दुनिया नहीं है उसका प्रभाव, तो वहां पर जो है बच्चा उसको ग्रहण करता है बहुत अधिक, और फिर वो अपने संस्कार भी लेकर आता है. तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये बाल मन में ही मानवता की सेवा, मानवता का विचार आना चाहिए. ये नहीं कि वृद्धावस्था में नहीं आएगा, तब वो ऊपरी सतही दिखावा हो जाएगा. तो बाल मन में ये संस्कार आने चाहिए, और इसकी जिम्मेवारी माता पिता को है, सरकार को है, अध्यापकों को है, हरेक की जिम्मेवारी है.
1: कभी कभार ऐसा होता है कि समाज में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हम संस्थाओं को या सरकार को दोष देते हैं, लेकिन जब एक समाज, एक देश में हम रह रहे हैं, तो अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की भी होती है, हर एक उस नागरिक की होती है जो शायद उस देश में रहता है, उस समाज में रहता है.
0: सुमिता जी, हम तो इस विचार के हैं कि कुछ हद तक जिम्मेदारी नहीं कहेंगे, शत प्रतिशत वो हमारे ऊपर होता है. दूसरों को इसलिए कहते हैं ना, दूसरों को उंगली दिखाने से पहले, ब्लेम गेम करने से पहले, तीन उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, इसके ज़्यादा जिम्मेदार हम होते हैं। जिस हाल में हैं हम, उसका उसकी जिम्मेवारी हमारी है और

0: साथ ही साथ हम जिम्मेवारी लेते हैं समाज का, दूसरों का भी, वो सारा दोनों ताज दोनों मुकुट हमारे ऊपर ही है। तो इतना जब ऐसे समझेंगे ना, तभी हमारी उन्नति होगी और दूसरों की उन्नति होगी, और दूसरों पर उंगली उठाएंगे तो हमारी उन्नति कभी नहीं होगी।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना कि समाज में जो भी बदलाव हम लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए पहला कदम हमें ही उठाना पड़ता है,
0: और हजार कदम आगे बढ़ेंगे।
1: और अपने मानवीय मूल्यों की बात की तो हम जो है सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है। परिवार की बात करें तो माता पिता है, भाई बहन है, सगे संबंधी, और समाज की बात करें तो हमारे पड़ोसी हो गए, जहाँ पर हम काम करने जाते हैं हमारे कलीग्स हो गए। तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर ही एक समाज का निर्माण करते हैं, और एक समाज में प्रगति होती है तब जाकर एक देश में प्रगति होती है। तो मानवीय मूल्यों का अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्य करता है, जो मानवीय मूल्यों को लेकर प्रचार प्रसार करते हैं, इसको आगे बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान देते हैं, तो ऐसे लोगों की समाज में क्या भूमिका है? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अभी के समय में हर एक व्यक्ति को एक रोल मॉडल की आवश्यकता होती है, तो आपके हिसाब से ये कितने आवश्यक होते हैं हमारे समाज के विकास के लिए?
0: जी देखिए, मॉरिशस में भी तो बहुत से समाज सेवक हैं, है ना, समाज सेवक भी हैं और रूहानी समाज सेवक भी हैं। रूहानी मीन स्पिरिचुअल सोशल वर्कर्स, दोनों की आवश्यकता है। देखिए सोशल वर्कर्स, कहीं भी कोई आपदा आए, अभी ही जैसे बाढ़ ये सब आ जाए, कोई भी प्राकृतिक आपदा, कुछ भी तूफान है कुछ भी, तो वे लोग जाते हैं, भोजन देते हैं, कपड़े देते हैं, तो आवश्यक है। देखिए हर व्यक्ति की आवश्यकता समयानुसार अलग अलग है, तो ऐसे सेवक जो होते हैं हम कहेंगे वे रीढ़ हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। ये लोग नहीं होते तो समाज की क्या हालत होती आज? तो ऐसे लोगों के प्रति नतमस्तक होते हैं, दे आर द वेरी पिलर ऑफ द सोसाइटी, स्तंभ है समाज के लिए। ऐसे लोग जैसे जो स्वार्थ से परे परमार्थ में सेवा में लगे हुए हैं, आवश्यकता है। क्योंकि देखिए आज देखेंगे समाज में व्यक्ति के पास एक चीज़ है जो नहीं है, उसका अभाव है, वो है समय। तो ऐसे लोग जो समय निकाल कर दूसरों के दुख दर्द को दूर करने में लगे हैं, तो कितने उनके आशीर्वाद मिलेंगे। और दूसरा है रूहानी सोशल वर्कर्स, रूहानी जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जो स्पिरिचुअली सेवा करते हैं, उनका भी विशेष हम कहेंगे महत्व है। अभी देखिए कोविड के बाद ये सब हम देखते हैं, लोग ज़्यादा मेडिटेशन आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि व्यक्ति ने अनुभव कर लिया, मटेरियल तो है जो है बाहर का है, लेकिन कुछ है अपने अंदर जिसमें संतुलन, जिसमें सुख शांति होनी चाहिए। और जितने लोग आध्यात्मिक मार्ग में है उनके लिए ये कोविड कुछ नहीं था, मेरे ही लिए जैसे कन्फाइनमेंट, तो हम तो अपने अकेले में ठीक है,
1: अकेले तो में संतुष्ट
0: है जी। कुछ लोग सोचते हैं मुझे करना, क्योंकि देखिए जो चार हमने इंटेलिजेंस के उसमें एक होता है ह्यूमन डूइंग, करना है मुझे, केवल करना है कार्य। फिर एक है हैविंग, आपको होना चाहिए, मेरे पास ये है ये है। किसी से मिलते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन है आपका, कितना है, किस परिवार से है, क्या जॉब करते हैं, जैसे फिजिकल वो स्थूल में, लेकिन वो बीइंग ह्यूमन बीइंग है ना, हम व्यक्ति हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग, बीइंग का मतलब है होना, एक आंतरिक एक सूक्ष्म रूप है, तो उसकी आवश्यकता क्या है? तो ये लोग जो हैं, जैसे हम कहेंगे कि शरीर के साथ साथ आत्मा की भी सेवा करनी चाहिए, अंदर से व्यक्ति में संतोष हो, अंदर से प्रेम का अनुभव करे, अंदर से जिजीविषा हो, जीने की का उमंग हो, है ना। तो इसके लिए ये जो सेवक हैं दोनों प्रकार के, स्पिरिचुअल और ये, बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल देखिए, आप मानेंगे ये इस बात को सुमिता जी, कि आजकल जीवन में हम गुरु भी कहते हैं, गाइड्स की आवश्यकता है, मार्गदर्शकों की आवश्यकता है, इसीलिए लोग भटक रहे हैं, चाहे बच्चे हो, युवा हो, वृद्ध हो, भटक रहे हैं। सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा संतोष कहाँ मिलता है लोगों को पता नहीं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ऐसे लोग जो समाज सेवी हैं, जो आध्यात्मिक सेवक हैं, इनकी बहुत बहुत अभी जो है इस समय अत्यधिक आवश्यकता है, तभी समाज में सुख

0: खुशहाली होली होगी।
1: तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संयुक्ता जी इतनी सारी जानकारियों के लिए जो आप हमें दे रही हैं, और जितने लोग इस समय हमारा साथ दे रहे हैं आप सभी का भी धन्यवाद। अभी के लिए एक छोटे से गीत के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं, फिर आज की इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। और आज हम विश्व मानवता दिवस पर बात कर रहे हैं। इस वर्ष को हर दिन, मतलब कि हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिन का महत्व, जैसे संयुक्ता जी ने कहा कि सिर्फ एक दिन मनाने का ये दिन नहीं है, मानवता की यदि हम बात करें तो ये हमारे संस्कारों से जुड़ा है, यह हमारे आचरण से जुड़ा है, यह हमारे व्यवहार से जुड़ा है, तो ये रोज़मर्रा के हमारे जीवन का हिस्सा है। और अब हम संयुक्ता जी आपसे जानना चाहेंगे, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो आज के युवाओं को हम इससे कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि आज के युवाओं की अगर हम बात करें तो आज के युवा जो है बहुत जल्दी बहक जाते हैं, गलत राह में पड़ जाते हैं, दिशा भटक जाते हैं। आजकल उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो कहाँ पर किससे कनेक्टेड है, माता पिता पर उनका जो है उतना बस नहीं चलता है। माता पिता के और बच्चों के बीच, युवाओं के बीच जो संबंध है वो भी समय के साथ हम देखते हैं कि पहले जैसे नहीं रहे। तो मानवीय मूल्यों का एक युवा के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये?
1: देखिए, मानवीय मूल्य तो जैसे युवा मन के लिए वही तो मुख्य होता है। जैसे कहते हैं, युवा जो है समाज की ऊर्जा है
0: जी,
1: एनर्जी पॉइंट है। यदि युवा में ये मानवता और मानवीय मूल्य हो तो वो समाज निश्चित ही बड़ा ही, जैसे कहेंगे, वो उन्नतिशील होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे आपने ठीक कहा, आजकल सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है, थोड़ा सा अपने मोबाइल पर बहुत समय दे रहे हैं। तो अभी आवश्यकता है, यहाँ भी हम कहेंगे अभिभावकों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है,
0: बढ़ जाती है।
1: उनको समय देना है, उनका मार्गदर्शन करना है। क्योंकि युवा, हम यह सोचते हैं, स्वयं अपने जीवन को देखते हैं, युवा मन बड़ा सरल और साफ होता है, लेकिन उसमें क्या कंटेंट देते हैं, वो क्या देखता है, हमारी जो कर्म इंद्रियाँ हैं, आँखों से क्या देखते हैं वो इम्बाइब हो जाता है, अंदर आ जाता है। कानों से क्या सुन रहे हैं, मुख से क्या बोल रहे हैं, क्या भोजन कर रहे हैं, हाथ पैर से क्या कर्म कर रहे हैं, ये सब जैसे वो अंदर जाता है। तो अभी ऐसी सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए। समाज तो अभी एक मोबाइल थमा दे रहा है और उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं कहेंगे उसको, इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, लेकिन ज्ञान की आवश्यकता है। अभी युवाओं को ज्ञान, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, है ना, वो तो भरमार है, दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन एक साल का बच्चा भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन अभी जिस चीज़ की आवश्यकता है, ज्ञान की। इसलिए हम कहेंगे कि जो कॉलेजों में जो करिकुलम है, सबसे पहले तो एजुकेशन में ये मानवता का और मानवीय मूल्यों का होना चाहिए। इसी के चलते अभी एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसका नाम ही है अलाइव मॉरिशस। अलाइव माने एसोसिएशन ऑफ लिविंग वैल्यूज इन एजुकेशन। ये प्रोजेक्ट काफ़ी लगभग 30 वर्षों से चल रहा है और अभी हम लोग सभी कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एजुकेशन एजुकेटर्स की ट्रेनिंग होती है, ट्रेन द ट्रेनर्स फॉर एजुकेटर्स, उनको कि वे अपने विषयों के अंतर्गत कैसे मानवीय मूल्यों को जोड़ पाए। देखिए, साहित्य में तो मानवीय मूल्य ही हैं, आप साहित्य पढ़ाते हैं तो फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स गणित में भी आप कैसे, इकोनॉमिक्स में भी आप कैसे मानवीय मूल्य ला सके, है ना, कि मल्टीप्लाई, ये सब, ये सिद्धांत। तो इस पर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और तब

0: वे अध्यापक जाकर अपने छात्रों के साथ, तो ये एक प्रोजेक्ट जो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हाल ही में लगभग 25 कॉलेजों के एजुकेटर्स आए थे, उनको भी ये ज्ञान दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पहल हो रही हैं कि बच्चों को, और एक्टिविटीज़ बेस्ड है, वो जैसे लेक्चर टाइप नहीं है, एक्टिविटीज़ में कैसे उनको, तो इस प्रकार की योजनाएं जो हैं, इस प्रकार का शिक्षण बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल हम देखते रहे हैं शिक्षा पद्धति, जैसे हमने कहा दोष नहीं लगाना है, दोषारोपण नहीं करना है, फिर भी हम देख रहे हैं कि शिक्षा पद्धति जो है आजकल तो जैसे ब्रेक ही ब्रेकडाउन हो गया है। AI पहले तो देखिए, लोग बच्चे जब पढ़ते, हम भी तो इसी क्षेत्र में थे, बच्चे जब असाइनमेंट कर रहे हैं तो अपनी बुद्धि को लड़ा कर तब वो लिखते हैं। अभी तो AI मास्टर AI के पास गए,
1: अब सवाल पूछते हैं और आपको जवाब मिल जाता है,
0: पूरा वो तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। अभी क्या हुआ है, प्रगति हुई है, लेकिन हमारे शिक्षण पद्धति में वो अडेप्टेशन नहीं हुआ है कि अभी हमको क्या लाना है शिक्षा पद। जैसे पहले ट्रेडिशनल जो हो रहा था, हूबहू करेंगे तो उन्नति नहीं होगी, तब युवा पीढ़ी जुड़ेंगे नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: एक तो शिक्षा से वो उतने प्रभावित नहीं होते, परिवर्तन नहीं होता, हृदय परिवर्तन नहीं होता अभी जो शिक्षा प्रणाली है। तो अभी शिक्षा विशेषज्ञों को सोचना है कि कैसे हम ये परिवर्तन लाएं, तो शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन आना चाहिए। दूसरा, आजकल ये भी सुनने में आता है कि आजकल की युवा पीढ़ी मंदिर नहीं जा रहे हैं, इस ओर भी नहीं जा रहे हैं, तो ये भी सोचने वाली बात है। हमारे जो पंडितगण हैं, हमारे जो समाज के विद्वान विदुषीगण हैं, हमें सोचना चाहिए क्यों युवा पीढ़ी, वे गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों का अप्रोच क्या है,
1: बिल्कुल
0: हम क्या कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तब भी वो लोग आएंगे। एक आकर्षण होना चाहिए जो कुछ हम दे रहे हैं। तो अभी देखना है युवा पीढ़ी की आवश्यकता क्या है। पहले हम आप लोगों की, हम आप या जो भी दर्शक देख रहे हैं, उस पीढ़ी के आवश्यकता अलग थी, हम बड़े संतुष्ट थे, जो ज्ञान मिल रहा है, जो मिल रहा है, जो परोसा जा रहा है, हम बहुत ही संतुष्ट। लेकिन आज का युवा मन संतुष्ट नहीं है, तो देखना है कि क्या रोचक, क्या ऐसा आकर्षक उनको प्रदान करे, तो उनमें वो जागृति लानी है शुरू से ही।
1: जी, और युवाओं की बात करें तो आजकल उनके पास काफ़ी ऑप्शंस है, काफ़ी चॉइस है, और जैसे आपने कहा, बिल्कुल हमें एक दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। अगर कुछ हम सही करना चाहते हैं समाज में, तो युवाओं को साथ में लेकर उस पर कार्य करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि शिक्षा तो बहुत आवश्यक है ही, क्योंकि वो हमारे एक नींव है, एक फाउंडेशन है, जिसके जरिए हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ संस्कृति, अपनी सभ्यता, जैसे आपने बात की कि स्थलों पर जाना, अपने जो है अपने रूट्स को समझना, है ना, अपने संस्कारों से जुड़े रहना, ये भी बहुत आवश्यक है।
0: जी, हमने देखा भी, श्रावणी मास चल रहा है ना, तो हमने देखा कि कभी कभी हम वो परी तालाब चले जाते हैं, तो बहुत युवक
1: जुड़ रहे हैं,
0: जुड़ रहे बहुत अधिकांशतः। कल ही वो श्रावणी का सोमवार का अभिषेक था ना, शिव अभिषेक, श्रावणी मास शिव भक्तों के लिए है ना, तो हमने देखा बहुत युवा पीढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम, तो मुझे लगा इस खुले मैदान में, शायद चार दीवारी वे पसंद नहीं करते, इस खुलेपन में और परी तालाब का वातावरण ही तो बड़ा ही दिव्य है ना, आकर्षक है, और उसमें पॉजिटिविटी है, तो ये युवक युवतियां जुड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा अपनी साड़ी पहनकर, या बड़े ही सभ्य रूप में, बड़े ही मतलब बहुत ही जैसे सभ्यता पूर्वक, बहुत अच्छा लगा, और कोई भी मोबाइल नहीं देख रहा है, कुछ नहीं, वो पूरा अपना पूजा कर रहे हैं, बहुत बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक
1: ऐसा है कि आजकल का जो युवा है, जहाँ पर हम कहते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है भटक रही है, नहीं, देखा जाए तो आजकल की युवा पीढ़ी ज़्यादा जागरूक हो रही है,
0: ज़्यादा जागरूक है,
1: इसलिए इस तरह का मार्गदर्शन उनके हाँ, लिए होना चाहिए हाँ, जो वो इस सही राह पर हाँ, बने
0: उनको
1: रहे,
0: उनको समझना चाहिए
1: exactly, और जब युवा किसी सामाजिक कार्य से जुड़ते हाँ, हैं या किसी सांस्कृतिक का अनुष्ठान से जुड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को ही सिर्फ आगे नहीं ले जा रहे बल्कि ये सामाजिक कार्यों में भी अपना जो है योगदान दे दे रहे हैं।

0: हाँ, बहुत उनका योगदान और आवश्यक है,
1: आवश्यक है,
0: क्योंकि वही तो भविष्य बनेंगे ना। तो बहुत ही, क्योंकि क्योंकि उनमें ये जागृति भी लानी है, ये ज्ञान भी देना है कि सेवा से मेवा मिलता है। मेवा का मतलब है खुशी मिलती है, तुरंत खुशी मिलती है, और भविष्य के लिए हम आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। जिसकी भी सेवा करेंगे, जैसी भी सेवा करेंगे, उससे ब्लेसिंग मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, वरदान के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि सेवा, देखिए, हर लगभग 7 प्रकार की सेवा हम कर सकते हैं। मानवता सेवा तन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, संबंध संपर्क, अभी आपसे मिले तो आप हमारी सेवा, हम आपकी सेवा, ऐसे हो जाता है। वो प्यार से बात करना, वो सब मनसा वाचा कर्मणा, तो अलग विन वाणी से भी सेवा करते हैं, तो अनेक प्रकार से सेवा कर सकते हैं, और सेवा से मेवा, सेवा से वरदान मिलते हैं। ये जागृति लानी है, और वरदान जो है वही हमारे सुरक्षा कवच है। अभी रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं, तो रक्षक हमारे परम रक्षक क्या है, ये जो आशीर्वाद मिलते हैं सेवा करने से, ये रक्षा। मात्र सूत्र बांधने से कुछ नहीं होता, कुछ होता है नहीं होता है। तो यदि हम सेवा कर रहे हैं तो यही हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाता है, रक्षक बन जाता है। परमात्मा से, जिसकी भी सेवा की, परिवार से, सबसे, प्रकृति से हमें वरदान मिलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इसीलिए सबकी सेवा करें, प्रकृति की भी सेवा करें। हम तो सुबह सुबह अपना योग करते हैं, तो एक तो सबकी, सभी आत्माओं को, मतलब उनके पवित्र रूप में, और फिर प्रकृति की सेवा। प्रकृति की सेवा कैसे करेंगे, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका हम लोग करते हैं राजयोग के अंतर्गत। उसमें क्या है, एक एक तत्व को लेकर, 5 प्रकृति के तत्व है ना, धरती, आकाश, जल, सब एक एक तत्व को स्मृति में लाकर फिर उनको शुभ भावना, शुभ कामना देना,
1: क्योंकि वे वाइब्रेशन,
0: क्योंकि वे हमारी सेवा करते हैं। प्रकृति न हो तो हम कहाँ हैं, ये शरीर ही प्रकृति से बना है, है ना। तो 5 तत्वों को उसको कहते हैं सकाश, आकाश द्वारा शुभ भावना, गुड वाइब्रेशंस, गुड विशेस भेजना। और फिर उसके बाद जो है 6ठा जो तत्व है लाइट, जो आत्मा का तत्व है, उसको भी, सभी आत्माओं को भी, सभी के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी सेवा हो जाती है, इसको कहते हैं मनसा सेवा। ये भी एक प्रकार की सेवा है, मन से सभी के लिए। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सबसे बड़ा तरीका है दुख को दूर करने के लिए, मानव की सेवा करने के लिए। हमारी सोच में किसी के लिए भी जैसे नकारात्मकता न हो, हर एक, जैसे कोई बीमार है, आज ही मुझे पता चला कोई बहुत बीमार है, तो बैठकर उनको वो तरंगें भेजना,
1: जी बिल्कुल,
0: कि वो ठीक है, बीमार है, लेकिन उनको वो दुख का अनुभव न हो। तो ये सब सेवा, हम बहुत सेवा कर सकते हैं।
1: चलिए अगले प्रश्न से हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। मानवीय मूल्य की बात करें तो युवाओं पर हमने चर्चा की, हमारी जो महिलाएं हैं उनका भी अपने परिवार में, अपने समाज में, देश में काफ़ी बड़ा योगदान है, और महिलाएं कितना बड़ा रोल प्ले करती है जब मानवीय मूल्यों की बात आती है।
0: हाँ, तो देखिए, महिलाएं तो उनको शक्ति कहा जाता है, शिव शक्ति, वही धुरी है, सेंट्रल पॉइंट परिवार का, समाज का। और आजकल तो महिला मुक्ति हम देखते हैं, महिला सशक्तिकरण
1: की बात करते हैं,
0: क्योंकि महिला शक्ति ही है, लेकिन सशक्तिकरण, क्योंकि उसे खुद अपने आप को सशक्त बनाना है, तो उसकी तो भूमिका अद्भुत है,
1: सर्वश्रेष्ठ
0: है। सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि एक समाज को बनाना है, एक महिला को बना, एक परिवार को बनाना है, एक युवक के जीवन को बनाना है, किसी को भी बनाना है, तो उसकी धुरी महिला है, तो उसका तो, उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। और शुरुआत होती है घर से, इसीलिए हमारे यहाँ घर को घर नहीं कहते, क्या कहते हैं,
1: गृहस्थ
0: मंदिर कहते हैं, गृहस्थ आश्रम, आश्रम मतलब कि जहाँ श्रम, मेहनत ना हो, स्वतः स्फूर्त भावना हो, सुख हो, शांति हो, स्वतः। और कौन लाने का मुख्य काम, माँ करती है, इसलिए कहते हैं माँ जो है वो प्रथम विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार से माँ जो है हर एक का, जब वो भोजन ही बना रही है तो कितनी सात्विकता

0: से। इसीलिए कहते हैं ना घर का खाना, क्योंकि वो जो भोजन तैयार कर रही हैं तो उसमें इस भाव से कि जो भी उनके पति खाए, उनके युगल खाए, उनके बच्चे खाए, तो उनको शक्ति मिले, शुभ भावना से। बाहर का भोजन आप ले रहे हैं, पता नहीं किस भाव से बनाया गया है, लेकिन घर का तो निश्चित रूप से उसमें प्यार का जो इंग्रेडिएंट है वो मुख्य है,
1: इसलिए तो वो खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। और घर के हर एक कार्य को एक महिला जब प्रेम से करती है तो वो घर के हर एक कोने में वो प्रेम झलकता है,
0: कोने में झलकता
1: है, वो अपनापन दिखता है।
0: क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस है ना, जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशंस जिसको कहते हैं ओरा क्रिएट करते हैं। तो एक घर जब बनता है तो उसमें मेन दीवारें तो हैं, आजकल तो कितने सुंदर सुंदर बना सकते हैं, लेकिन उसको घर नहीं, हाउस नहीं, होम कहते हैं, गृहस्थाश्रम कहते हैं, तो वो माँ लाती है, नारी लाती है, क्योंकि वही संस्कार देती है ना। बच्चों में संस्कार पिरोना ये माँ का ही काम होता है, वो प्रथम विश्वविद्यालय है। जैसे बच्चों में आदर और माता पिता, जैसे घर में ही कैसे आपस में उनका रिलेशनशिप है, उनका संबंध है, इसी से तो बच्चे सीखते हैं। जैसे आपने कहा रोल मॉडल चाहिए उनको, सारा कुछ घर से शुरू होता है, तब बाद में स्कूल या जो भी, लेकिन घर जो प्रथम विश्वविद्यालय है। फिर बहुत सी नारियाँ अभी जुड़ रही हैं एनजीओज से, आध्यात्मिक संस्थाओं से, जैसे ब्रह्मा कुमारी में ही आप देखेंगे यह एक संस्था है
1: जो अपना योगदान देती है,
0: विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो महिलाओं द्वारा संचालित है। इसमें हर एक को लीडर बनाया जाता है, कोई फॉलोअर नहीं होता, कोई भगवान के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन सभी लीडर्स होते हैं। लीडर्स, वी क्रिएट लीडर। पहले लीडर कैसे बना, दूसरों पर वो करने के लिए नहीं,
1: हुकुम करने के लिए नहीं,
0: हुकुम करने के लिए नहीं, लीडर मीन्स, लीडर मीन्स स्वराज अधिकारी, अपने ऊपर नियंत्रण हो, यू आर विद इन योर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, तभी हम, तभी दूसरे हमें सुनेंगे। यदि हम में वो नियंत्रण नहीं तो ये जरूरी है, ये सबसे बड़ी सेवा है, है ना। इसलिए हम कब सेवा करते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में चार विषय सीखते हैं, ज्ञान, नॉलेज, योग, मेडिटेशन, धारणा मीन्स इनकल्केशन, और सेवा। सेवा अंत में आती है। जब आपने अपने आप को तैयार कर लिया तब आप सेवा में चल सकते हैं, नहीं तो वो सेवा डिसर्विस हो सकती है, गलत हो जाएगा। क्योंकि तब क्या होगा, सेवा करें नाम के लिए, यश के लिए या कुछ प्राप्ति के लिए, वो सेवा नहीं, वो तो नौकरी है, ये है, वो है, लेकिन सेवा। और सुमिता जी, हर कार्य को हम सेवा में बदल, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, जब हम कर रहे हैं ना, परमात्मा ने मुझे ये सौंपा है ये कार्य, परमात्मा को याद करके एक शुभ विचार लाकर जब हम वो कार्य करते हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, आज सुबह ही हम झाड़ू लगा रहे हैं तो सोच रहे हैं ये भगवान का घर है, तो वो सेवा हो जाती है।
1: मतलब कि जिस भी कार्य को आप करें उस खुशी की भाव से करें,
0: खुशी से, कहते हैं ना हाथों से करो, घर का नाम मुख से लो, प्रभु का नाम, तो उनको कि ये सात्विकता लाए, हमारी सोच से ही शुरू होता है सारा कुछ, इंटेंशन काउंट्स।
1: और कहीं ना कहीं जब आप अपने भीतर खुश है तो वो आप में दिखता है,
0: दिखता
1: ना, आपके
0: है।
1: हर एक कार्य में दिखता है, आपके वाणी में, आपके बोली में, आपके आचरण में, वो नजर आता,
0: नजर आता है। और खुशी कॉन्टेजियस है, आप खुश है, आप इतने खुश है, मैं भी डबल खुश हो गई ना। तो इसलिए महिलाओं का जो की जो भूमिका है सर्वश्रेष्ठ है, कर रही है बहुत कुछ, लेकिन और भी,
1: तो कहीं ना कहीं महिलाएं जितना करती है बदले में क्या उनको मिलता है। कभी कभार हम समाज में देखते हैं कि जहां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अपना योगदान तो वो देते ही है, लेकिन कभी कभार ऐसी कमियां भी आ जाती है जहां पर उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। अभी के समय में तो काफी बदलाव आया है, काफी सकारात्मक बदलाव हम देखते हैं, लेकिन अभी भी कहीं है किसी वर्ग में महिलाएं अभी भी जूझ रही है, तो कहीं यह है कि वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रही है या अपने हकों को नहीं जानती, क्योंकि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं महिलाओं के लिए बहुत कार्य कर रही है। और मानवीय मूल्यों की बात करें तो उन्हें अपने हक के बारे में बताना, जागरूकता फैलाना, ये सब कुछ किया ही जा रहा है,
0: जा रहा है। देखिए, कहते हैं यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वही देवत्व, डिविनिटी, शक्ति होगी, खुशहाली होगी। तो बहुत कुछ कह सकते हैं इस बारे में, और बहुत कुछ कहा जाता है कि महिलाओं के प्रति वो सम्मान, लेकिन अभी जो मैं अपने जीवन में अनुभव कर रही हूँ वो विचार आपसे, वो अनुभव मैं आपसे साझा

0: करना चाहती हूँ और हमारे प्रिय श्रोताओं के साथ कि अभी मैं उस मोड़ पे आई हूँ जहाँ अपेक्षा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं। देखिए हम सेवा कर रहे हैं, कहते हैं दान करते हैं तो दाहिने हाथ से कर रहे हैं तो बाएं हाथ को पता भी ना चले, शास्त्रों ने ये कहा
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो सेवा भी हम निस्वार्थ भाव
1: करें
0: बिना किसी एक्सपेक्टेशन, तो उसका 100 गुना मिलेगा। और यदि हमने सेवा करके मान नाम शान या सम्मान की अपेक्षा की तो मानो हमने कच्चा फल खा लिया। उसका कर्म का उसका जो फल आएगा बहुत बड़ा आएगा। तो इसीलिए कुछ एक्सपेक्टेशन तो आप बड़े खुश होते हैं।
1: हाँ। यह आपने सही कहा,
0: यहाँ तक कि आपने कुछ अच्छा किया, लोग आपका अपमान कर रहे हैं तो भी आप खुश रहेंगे। ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। इस स्तर पर मैंने देखा यदि आप इस अवस्था को नहीं आएंगे तो दुखी रहेंगे। क्या फायदा सेवा करके दुखी हैं, इसने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे मान नहीं दिया।
1: अपने आप पर कार्य करना बहुत आवश्यक है,
0: अपने आप पर
1: कार्य करना।
0: और यहाँ पर मैं कहूंगी आध्यात्मिकता का महत्व अनिवार्य है, क्योंकि कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है।
1: चलिए यहाँ पर डॉक्टर संयुक्ता जी, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त होने को चला है, हम चाहेंगे कुछ पंक्तियों में कोई संदेश आप देना चाहेंगे कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले।
0: वही हम तो कहेंगे कि मानव सेवा ही माधव सेवा है और जिम्मेवारी का ताज हर एक के ऊपर है ना। सेवा कोई बड़ा काम नहीं है कि कोई पहाड़ इस तरह से, लेकिन अपने में वो जागृति लाना है, हमको अंधों की लाठी बनना है, जिसमें भी थोड़ा सा दुख हो, अंधकार हो, इस तरह के मतलब समस्या हो तो थोड़ी मदद, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर खुश नहीं रह सकते। और सेवा करने में बहुत खुशी है
1: जी।
0: उससे अधिक खुशी और किसी बात में नहीं है, तो क्यों ना करें। तो बच्चों में भी ये संस्कार पिरोएं और हम करेंगे, कहते हैं ना तेरे भाने सर्व का भला। जब हम आगे बढ़ेंगे सेवा में, एक पहले तो स्वसेवा और सर्व की सेवा, तो पूरी दुनिया सेवा में लग जाएगी
1: जी।
0: पहले हमें ही निस्वार्थ भाव से करना है। तो आज हम यह संकल्प करें
1: जी।
0: विश्व मानवता दिवस के अवसर पर कि हम शिकायत कम करेंगे, क्या करेंगे, मदद ज़्यादा करेंगे
1: जी।
0: कि हम आलोचना कम करेंगे, सहयोग ज़्यादा
1: करेंगे,
0: तो देखिए जीवन आनंदमय हो जाएगा और एक सुखद जीवन सुखद संसार की का निर्माण कर सकेंगे।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संयुक्ता जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी और इतने अमूल्य विचार आपने हमारे साथ साझा किए। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी का जिन्होंने रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया, और साथ ही हमारी पूरी टेक्निकल और प्रोडक्शन टीम का भी धन्यवाद जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम आप तक पहुँच पाया है। हमारे प्रोड्यूसर महादेवन जी, आपका धन्यवाद। साथ ही टेक्निक पर काद्य का सहयोग मिला, साथ में हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुषा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानवीय मूल्यों को सिर्फ इस दिन तक सीमित न रखें जिस दिन मानवता दिवस मनाया जाता है, यह हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द आप सबसे फिर भेंट होगी। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।
0: नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय ठीक 10 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं 10 बजे के समाचारों के साथ।

0: संपदा संगठन विपो के महानिदेशक दहिनतांग की मेजबानी करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य मॉरिशस और विपो के बीच सहयोग को मजबूत करना है। विदेश मामलों के जूनियर मिनिस्टर अजय नरसिंघन के अनुसार चर्चा मुख्य रूप से पैरेलल इंपोर्ट लाइसेंसेस और पेटेंट पर केंद्रित होगी। समुद्र तट से सटी सरकारी भूमि, ये शब्द पिछले गुरुवार से चर्चा में है जब भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने पॉइंट दिसनी समुद्र तट का दौरा कर सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच का जायजा लिया। आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों के टिंटेड शीशों विशेषकर चिकित्सा कारणों से दी जाने वाली अनुमति के लिए नए दिशा निर्देश ला रहा है। इसके तहत आगे की विंड स्क्रीन और साइड विंडो से कम 75% रोशनी आनी चाहिए। मंत्री उस्मान मोहम्मद के अनुसार इस संबंध में विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जाँच हेतु एक नई वेरिफिकेशन प्रणाली तैयार की जा रही है। और विदेश में जिम्बाब्वे में पुलिस ने 6 दिन पहले कारिबा झील में एक नौका के पलटने के बाद 8 और शव बरामद किए हैं, जिससे मरने वालों की संख्या कम से कम 92 हो गई है। शेष पीड़ितों की तलाश के लिए खोज अभियान अभी भी जारी है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। बसंत राय रोड लाहौजा में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री अशोक कुमार सिपुल, जो संजय नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती ललिता सिपुल के घर बसंत राय रोड लाहौजा से उठाकर प्लेन मानियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: भक्ति धारा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम करजोड़ अभिवादन करते हैं। मंगलवार का दिन है और आज की तारीख 18 अगस्त 2026 का वर्ष, और इसी के साथ पुनः रत्ना आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी है। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक आप सभी को याद दिला दे, अभी थोड़ी ही देर में ज्ञान चक्र के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे। और ये कार्यक्रम मॉरिशस श्री सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे आचार्य सकलानी जी, साथ ही साथ 10:15 बजे आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश पत्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में। तो आइए, मंगलवार का दिन सभी के लिए मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं इस प्रथम भजन के द्वारा।

नगभूषण मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशाकवन्नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। ज्ञान चक्र के इस विशेष कार्यक्रम में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत आज के कार्य में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, श्रावण मास और अपने चरम शिखर पर पहुंच गया है, जो इस श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, वो तो बहुत और बड़े भाग्यशाली लोग हैं। क्योंकि शिव महापुराण कहता है, ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि हे महाबुद्धिमान महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, आप हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। क्योंकि ब्रह्म सत्र में और अचानक ऋषियों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ, तो क्योंकि सूत जी तो इतिहास पुराण के महान और प्रकांड आचार्य हैं, प्रकांड ज्ञानी हैं, इसलिए ऋषियों ने उनसे और शिव के इस तत्व को पूछा, हे भगवान, हम आप जरूर कोई हमारा कल्याण करने के लिए ही आप यहाँ आए हैं। क्योंकि साधुओं का आगमन ऐसे ही नहीं होता है श्रोताओं, साधु तो जीवन में जब पिछले जन्मों के कई पुण्य उदय होते हैं तब साधुओं का समागम होता है, तब साधु का दर्शन होता है। इसलिए आप हमें शीघ्र वो पवित्र पुराण सुनाएं जो अत्यंत श्रवणीय है, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त है, वेदांत के सार स्वरूप और आप और संपन्न हो, हे वेदवादी, और आप तो वेदवादी हो, आप महान ज्ञानी हो। श्रोताओं, जब ऐसे ऋषियों ने और सूत जी से पूछा, तब सूत जी ने बहुत मधुर और न्यायुक्त एवं शुभ वचनों से उन्हें और कहा, सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया, मुझ पर कृपा की है, ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर के भी मैं आपके समक्ष महर्षियों के द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूँगा। अब मैं महादेव जी और देवी पार्वती, कुमार स्कंद गणेश नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूँगा जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग और मोक्ष रूपी फल को देने वाला और साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का और सारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो कारण है, वो तो स्वयं साक्षात भगवान शिव ही हैं। ऐसे भगवान शिव के नाम की महिमा का सतत जप और करने से मनुष्य का कल्याण होता है। कह रहे हैं कि महादेवम विरूपाक्षम चंद्रार्ध कृतशेखरम अमृतम शाश्वतम स्थाणुम नीलकंठम पिनाकिनम वृषभाक्षम महाज्ञेयम पुरुषम सर्वकामदम कामारिदहनम कामरूपम कपर्दिनम विरूपम गिरिशम भीमम सकृणम रक्तवाससम योगिनम कालदहनम त्रिपुरंध्रम कपालिनम गूढ़व्रतम

0: अवगोचरम आ अणिमादि गुणाधारम त्रैलोक्यश्वर्यदायकम वीरम वीरहणम घोरम विरूपम मासलम पटुम ममासाद्मुत्मतम भैरम वे महेश्वरम। इस प्रकार से और भगवान शिव की उपासना आपने और इस शिव पुराण में किया, भगवान शिव के तमाम और मंत्रों का जप किया। श्रोताओ, आज यहीं पर समय समाप्त हुआ चला जा रहा है। भगवान शिव आप सब पर कृपा करें, आपका कल्याण करें, यही भगवान शिव से प्रार्थना है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम के समस्त आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन है। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित की गई है कि सर्वप्रथम हम वेद पाठ एवं उसका भावार्थ सुनेंगे, तत्पश्चात एक मधुर भजन का आनंद लेंगे और अंत में एक वैदिक मंत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं वेद पाठ से। ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपो केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। वह सबका जनक जगदीश्वर, दिव्य गुण कर्म स्वभावों वाला प्यारा परमेश्वर, वेद ज्ञान द्वारा, भीतर से सत्य प्रेरणा द्वारा एवं अपने उत्तम सत्य न्याय उपकारमय दिव्य श्रेष्ठ कर्मों द्वारा संसार में सतत सब सज्जनों को श्रेष्ठतम कर्मों की सदा प्रेरणा करता रहता है। ओम योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। समान गुण कर्म स्वभावों वाले एक समान योग मार्ग के पथिक हम अपने योग मार्ग के प्रत्येक आचरण और उसमें आई हुई प्रत्येक कठिनाई में अपने रक्षण संरक्षण के लिए महान बलशाही जगत सम्राट परमेश्वर का आह्वान करते हैं। ओम अन्नपते नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणा प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। प्रभु अन्न आदि खाद्य पदार्थों का स्वामी है, वह सबको निरोग सुखप्रद बलकारी अन्न आदि पदार्थ प्रदान करता है। जो अन्न जल वस्त्र आदि का दान कर अन्यों का उदर भर उनकी भूख मिटाता है, प्रभु उस दाता को खूब धन धान्य से सुख सौभाग्य से भरपूर करता है। ओम उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्दवाधमं विमध्यमं श्रथाय अथा वयमादित्य व्रते तवा नागसो अदितये स्याम। हे प्रभु,

आप हमारे उत्तम बंधन को उठाइए, मध्यम बंधन को शिथिल कीजिए और अधम बंधन को गिराइए व हटा दीजिए। इसके पश्चात हे आदित्य, हम आपके अखंड एक रस की प्राप्ति के लिए आपके व्रत नियम में वर्तमान रहते हुए सर्वथा निष्पाप होवे। ओम शांति शांति।

प्रिय श्रोतागण, भारतीय वैदिक संस्कृति में श्रावणी पर्व केवल यज्ञोपवीत परिवर्तन अथवा किसी बाह्य धार्मिक अनुष्ठान का अवसर नहीं है, बल्कि यह वेदाध्ययन, स्वाध्याय, गुरु शिष्य परंपरा, ऋषि स्मरण, ज्ञान संस्कार और जीवन में वैदिक अनुशासन के पुनःस्थापन का महत्वपूर्ण पर्व है। श्रावण पूर्णिमा के साथ संबद्ध उपाकर्म की परंपरा में विद्यार्थी और वेदाध्यायी अपने अध्ययन व्रत का नवीनीकरण करते हैं तथा वेद वाणी के प्रति अपनी श्रद्धा और उत्तरदायित्व को पुनः स्वीकार करते हैं। विभिन्न वैदिक शाखाओं, गृह सूत्रों और परंपराओं में श्रावणी के अनुष्ठान की विधि में भिन्नता मिलती है। अतः किसी एक आधुनिक पद्धति को समस्त वैदिक परंपराओं का एकमात्र स्वरूप मानना उचित नहीं होगा। फिर भी वेदाध्ययन और वाक्तत्व से संबंधित मंत्रों का प्रयोग श्रावणी के वैदिक वातावरण में अत्यंत सार्थक है। ऐसे ही ऋग्वेद के वाक् सूक्त का प्रसिद्ध मंत्र है, ओम उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचमुत शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्वं विसस्त्रे जायेव पत्य उशति सुवासाः। यह मंत्र ऋग्वेद के दशम मंडल के 71वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है। इस सूक्त का मूल विषय वाणी, ज्ञान, वेदार्थ बोध और विद्वत्ता का महत्व है। श्रोताओं, मंत्र का अत्यंत गंभीर संदेश यह है कि केवल आँखों से किसी वाणी को

देख लेना उसे वास्तव में देख लेना नहीं है, और केवल कानों से शब्द सुन लेना उस वाणी को वास्तव में सुन लेना नहीं है। वाणी का वास्तविक दर्शन और श्रवण तभी होता है जब उसके भीतर निहित अर्थ, तत्व और ज्ञान का बोध हो। वैदिक परंपरा में इसी कारण वेद का केवल कंठस्थ पाठ पर्याप्त नहीं माना गया। अर्थ ज्ञान, मनन, व्याकरण, निरुक्त और विवेकपूर्ण अध्ययन को भी अत्यंत महत्व दिया गया। श्रोताओं, श्रावणी पर्व के संदर्भ में यह मंत्र विशेष रूप से प्रेरणादायक बन जाता है, क्योंकि श्रावणी का मूल भाव ही वेदाध्ययन के प्रति पुनः समर्पण है। इस अवसर पर मंत्र की आहुति देना केवल अग्नि में घृत डालना नहीं, बल्कि अपने भीतर अज्ञान और अर्थहीन कर्मकांड को समर्पित करके ज्ञानमयी वाणी को जीवन में प्रतिष्ठित करने का प्रतीकात्मक संकल्प है। यहां इस मंत्र में त्वह का अर्थ किसी एक व्यक्ति अथवा मनुष्य से लिया जाता है। मंत्र कहता है कि कोई व्यक्ति वाणी को देखते हुए भी उसे नहीं देखता, और कोई व्यक्ति उसे सुनते हुए भी वास्तव में नहीं सुनता, किंतु किसी विशिष्ट अधिकारी, अर्थज्ञ और ज्ञानवान व्यक्ति के लिए वही वाणी अपना स्वरूप उसी प्रकार प्रकट कर देती है जैसे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित अपने पति के प्रति अनुरक्त पत्नी अपने पति के सम्मुख अपने आप को प्रकट करती है। यह उपमा अत्यंत काव्यमय होने के साथ साथ गहन दार्शनिक भी है। श्रोताओं, यहां वाणी को केवल ध्वनि नहीं माना गया है, वाणी ज्ञान की वाहिका है। शब्द अपने भीतर अर्थ को धारण करता है और अर्थ के माध्यम से मनुष्य को सत्य के निकट ले जाता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल शब्द सुनता है लेकिन अर्थ नहीं समझता, वह वैदिक दृष्टि से वाणी के वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं करता। अब एक शब्द आया है इस मंत्र में, उत का प्रयोग। यहां विशेषतः एक अन्य स्वभावना को सूचित करता है। त्वह किसी एक व्यक्ति के अर्थ में है, पश्यन देखने वाला, और न ददर्श वास्तव में नहीं देखता, वाचम वाणी को सूचित करता है। इस प्रकार प्रथम भाग का आशय हुआ कि व्यक्ति वाणी को सामने देखकर भी उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता। इसके बाद आता है पश्यन् न शृणोति एनाम। कोई व्यक्ति वाणी को सुनता हुआ भी वास्तव में उसे नहीं सुनता। यहां बाह्य श्रवण और आंतरिक श्रवण के बीच का अंतर बताया गया है। श्रोताओं, आज के जीवन में इसका अत्यंत सरल उदाहरण देखा जा सकता है। कोई विद्यार्थी गुरु का व्याख्यान सुनता है, शब्द उसके कानों तक पहुंचते हैं, वह नोट भी बना लेता है, लेकिन यदि उसके मन में विषय का बोध नहीं हुआ तो वास्तविक अर्थ में उसके शिक्षा को नहीं सुना। इसके विपरीत कोई दूसरा विद्यार्थी कम शब्दों में कही गई बात के मर्म को समझ लेता है, उसने वास्तव में सुना है। इस मंत्र का तीसरा भाग इस विचार को चरम बिंदु तक ले जाता है। उतो त्वस्मै तन्वम विसस्रे, अर्थात किसी विशेष अधिकारी के लिए वाणी अपना स्वरूप खोल देती है। यहाँ तनु का अर्थ शरीर अथवा स्वरूप है, और विसस्रे का भाव है

अपने स्वरूप को खोलना, प्रकाशित करना अथवा प्रकट करना। इसके बाद अत्यंत सुंदर उपमा आती है, जायेव पत्य उषति सुवासा। यह वैदिक ऋषि ने ज्ञान के प्रकटीकरण को एक जीवंत मानवीय उपमा द्वारा समझाया है। ज्ञान बाहर से केवल थोपा नहीं जाता, साधक की पात्रता, श्रद्धा, अभ्यास, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण, मनन और अर्थबोध के कारण ज्ञान के भीतर प्रकाशित होता है। श्रोताओं, वैदिक साहित्य में वाक का स्थान अत्यंत उच्च है। वाणी केवल मनुष्य के संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि ज्ञान की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। वेद को श्रुति कहा गया है, क्योंकि उसका ज्ञान ऋषियों ने दिव्य अनुभूति और श्रवण की परंपरा में ग्रहण किया। इसलिए वैदिक शिक्षा पद्धति में उच्चारण, स्वर, मात्रा, पद विभाग और अर्थ सभी को महत्व दिया गया है। ऋग्वेद के इसी सूक्त में आगे वाणी के ज्ञान से संबंधित अनेक गंभीर विचार मिलते हैं। वैदिक दृष्टि में विद्वान वे हैं जो वाणी के भीतर छिपे अर्थ को पहचानते हैं। केवल शब्दों की पुनरावृत्ति करना विद्या का पूर्ण स्वरूप नहीं है। निरुक्तकार यास्क और महाभाष्यकार पतंजलि की परंपरा में भी इसी मंत्र का प्रयोग अर्थ ज्ञान के महत्व को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। पतंजलि ने महाभाष्य में इस मंत्र को उद्धृत करते हुए स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति सुनता हुआ भी नहीं सुनता और वाणी अपने स्वरूप को उस व्यक्ति के सामने प्रकट करती है जो उसका वास्तविक ज्ञाता है। महाभाष्य में इस प्रसंग को व्याकरण अध्ययन की आवश्यकता से भी जोड़ा गया है। श्रोताओं, श्रावणी अर्थवा उपाकर्म का संबंध परंपरागत रूप से वेदाध्ययन के पुनः आरंभ और अध्ययन व्रत के नवनीकरण से रहा है। विभिन्न वैदिक परंपराओं में इसके अनुष्ठान प्राप्त करते हैं। इसी कारण उतत्वा पश्यन्न ददर्श वाचम मंत्र का श्रावणी में प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है। यह साधक को चेतावनी देता है कि वेद सामने होते हुए भी वह वेद से वंचित रह सकता है। मंत्र कानों से सुना जा सकता है, लेकिन उसका ज्ञान हृदय तक न पहुंचे तो वास्तविक श्रवण नहीं हुआ। तो श्रोताओं, श्रावणी पर्व के संदर्भ में इस मंत्र का महत्व इसी कारण अत्यंत गहरा है। श्रावणी केवल यज्ञोपवीत बदलने का अवसर नहीं, बल्कि अपने अध्ययन व्रत और पुनर्जीवित करने का अवसर है। यदि किसी परंपरा में इस मंत्र को आहुति के लिए ग्रहण किया जाता है तो वह आहुति ज्ञान के प्रति समर्पण, अज्ञान के त्याग और वेदवाणी को समझने की पात्रता प्राप्त करने का सुंदर प्रतीक बन जाती है। अंततः इस मंत्र की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि वेद हमारे सामने उपस्थित होकर भी हमारे लिए अप्रकट रह सकता है। शब्द सामने हैं, पुस्तक सामने हैं, ग्रंथ सामने हैं, मंत्र सामने हैं, गुरु सामने हैं, फिर भी यदि मन में श्रद्धा, बुद्धि में विवेक और अध्ययन में परिश्रम नहीं है तो हम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। परंतु जब साधक श्रद्धा, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण, अर्थ ज्ञान, मनन और आचरण के साथ वेद के समीप जाता है, तब वाणी उसके लिए अपना स्वरूप प्रकट करती है। यही वह अवस्था है जिसे ऋषि ने सुंदर उपमा के द्वारा कहा है। इसलिए श्रावणी के अवसर पर इस मंत्र की आहुति का सर्वोच्च संदेश

0: इस बाहरी अग्नि से कहीं अधिक आंतरिक है। घृत की आहुति अग्नि को दी जाती है, परंतु उसके साथ साधक अपने अज्ञान, आलस्य और अर्थहीन अध्ययन को भी ज्ञानाग्नि में समर्पित करने का संकल्प करता है। वह प्रार्थना करता है कि उसकी दृष्टि में विवेक आए, उसके श्रवण में अर्थबोध आए, उसकी वाणी में सत्य आए और उसके जीवन में वेद का प्रकाश आए। यही श्रावणी की वास्तविक सार्थकता है। वेद को केवल पढ़ना नहीं, वेद को समझना, केवल सुनना नहीं, वेद को आत्मसात करना, केवल मंत्र बोलना नहीं, मंत्र के प्रकाश में जीवन को संस्कारित करना। आदरणीय श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। हमें विश्वास है कि वेद मंत्र की व्याख्या ने आपके जीवन में सकारात्मक प्रेरणा प्रदान की होगी। इस कार्यक्रम को सजाने हेतु श्रीमती अंजू जी का विशेष धन्यवाद है। आप सभी का स्नेह और श्रवण हमारे लिए अमूल्य है। पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

0: श्रोताओं, भक्तिधारा कार्यक्रम में पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं और इसी के साथ आचार्य सकलानी जी को और आचार्य सुदेश बद्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं अपनी ज्ञानवर्धक बातों के लिए। श्रावण का यह पावन मास ज्ञानवर्धक भक्तिभाव बातों को श्रवण करने में ही महत्व रखता है। श्रोताओं, ऐसा कहा जाता है कि अपने मन की रक्षा उसी प्रकार करिए जिस प्रकार से एक माली अपने सुंदर फूलों की रक्षा करता है, क्योंकि शांत और जागरूक मन ही सुखी जीवन की जड़ है। अगर मन में तूफान है तो जीवन शांतिमय कैसे व्यतीत हो सकता है? मन अगर शांत है तो बाह्य तूफानों से लड़ने के लिए भी हमें भीतर से शक्ति मिल ही जाती है। जहां पर हम शक्ति की बात करते हैं, बल की बात करते हैं, वहां बुद्धि का भी उतना ही महत्व है। और बल और बुद्धि के दाता भगवान हनुमान का नाम लेने मात्र से उस शक्ति का संचार हम अनुभव कर सकते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में मंगलवार के आज के इस दिन को और भी बल और बुद्धि से आगे बढ़ाते हैं।
1: श्री गुरु चरण सरोज रज निज

तो श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति धारा कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहे, इन शुभकामनाओं के साथ पुनः हमारी और आपकी भेंट होगी एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, 11 बजे के समाचारों के बाद आप विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन सभी को।

0: जी सुंदर संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे विधिमान नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों के टिंटेड शीशों, खासकर चिकित्सीय कारणों से दी जाने वाली अनुमति के आवेदनों को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश लागू करने की तैयारी कर रहा है। वाहन की सामने की विंड स्क्रीन और आगे की साइड विंडो से कम 75% रोशनी अंदर आनी चाहिए। हालांकि 5% की अतिरिक्त छूट की अनुमति होगी। नए दिशा निर्देशों में ये भी स्पष्ट किया जाएगा कि किन बीमारियों के मामलों में अनुमति दी जा सकेगी। लगभग एक हफ्ते बाद फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत कल सोमवार 17 अगस्त को 2 और पुलिस अधिकारियों से अंडर वार्निंग पूछताछ की गई।

0: ही। ये है सेवानिवृत्त पुलिस सर्जेंट लुई क्लिफोमोइस मिकाएल एंजेंद्रा और सर्जेंट विद्युत जीवन। माना जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ी रकम हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसे रिश्वत या अनुचित लाभ माना जा सकता है। अगले महीने 10 और 11 सितंबर को मॉरिशस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के महानिदेशक दाहंतांग की मेजबानी करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य मॉरिशस और विपो के बीच सहयोग को मजबूत करना है। विदेश मामलों के जूनियर मिनिस्टर राजन नरसिंघन के अनुसार चर्चा मुख्य रूप से पैरेलल इंपोर्ट लाइसेंसेस और पेटेंट पर केंद्रित होगी। और विदेश में रूस पर हुए यूक्रेनी हमलों में एक बच्चे सहित 9 लोगों की मौत हो गई है और 23 अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये हमले उस रात के ठीक बाद हुए हैं, जिसे रूस ने इस साल यूक्रेन द्वारा किया गया सबसे बड़े पैमाने का हमला बताया था, जिसमें कम से कम 7 लोग मारे गए थे। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में एक शोक समाचार। ओंगियता कोमापू लेन नंबर 2 वाकुआ में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रीतम लीलोधारी, जो प्रीतम नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर ओंगियता कोमापू लेन नंबर 2 वाकुआ से उठाकर थ्वामामेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:02 हो चुके हैं
2: और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर आइए नजर डालते हैं। लातुकिनिग के आसपास के इलाके, जिनमें है एवेन्यू लातुकिनी, ऑन्चोयम, ऑन्ड्रियानम, खोतों, इबिस्किस, मोगारिते, जास्मिन, अनिमोन, फ्लॉक्स, मिगे, जास्मिन, जीनिया, मायोचिस और पिटूनिया, कोटों, इबिस्कस और बुगनविलिये, केनेथ, नेल्सन, टेरासन और जेरानियम के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 20 अगस्त को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 3 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे उर्दू भाषा में। पेशकश है सैयदा सुबाई।
3: शम्मे फरोज़ा।

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

लिखते लिखते कलम ही थक गया, लिखते लिखते कलम ही थक गया, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ों का जवाब नहीं। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। मौज़े सामईन, उम्मीद है आप बफ़ज़्ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम बयान ना तो

0: सलाम और आपके पैगामात। ताखिर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم।

सदक़ल्लाहु लज़ीम। ए पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, और जिस जिसने इस तिलावत में हिस्सा लिया उन सबको इसका सवाब दे, आमीन। फरमाने बारी ताला है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। जिस दिल में सवाब का शौक और अजाब का खौफ पैदा हो जाए, जन्नत खुद उसकी तलाश में लग जाती है।

0: और जिस सामीन इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं। मंगल का दिन है, अगस्त की 18 तारीख है और आज इस्लामी साल के तीसरे महीने माह रबीउल अव्वल की 5 तारीख है। आप अपने पैगाम हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251705। ताखीर ना करते हुए अब आप समाअत फरमाएंगे मौलाना मुख्तार अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समाअत फरमाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलातु व सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातिमिन नबियीन रहमतिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله، صدق الله العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم। محترم سامعین کرام،

आज का हमारा मौजू ऐसा मौजू है कि जिस पर जितना बोला जाए कम है, जिसका जितना जिक्र किया जाए दिल उतना ही रोशन होता है, और जिस हस्ती का नाम लिया जाए ईमान को ताजगी मिलती है। वो अजीम हस्ती कौन है? वो अजीम हस्ती हम सब के प्यारे आका, हम सब के प्यारे मौला, प्यारे रहबर, प्यारे मुर्शिद, नबी आज़म, इमामुल अंबिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिनके बारे में रब फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। मोहतरम सामईन, दुनिया में बहुत सी अजीम इंसान गुजरे, किसी ने इल्म में कमाल हासिल किया, किसी ने हुकूमत में कमाल हासिल की, किसी ने बहादुरी में तो किसी ने सखावत में, किसी ने इबादत में तो किसी ने रियाजत में। लेकिन मेरे महबूब प्यारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ऐसी जाम ज़ात है कि इंसानियत की हर खूबी अपने कामिल तरीन मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नज़र आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने मुक़दस कलाम में फ़रमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, यानी प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए बेहतरीन नमूने हयात है, बेहतरीन नमूना है। अब गौर कीजिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं थे, आप घर के सरबराह भी थे, आप एक बाप भी थे, आप शौहर भी थे, आप उस्ताद भी थे, आप सिपह सालार भी थे, आप हाकिम भी थे, आप काजी भी थे, यतीमों के लिए सहारा, गरीबों के मददगार, और दुश्मनों के साथ भी आपका अखलाक बड़ा ही आलीशान था। यानी ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, हर शोबे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए नमूने हयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, मेरे अज़ीज़ दोस्तों सामईने कराम, नबूवत से पहले भी मक्का के लोग प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे, और आपका लकब जो उन लोगों ने दिया था अस्सादिक अल अमीन, यानी सच्चा और अमानतदार। ये वो ज़माना था जब अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान भी नहीं फरमाया था, लेकिन दुश्मन आपकी सदाकत से इनकार नहीं कर सकते थे। सोचने की बात है, आज हम अपने मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या हकीकत में लोग हमें सच्चा और अमानतदार कहते हैं? क्या हमारा कारोबार देखकर लोग कहते हैं कि ये शख्स हमें धोखा नहीं देगा? क्या हमारे साथ मामला करने वाला मुतमईन होता है? क्या हमारी ज़बान से निकली हुई बात पर लोग एतमाद करते हैं? अगर नहीं तो हमें सीरत मुस्तफ़ा की तरफ वापस आने की सख्त ज़रूरत है। मोहतरम दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ये नहीं कि आपसे सिर्फ मोहब्बत की जाए, बल्कि हुजूर की मोहब्बत का तकाजा क्या है? हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनी ज़िंदगी में लाया जाए। हम बात करें अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए रहमत से भरा हुआ था। ताइफ़ का वाक़िया हमें याद होगा, आप दीन की तबलीग के लिए गए, दीन की इशारत करने के लिए गए, लेकिन लोगों ने इसको जवाब में क्या किया? आपकी दावत को कबूल भी ना की, आपको तकलीफ़ पहुंचाई, आप पर पत्थर बरसाए, आपको के जिस्म को लहूलहान किया। जब फरिश्ता आया, अर्ज़ किया, हुजूर अगर आप हुक्म दे तो इन लोगों को दो पहाड़ों के दरमियान में कुचल दूँ, मेरे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बददुआ नहीं फरमाई। आपने उनके लिए हलाकत की दुआ नहीं मांगी, बल्कि आपने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा इरहम कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, और आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह को मानने वाले होंगे। ये चीज़ हुआ, यह मेरे महबूब की रहमत, यह है प्यारे आका की रहमत। हमें कोई मामूली सी बात कह दे तो हम सालों तक के उससे नाराज़ रहते हैं, किसी ने हमारे साथ इख्तलाफ़ किया तो हम उसके लिए बद्दुआ करने लग जाते हैं। हमारे आका को पत्थर मारे गए, जिसे मुबारक लहू लहान किया गया, मगर ज़बान से उम्मत के लिए रहमत ही निकली। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगर हम उसने अखलाक को देखें, अल्लाह ने फरमाया, वइन्नका लअला खुल्क़िन

अज़ीम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है सबसे अज़ीम है, आप अज़ीम अखलाक पर फायज़ हैं। यहाँ अल्लाह ने आपके माल व दौलत या आपके महल, आपकी ज़ाहरी शान व शौकत का ज़िक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया आप अज़ीम अखलाक पर हैं। इससे मालूम हुआ कि इंसान की असल अज़मत उसके अखलाक में है। आज हम तालीम याफ्ता हैं लेकिन अखलाक कहाँ है, हम तरक्की याफ्ता हैं लेकिन बर्दाश्त कहाँ है। हम सोशल मीडिया पर दीन की बातें शेयर करते हैं, हम जाहिर करते हैं, शोआफ करते हैं कि हम ही सबसे नेक हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, लेकिन घर में हमारी ज़बान कैसी है। हम नाते सुनते हैं, बेशक सुनना चाहिए, नाते पढ़ते हैं, बेशक पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा रवैया अपने माँ बाप के साथ कैसा है। मिलाद की महफिलें सजाते हैं, सजाना चाहिए, लेकिन पड़ोसी हमारे अखलाक से खुश हैं या परेशान, इस पर हमें गौर करना चाहिए। मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल का सबसे खूबसूरत सबूत यह है कि हमारे अखलाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नज़र आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक घर के अंदर कैसा था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के इमाम थे, इमामुल अंबिया हैं आप, लेकिन घर में भी बेहतरीन नमूने अखलाक था आपका। आप अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ हुस्न सलूक से पेश आते थे, घर वालों के कामों में आप हाथ बटाते थे, मुसलमानों को तालीम दी कि बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। आज हमें इस तालीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर हम नरम होते हैं, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में हम मुस्कुराते हैं, दोस्तों से हंसते मुस्कुराते मिलते हैं, लेकिन जैसे घर आते हैं हमारा रवैया बदल जाता है। बीवी के साथ सख्त लहजा, बच्चों पर गुस्सा, वालदेन से बदतमीज़ी, ये सीरत मुस्तफ़ा नहीं है दोस्तों। सीरत मुस्तफ़ा क्या है? अगर हम वाकई में नबी के आशिक हैं तो हमें अपने घर को भी मोहब्बत, रहमत और अखलाक का घर बनाना होगा। आपको मालूम होगा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का अदल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के मामले में किसी रिश्ते, किसी ख़ानदान या हैसियत को आड़े नहीं आने देते थे। आपने उम्मत को यह तालीम दी कि इंसाफ करो, चाहे मामला अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन आज का मुआशरा अगर देखा जाए, आज का मुआशरा बिल्कुल इसके अपोजिट है। अपना आदमी गलती करता है तो हम कहते हैं छोड़ो यार अपना है, लेकिन दूसरा अगर वही गलती करे तो कहते हैं इसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे महबूब की तालीम ये है कि जो हक है वो हक है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी मुआफ़ी पर गौर करें, मेरे अजीज़ दोस्तों, फतह मक्का का मंज़र याद कीजिए। वो लोग जिन्होंने आपको सताया था, जिन्होंने आपके सहाबा को तकलीफ़ें दी, जिन्होंने मुसलमानों को मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, जिन्होंने आपसे जंगें की, आज वो सब आपके सामने मौजूद थे। अगर आप चाहते तो उनसे बदला ले सकते थे, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया, अलयौमा यौमुल मरहमा, आज सब के लिए माफ़ी है, सबकी गलतियाँ माफ़ की जाती हैं, जिसने सताया, जिसने जुल्म किया, सबको माफ़ किया जा रहा है। ये अखलाक की इंतहा है। हम तो छोटी सी बात को नहीं भूलते। किसी ने 5 साल पहले हमारे दिल आज़ारी की, आज भी हमें याद है। किसी ने हमारे ख़िलाफ़ बात कर दी, हम कहते हैं मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। मेरे भाई, ज़रा सीरत मुस्तफ़ा को देखिए। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं है, माफ़ करना अज़ीम दिल की अलामत है। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत का तकाज़ा आपके सामने पेश करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम सब कहते हैं या रसूलल्लाह हमें आपसे मोहब्बत है। यकीनन हर मुसलमान के दिल में हुजूर की मोहब्बत है और होनी भी चाहिए, लेकिन अपने दिल से एक सवाल करें, अगर हम वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं तो क्या हमारी ज़िंदगी आपकी सुन्नत के मुताबिक है या नहीं? हमारी ज़बान सच्ची है? हमारी नमाज दुरुस्त है? हमारी तिजारत पाकीज़ा है? हमारा बिज़नेस पाक है? हमारी कमाई हलाल है? हम अपने वालदेन की खिदमत करते हैं? हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखते हैं? हम गरीबों की मदद करते हैं? हम दूसरों को माफ़ करते हैं? हम गीबत, झूठ, चुगली से बचते हैं? हम अपने दिल को हसद और तकब्बुर से पाक करते हैं? अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने लगेंगे तो यकीन जानिए हमारी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ दावा नहीं रहेगी बल्कि अमल बन जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व ताला। मेरे दोस्तों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात

0: में और आसान जबान में कहूँ, परफेक्ट एग्जांपल फॉर बीइंग ह्यूमन। इंसान कामिल की सीरत और हमारी ज़िंदगी मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मुकम्मल नक्शा है। अगर आप एक अच्छे बेटे बनना चाहते हैं तो सीरत मुस्तफ़ा पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप अच्छे शौहर बनना चाहते हैं सीरत मुस्तफ़ा पढ़िए। अच्छे वालिद बनना चाहते हैं सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करें। अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं हुजूर की सीरत को पढ़ें। अच्छे हुक्मरान बनना चाहते हैं हुजूर की ज़िंदगी को अपने सामने रखें। अच्छे पड़ोसी बनना चाहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को का मुताला करें। अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करें, क्योंकि हमारे लिए बेहतरीन नमूना हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मोहतरम दोस्तों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए और इस दुनिया में आपकी आमद का मकसद यही है कि हम लोगों को सीधे रास्ते पर लाए, हम लोगों को गुमराही से निकाल कर, बुरे रास्ते से निकाल कर, बुराई से निकाल कर हमें अच्छे रास्ते पर लाए। अगर हम मोमिन होने के बाद भी अगर हम सीरत मुस्तफ़ा के बारे में नहीं जानते, अगर हम सीरत मुस्तफ़ा नहीं पढ़ते या हुजूर के बारे में नहीं जानते, तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या वाकई में हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं या नहीं। आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आइए आज हम सिर्फ नात पढ़कर, दुरूद पढ़कर, आंसू बहार कर वापस न जाएं, बल्कि एक अहद ले करके जाएं। वो अहद क्या हो कि हम झूठ छोड़ देंगे। वो अहद क्या है, हम नमाज की पाबंदी करेंगे, वालदेन की इज्जत करेंगे, हम हलाल कमाई अख्तियार करेंगे, गीबत से बचेंगे, हम ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, हम अपने घर वालों के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आएंगे, और सबसे बढ़कर हम अपनी ज़िंदगी को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बनाए, हमें आपके अखलाक को अपनाने वाला बनाए, हमारी ज़बान को सच्चाई अता फरमाए, हमारी आँखों को हया अता फरमाए, हमारे दिलों को रहम अता फरमाए, हमारे घरों में मोहब्बत अता फरमाए, और क़यामत के दिन हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बिजाह सैयदिल मुरसलीन की मोहम्मद से वफ़ा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, तूफ़ान नूह लाने से क्या फ़ायदा, चंद कतरे काफ़ी हैं अगर कुछ असर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
1: मौज़ सामेईन, अभी आप समात फरमा रहे थे एक बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा, और ये बयान आप समात फरमा रहे थे मौलाना मोहम्मद मुख्तार अशरफ़ी साहब की ज़ुबानी। आइए इसी के साथ समात फरमाइए चंद ऐलानात। दावत इस्लामी की जानिब से इज्तिमाए मीलाद का एहतमाम किया जा रहा है। बुध 19 अगस्त सुबह 10 बजे जुमा मस्जिद हॉल गुडलैंड में, फयाजुल मदरसा नोवेल दे कुवैत में, ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद मिलगोज़ में, बाबा जहांगीर शाह मस्जिद त्यागूज में, सुन्नी मस्जिद ग्लैन पॉक में, आलिमिया मस्जिद बोबुआ में, अहमद कबीर मदरसा गुद्दे पॉम्पलेमोस पोर्ट लुइस में, फैज़ान स्वाबिहात आईदोगे पोर्ट लुइस में, सुन्नी मस्जिद फिनिक्स में, अबू बकर सिद्दीक मस्जिद वाले पीटो में, मस्जिद फातिमा अहले बैत मदरसा स्टैनले रोजल में, बुध 19 अगस्त सुबह 10 बजे इन तमाम मसाजिद में दावत इस्लामी की जानिब से इज्तिमाए मीलाद का एहतमाम किया जा रहा है। इसके अलावा बुध 19 अगस्त दिन के 1:30 बजे, जी हाँ दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर, हिमायतुल इस्लाम मस्जिद लावेनिया में, कादरिया इशात इस्लाम मदरसा गौं गितगित में, और सनीचर 22 अगस्त सुबह 10 बजे कादरी चिश्ती मस्जिद कौशापलों पाई में, और सनीचर 22 अगस्त दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर, मार्केट रोड सेंट्रल फ्लाक में, और

और बदुल इस्लाम मस्जिद कौलेव ये गोजिल में दावत इस्लामी की जानिब से इज्तिमाए मीलाद का अहतमाम किया जा रहा है।

मोहतरम सामेईन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। दुआए खैर की गुजारिश की गई है जावेद और ज़ाहरा के लिए। जावेद और ज़ाहरा के लिए बहुत सारी दुआएं भेजी गई हैं और दुआ है कि अल्लाह पाक दोनों की ज़िंदगी में बरकत, प्यार और रहम फरमाए और उनका साथ हमेशा यूं ही बना रहे। अल्लाह पाक उन दोनों को उम्रे की सआदत अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाबियां और जन्नतुल फिरदौस में भी एक दूसरे का साथ पाक परवरदिगार इन्हें अता फरमाए। इसके अलावा लागिकुओं से रशीदा आजिम हमें पैगाम भेज रही हैं। उनके शौहर मरहूम इद्रीस आजिम गुलाब विदेशी और लागिकुओं के तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं। इसके अलावा तमाम मरीज़ों और ख़ास तौर पर अपनी बहन रूक्यो जो कि बीमार हैं उनके लिए दुआए शिफा की गुजारिश कर रही हैं रशीदा आजिम। इसके अलावा लिस्कालिये से इंदाली बकेगाली रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर तमाम मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब की गुजारिश कर रहे हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसके अलावा वो तमाम बीमारों के लिए दुआए शिफा की गुजारिश कर रहे हैं और माह नूर माह रबीउल अव्वल के मौके पर दाली बके गाली इस कलाम की फरमाइश भी कर रहे हैं। आइए समाअत फरमाइए।

मौसे सामीन, इसी के साथ हमारी उर्दू नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे। हमारी मांगी हुई तमाम जायज़ दुआएं जो हमारे हक़ में बेहतर हों उन्हें कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह

కుర్చీని మార్చబెట్టి.

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 该回家。
1: 听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

的催人老，虽然情爱总是让人烦恼，虽然未来如何并不知道，现在说再见会不会太早。

चलिए श्रोताओं, और स्टूडियो की घड़ी में 2:30 बज रहे हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम आपकी मनपसंद रेडियो चैनल पे आपका ये रोज़ाना प्रोग्राम आपके नाम। तो चलिए, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गीत सभी सुनने वालों के नाम।

चलिए श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 19 की रहत पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा सा गीत इस समय हम शामिल कर रहे हैं। ये प्यारा सा गीत सुरेखा जी के लिए, दीपिना की रहने वाली साथ में है, काकोप की सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, राधा जी है पिछले वैसे सैपिया की रहने वाली, तो इन सभी लोगों के नाम ये प्यारा सा गीत हम चला रही है।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे समय हम चला रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गीतों का एक खूबसूरत सफ़र जिसे हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए, अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। ये अगला गीत हमारे साथ इस समय किश जी है, काकोबोन की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो उनके नाम पे ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। ये गीत जाने वाला है उनकी दो बेटियों के लिए, नेहा नितिशा है साथ में, उनके दामाद अरविंद, उनके पति हैं आनंद जी, त्रिवेणी जी हैं गुडलैंड्स की रहने वाले, समस्त मोहन परिवार के लिए उनके पति हैं अनिल जी, साथ में है गीता जी है पोफिया की रहने वाली, उनके पति है रोहित जी, आदित्य, अरव, जानवी, तनिश, साथ में उनकी बहन मीला न्यूकोव की रहने वाली। तो ये अगला गीत जो है आप सुन पाएंगे और ये

प्यारा सा नज़ाना जो है हम शामिल कर रहे हैं इन सभी लोगों के नाम। और ये कार्यक्रम जो है हम आपको इशारा कर दें कि ये कार्यक्रम जो है हम शाम के 4 बजे तक चलाने वाले हैं। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा गीत आपके नाम हम कर रहे हैं। फिल्म का नाम है, जी हाँ, फिल्म का नाम है पवित्र पापी। किशोर कुमार का गाया हुआ गीत है इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों के लिए।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आपकी पसंद कार्यक्रम को हम प्रसारित कर रहे हैं। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे और अगला गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, बहुत ही प्यारा सा नज़ाना है और ये गीत जो है फरमाइश करने वाली है आप है। जी हाँ, आप हैं हमारे साथ जुड़ी हुई है माँ गायत्री जी हैं वर्फांस की रहने वाली। ये गीत जाएगा उनके बेटे अजय के लिए। साथ में ये गीत माला सुमारू जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई है और उनके पति है सूर्यदेव जी। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में हमारे साथ इस समय, जी हाँ, इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है आप है नेहा जी। नेहा जी जो है काठमांडू की रहने वाली है। ये अगला गीत जाएगा समस्त सिवदारी परिवार है, उनके पति के लिए, उनके बच्चों के नाम, जो है बहुत ही प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है युवराज और ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है दिल का रिश्ता। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

0: butter.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2, Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार परी श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सब लोगों का स्वागत है। यूनिसेफ के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित और समृद्ध करने के लिए एक पुनरुद्धार योजना तैयार की गई है। इस परियोजना में स्थानीय हितधारकों, विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों को शामिल किया गया है। योजना के तहत एक इको पार्क बनाया जाएगा, जहां जैव विविधता के संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सुविधाएं और गतिविधियां उपलब्ध होंगी। इसके अलावा एक इको म्यूजियम भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें द्वीप की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता को उजागर किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यूनिसेफ की प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखना, साथ ही पर्यटकों को एक ऐसा समृद्ध अनुभव प्रदान करना है जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और सम्मानजनक हो। 26 वर्षीय एक युवती ने जीतू अस्पताल के लेबर वार्ड के कर्मचारियों पर कथित चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया है। युवती का दावा है कि प्रसव के दौरान एक दाई ने उसके बच्चे के सिर को पीछे ढकेला था। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हमारे सूत्र इन आरोपों को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार प्रसव के दौरान किए गए कुछ चिकित्सकीय कदम सामान्य प्रसव प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। इस मामले को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम हमारे अगले बुलेटिनों में ज्यादा विस्तार से आएंगे, जहां पर डॉक्टर नवजात शिशु की सेहत को लेकर खत

0: खतरों के बारे में भी बताएंगी। मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका के नए उच्चायुक्त अब अपने पद पर कार्यरत हो गए हैं। हेनरिच जवानी अप्रैल ने आज 18 अगस्त को राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल के समक्ष अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। ये मुलाकात शातो द्रेजवी में हुई। हेनरिच जवानी अप्रैल ने डॉक्टर क्लामालानी नेली मंजिनी का स्थान लिया है। अब वह मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के प्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए निशाना बनाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के तरीके को लेकर मेटा को अदालतों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मंगलवार से शुरू होने वाला एक नया जूरी ट्रायल कंपनी के कारोबार के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये मुकदमा 2023 में 30 अमरीकी राज्यों, जिनमें कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क भी शामिल हैं, द्वारा दायर किए गए एक मामले से जुड़ा है। इन राज्यों का आरोप है कि मेटा ने बच्चों की निजता से जुड़े कई संघीय और राज्य कानूनों का उल्लंघन किया है। राज्य सरकारें मेटा से $1 ट्रिलियन से अधिक की राशि मांग रही हैं। इसके साथ ही वे फेसबुक और इंस्टाग्राम में कई बदलाव की मांग कर रही हैं, जिनमें लाइक की संख्या दिखाना बंद करना और अनंत स्क्रॉल की सुविधा खत्म करना भी शामिल है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: More music in the mix. 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius. Radio Mauritius.
3: आपकी पसंद।
4: चलिए श्रोताओं, सपहर के 3:05 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। तो चलिए, आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करते हैं और हम आपको इशारा करें कि इस समय से लेकर शाम के 4 के बीच हम आपका साथ देने वाले हैं। तो आइए, जो है सेंट्रल एक्सिस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। जी हाँ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। ये सेंट्रल एक्सिस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। लातुकेंग के रहने वाले निवासों को, जिनमें है एवेन्यू लातुकेंग, ऑचोयम, एंड्रियानम, क्रोटन, एबिस्कुस, मार्गरेट, जास्मिन, अनुमन, फियोक्स, मुगे, जास्मिन, जिन्या, म्योजोटिस, पेनुचिया, क्रोटन, एबिस्कुस, बुगेनविले, केनेट नेल्सन, टेरासन और जेरानियम के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 20 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 से लेकर सपहर के 3 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्सिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल एक्सिस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम को इस समय से लेकर शाम के 4 तक चलाने वाले हैं। तो श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही प्यार के साथ आप निभा रहे हैं। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये अगला गीत जो है बहुत ही प्यारा सा गीत, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। ये अगला गीत जो है जाने वाला है आप, जी हाँ, आप हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अनिता जी है, आप बिचवेश सैपिया की रहने वाली हैं। आपके 3 हैं, काजल, शीतल, दीक्षा, और आपके दामाद है वितिश और आपके पति है बालदेव जी। आपके सभी परिवारों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा नजाना हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए, गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे इस समय हम प्रसारित कर रहे हैं एक से बढ़कर एक गीत आपकी फरमाइश पे, और हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ इस समय सरिता जी जो है बहुत ही प्यार के साथ निभा रही है, आप अध्यापिने की रहने वाली है, हमेशा हमारे साथ जुड़ती रहती है। तो चलिए आपके समस्त परिवारों के लिए और आपके दोस्तों के लिए जो है ये अगला गीत हम चला रही है।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं इब्राहिम जी, पोर्टविस के रहने वाले हैं। उनका ये मनपसंद गीत फिल्म अप्रैल फूल से लिया गया। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

तो चलिए बहुत ही बढ़िया सा गीत शोभा जी के लिए, पॉपुलर म्यूजिक के लिए रहने वाली ये गीत उनके खास दोस्त के लिए। मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, इसे आगे बढ़ाते हुए ये अगला गीत है जयेश गुलाम जी के लिए। ये गीत जाएगा उनकी भतीजी अनुषा और उमेश के नाम, जो फिलहाल जो है बंधन, शादी के बंधन में बन चुके हैं। आप लोग वालिता के रहने वाले हैं, तो चलिए इन लोगों के नाम जो है, ये प्यारा सा गीत फिल्म बरखा से लिया गया। ये

लिए हमारे साथ इस समय आफेज जी है, लावेनिया की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई है। आफेज जी की फरमाइश पे ये गीत जाएगा उनके दामाद के जन्मदिन पर। आपके दामाद है सलीम जी, उनके नाम ये अगला गीत। उनकी बेटी है रोजिता की तरफ से शुभकामनाएं। ये लोग सेबास्टोपोल के रहने वाले हैं। साथ में शुभकामनाएं जो है माँ फजीला की तरफ से, भाभी है फिरोज़ा, नज़िया परिवार है, और आप है आफेज जी लावेनिया की रहने वाले, आपकी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए एक प्यारा सा गीत इन दोनों के नाम हम करेंगे।

चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। श्रोताओं, बहुत ही प्यारा संगीत कल की आवाज़ फिल्म से लिया गया। फरमाइश करने वाली हैं विश्वानी दुबन जी, वाकवा की रहने वाली हैं आप। ये गीत है जाएगा आपकी सभी बहनों के लिए, इंदिरा शारदा आपकी सहेलियों हैं, नीला प्रतिभा, शोभा है, गीता गजाधर है, तो इन सभी लोगों के नाम ये प्यारा संगीत। नाम जोड़ेंगे मौराबिया की अनित्या है, करुणा है, अमृता, कविता, आपके सभी दोस्तों के लिए बहुत ही प्यारा संगीत हम चला रहे हैं इस कार्यक्रम में।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वाकवा की रहने वाली आप हैं सुदेवी जी। आपकी पसंद पे ये अगला गीत दीदी ललिता है त्रियोले की रहने वाली, कुशल परिवार है, दीदी सुदीता है, शोभा देविना, बिंदु माला, संगीता मलंगा की, अनुषा किरण, प्रतिमा सुधीर, सोहन सुहाना, रामरतन परिवार, कुआगू परिवार, गागुबा परिवार, जालू परिवार और सभी लोगों के नाम जो है ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप डेडिकेट कर रही है। साथ में है इस समय विद्या जी है यूनियन पार्क की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनका ये मन पसंद गीत जाएगा सुरेखा, वेदना, विमला, प्रीति, बबीता, उनकी चाची है कुमारी और उनकी बहन है सती। तो इन सभी लोगों के नाम जो है हम जोड़ रहे हैं अगले गाने पे, और बहुत ही प्यारा सा गीत समस्त बंधु परिवार के लिए जो कि त्रियोले के रहने वाले हैं हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा गीत जाने वाला है हमारे साथ माधुरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उनके नाम भी ये अगला गीत हम कर रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की अंतिम भेंट में ये बहुत ही प्यारा सा गीत है। जिन लोगों को लाइन नहीं मिली है, बहुत लोगों की शिकायत रहती है उनको लाइन नहीं मिलती है, तो चलिए गत हफ्ते जिन लोगों को लाइन नहीं मिली है, जिन लोगों का जन्मदिन रहे, उन लोगों के नाम जो एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और जो लियो साइन के लोग हैं उनके जन्मदिन पर ये खास गीत मेरी तरफ से, एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों की लंबी उम्र की कामना करती हूँ। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहे। तो चलिए, आपकी ज़िंदगी में हम खुशियाँ बाँट रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में रेडियो के माध्यम से हम आपके साथ हैं। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा नजाना, बहुत ही प्यार के साथ ये गीत मैं आप सभी लोगों के नाम कर रही हूँ, जिन लोगों का जन्मदिन जो है इस महीने में है, और गत हफ्ते जिन लोगों को लाइन नहीं मिली है, जिन लोगों को शिकायत है उनको लाइन नहीं मिलती है, और जो लेव साइन के लोग हैं उनके नाम जो है ये प्यारा सा गीत। तो चलिए, हमारे समय जो है जाने को है, वैसे एक और मुलाकात, वैसे हमारी मुलाकात हो रही है गुरुवार को सुबह के 6 बजे, सुबह का नजाना कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित होंगी। अभी के लिए हम कहेंगे आपको नमस्कार।

शाम के 5 बज चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते, वक्त बदल जाते हैं, लेकिन उनकी धुन और उनसे जुड़ी यादें दिल में वही रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत प्रोग्राम ऑन रेडियो मॉरिशस और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। जी हाँ, हर मंगलवार की तरह हम लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत प्लेलिस्ट। तो आज चलिए यादों के उस खूबसूरत सफ़र पर जहाँ हर सुर एक कहानी कहता है। सुनिए पुराने गानों की एक हसीन महफिल सिर्फ आपके लिए।

5:10 होने को है, जहां दोस्तों जब हेमंत कुमार साहब की गहरी सुकून भरी आवाज़ और लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ एक साथ गूंजती है

ये जो है ना सुनते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और दिल कुछ पल के लिए वही ठहर जाता है। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। अगला गाना सुनते हैं उजाला, जी हाँ, मन्ना डे साहब की आवाज़ में।

बजकर 18 मिनट हुए हैं दोस्तों। 1959 में रिलीज़ हुई फिल्म छोटी बहन एक खूबसूरत पारिवारिक कहानी थी, जिसमें भाई बहन के प्यार और रिश्तों की अहमियत को बहुत दिल से दिखाया गया। फिल्म में बर्राज, सहनी, नंदा और रहमान जैसे कलाकारों ने यादगार किरदार निभाए। इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन जी ने दिया था और इसका जो गीत है भैया मेरे राखे के बंधन को निभाना, और आज भी भाई बहन के प्यार की पहचान बना हुआ है। लेकिन अभी के लिए इसी फिल्म का एक और खूबसूरत गीत हम चलाएंगे मुकेश साहब की आवाज़ में।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा

0: परस्तार गिर गया हाथ से।
1: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
2: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

5:25 होने को है दोस्तों, हो गया है जहाँ 5:26 समय कितना जल्दी जल्दी जा रहा है, भाग रहा है, हमें पता ही नहीं। लेकिन जो गाने हैं, हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं इस समय। काफ़ी लोग किचन में हैं, खाना बना रहे हैं, या फिर काम से वापस घर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। तो बस ऐसे ऐसे गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के नाम, ताकि आप लोग रिलैक्स हो सके। श्रोता, अपलम जपलम, जी हाँ, गीत के बोल हैं और ये गाना आपने सुना होगा। एक ऐसा गीत है जिसमें मस्ती, शरारत और बचपन जैसी खुशियों की झलक मिलती है। फिल्म आज़ाद का ये गीत लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ में, उनकी आवाज़ में था एक, और रामचंद्र के संगीत ने इसमें और भी रंग भर दिए। आज भी उसकी धुन सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो चलिए सुनते हैं वही पुरानी खुशनुमा धुन, अपलम चपलम।

बजकर 35 मिनट हुए हैं दोस्तों। पहली की फिल्मों के गाने कुछ और ही बात रखते थे, सामाजिक संदेश, साधारण अल्फाज और दिल को छू लेने वाली लाइवली धुनें। उनमें जिंदगी की सच्चाई भी थी और अपनापन भी। शायद इसीलिए आज के कई गानों के बीच भी पुराने गीत दिल को ज़्यादा सुकून देते हैं। चलिए इसी दौर का एक और गाने सुनते हैं।

जहाँ श्रोता, 1953 की फिल्म पतिता आपने देखी होगी और ये फिल्म सामाजिक और भावनात्मक कहानी थी जिसमें नरगिस और देवानंद ने यादगार अभिनय किया। फिल्म ने समाज की सोच, इंसानी रिश्तों और ज़िंदगी की कठिनाइयों को बहुत संजीदगी से पेश किया। इसका जो संगीत है ना, शंकर जयकिशन जी ने दिया था और गाने आज भी उस दौर के सादगी और गहराई की याद दिलाते हैं। चलिए पतिता के इस खूबसूरत संगीत से जुड़ते हैं।

फिल्म का नाम है श्यामा और इसी फिल्म से लिया गया एक बहुत ही सुंदर सा गाना रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है और आज के पुराने गीतों की खूबसूरत महफिल यही समाप्त होता है। दोस्तों, कुछ गीत वक्त के साथ पुराने ज़रूर होते हैं लेकिन दिल से कभी दूर नहीं होते। इन्हीं मधुर यादों और सुरों के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए महफिल और कुछ और हसीन नगमों के साथ। उषा को दीजिए अनुमति, तब तक आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, संगीत के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घरे मिला लीजिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। मंगलवार 18 अगस्त 2026 के इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कई अहम फैसलों के साथ सदैक का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस की आर्थिक बदलाव की योजनाओं को सामने रखा। देश में ग्रीन डेटा सेंटर और डिजिटल एम्बेसी विलेज स्थापित करने का ऐलान। सदस्य देशों से मॉरिशस की रणनीतिक स्थिति का पूरा लाभ उठाने का भी आह्वान किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच में 6 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी। मामला वाली दिपैत में एक कारोबारी के घर हुई तलाशी और वहां मिली बड़ी रकम से जुड़ा है। FCC ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कार्रवाई में किसी तरह का करप्शन हुआ था या नहीं। यूनिसेफ की प्राकृतिक खूबसूरती को बचाने के लिए नई योजना तैयार। द्वीप पर इको पार्क और इको म्यूजियम बनाने की तैयारी। मकसद है प्रकृति की रक्षा के साथ पर्यटकों को यहां की जैव विविधता से और करीब जोड़ना। और अमेरिका में मेता के खिलाफ बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया की लत लगाने से जुड़ा बड़ा मुकदमा शुरू। 29 राज्यों का आरोप है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के कुछ फीचर्स युवाओं को लंबे समय तक इन मंचों पर बनाए रखने के लिए तैयार किए गए। मेता ने आरोपों को खारिज किया। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। डर्बन में सादिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस में जारी आर्थिक बदलाव की दिशा और भविष्य की योजनाओं को सामने रखा। उन्होंने देश में कैरियर न्यूट्रल ग्रीन डेटा सेंटर और डिजिटल एम्बेसी विलेज स्थापित करने की सरकार की योजना का भी ऐलान किया। ऐसी पहल जिनका लाभ पूरे इलाके को भी मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने सादिक के सदस्य देशों से मॉरिशस की रणनीतिक स्थिति का पूरा लाभ उठाने का भी आह्वान किया। अब्दुल बुला की गीता सुनाराइन।
2: कल दोपहर बाद डरबान में सादिक के राष्ट्र नेताओं और सरकार प्रमुखों के सामने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी चुनौतीपूर्ण स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने खास तौर पर मध्य पूर्व में जारी संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा अफ्रीका तक पहुंच के लिए मॉरिशस की रणनीतिक स्थिति पर भी बात की। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की। उनके अनुसार तकनीक के क्षेत्र में मॉरिशस की विभिन्न पहल से पूरे अफ्रीका को भी लाभ मिल सकता है।
3: Pleased to inform you that Mauritius is willing to set up a career neutral green data center.
2: मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मॉरिशस एक करियर न्यूट्रल ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रस्ताव है कि हम अपने अफ्रीकी साझेदारों के साथ मिलकर अफ्रीका में एक सोवरेन AI और रेजिलियंस कैंपस स्थापित करें। शुरुआत में इसमें सादिक के सदस्य देशों के डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन बाद में इस तरह की डिजिटल व्यवस्था को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप तक विस्तारित किया जा सकेगा। हम एक डिजिटल एम्बेसी विलेज की कल्पना कर रहे हैं, जहां अफ्रीकी देशों को अपना सुरक्षित और डिजिटल वातावरण मिल सके। ये वातावरण भौतिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन उन्हें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों का लाभ होगा। यही वो विरासत है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहते हैं। मॉरिशस की ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में संभावनाओं पर भी डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बात की। उन्होंने मॉरिशस में इस समय चल रहे आर्थिक बदलाव पर भी जोर दिया। मॉरिशस का प्रस्ताव है कि हमारा समुदाय मिलकर एक वैश्विक ब्लू बेल्ट पहल की दिशा में काम करे। ऐसी पहल से समुद्री संरक्षण को मजबूत करने, टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, ब्लू कार्बन परियोजनाओं को समर्थन देने, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान का विस्तार करने, समुद्री संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने और समुद्र के बेहतर एवं समन्वित प्रबंधन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मॉरिशस ने आर्थिक बदलाव के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। हमारे पिछले बजट में ऐसे सुधार पेश किए गए हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत और आधुनिक बनाना है, साथ ही ग्रीन और डिजिटल बदलाव को तेज करना और देश की प्रतिस्पर्धा की क्षमता को बढ़ाना भी इसका लक्ष्य है। अंत में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बैठक में मौजूद सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया। उनके अनुसार ये बैठक एक ज्यादा मजबूत, सक्षम और बेहतर तरीके से एकीकृत सड़क दक्षिणी अफ्रीकी समुदाय के निर्माण में योगदान देगी।

0: डर्बन में सादेक का 46वां शिखर सम्मेलन कई अहम फैसलों के साथ संपन्न हुआ। सदस्य देशों के बीच सहयोग और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने पर खास जोर रहा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सादेक यूनी वीजा समझौते को मंजूरी दी गई। कृषि व्यापार को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के लिए धन जुटाने पर भी सहमति बनी। साथ ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को लेकर सदस्य देशों ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। डर्बन आईसीसी में कल शाम समापन समारोह के दौरान सम्मेलन के फैसलों और निष्कर्षों की जानकारी दी गई। इलोसेफ की प्राकृतिक खूबसूरती को बचाने के लिए एक नई योजना तैयार की गई है। इसके तहत द्वीप पर इको पार्क और एक इको म्यूजियम बनाने की तैयारी है, जहां आने वाले लोग यहां के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और प्रकृति के बारे में जान सकेंगे। इस योजना में स्थानीय लोगों, विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी साथ लिया जाएगा। मकसद है द्वीप की खूबसूरती को बचाना और यहाँ आने वाले पर्यटकों को प्रकृति से और करीब से जोड़ना। माधवी जगन्नाथ, गीता नारायण।
1: थुडुडुस के नीले और साफ पानी से घिरा इलोसेफ हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस जगह की पहचान और लोकप्रियता के साथ साथ इसकी प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। इसी वजह से टापू का प्रबंधन करने वाले गिवेओ ग्रुप ने अपनी सहायक कंपनी लॉजिया दे ज़िल लिमिटेड के माध्यम से एक टिकाऊ पुनर्विकास योजना तैयार की है।
2: Et c'est à cause de sa raison-là qu'il nous vise à remettre un cadre, une organisation pour qui nous ayons une vision de préservation.
1: Rivéo ke Chief Operations Officer Grégory Coquet कहते हैं, इलोसेफ उसका समुद्र और पर्यावरण दबाव में है, इसलिए इसे पुनर्व्यवस्थित करना चाहिए जिससे इसका संरक्षण हो सके। हम 2027 के आरंभ में पहले कार्य शुरू करेंगे और इसके बाद अगले 10 सालों के दौरान कई चरणों में विकास कार्य जारी रखेंगे। पर्यावरण को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा सामाजिक पहलू भी हैं, जहां ऑपरेटरों को इलोसेफ के आसपास अपना काम जारी रखना पड़ेगा। इस योजना के पहले चरण में एक इको पार्क और एक इको म्यूजिक बनाया जाएगा। इनकी रूपरेखा टिकाऊ विकास की रणनीति पर सलाह देने वाली कंपनी डायनामिया ने तैयार की है। कंपनी के निदेशक Thierry Le Breton कहते हैं,
3: le travail d'un écopark, c'est précisément trouver qui manière nous capable retrouve cette symbiose, cette lien entre ban activité humaine et un endroit qui joli, mais quand nous pas dégrade li, les temps nous servili.
1: इकोपार्क में मानवीय गतिविधियों और एक सुंदर जगह के बीच संतुलन बनाए रखना है। इसका प्रयोग करके इसे बर्बाद नहीं करना है। इकोपार्क के प्रवेश में इको म्यूजियम स्थित रहेगा, जिसमें इस जगह में पाई जाने वाली सभी तरह की मछलियां और पौधे होंगे। मॉरिशियन वैज्ञानिक यहां अपना काम करने आएंगे, अपने खोज कार्य जारी रख सकेंगे। इस परियोजना में मैंग्रोव के नीचे स्थित दलदल वाले क्षेत्रों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। इलोसेफ में पाए जाने वाले मैंग्रोव बहुत ही समृद्ध हैं। ये सभी तरह के जीव जंतुओं की नर्सरी हैं। समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं, वे यहीं पैदा होते हैं, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। अंतिम उद्देश्य पर्यटन के विकास को इस तरह व्यवस्थित करना है कि इस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्र के इकोसिस्टम का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।
0: डॉक्टर जीतू अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के दौरान लापरवाही का आरोप है। 26 साल की एक महिला का कहना है कि डिलीवरी के समय लेबर वार्ड में एक मिडवाइफ ने उसके बच्चे के सिर को वापस ढकेल दिया। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हमारे सूत्रों का कहना है कि डिलीवरी के दौरान इस तरह के कुछ कदम सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकती है। आखिर सामान्य तौर पर डिलीवरी कैसे होती है और अगर जन्म के समय बच्चे की सेहत को लेकर कोई खतरा दिखाई दे तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस पर हम ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ी देर में वापस आएंगे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच में अब तक 6 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी। मामला मार्च 2024 में वाली दे प्रेत में एक कारोबारी के घर हुई तलाशी से जुड़ा है। इस मामले में 2 और पुलिसकर्मियों को कल गिरफ्तार किया गया। इसके साथ अगस्त की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार पुलिस अफसरों की संख्या 6 हो गई है। मामला तलाशी के दौरान मिली एक बड़ी रकम से जुड़ा है। एफसीसी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कार्रवाई में किसी तरह का करप्शन हुआ था या नहीं।

बाबा तुमंग की जमानत याचिका पर सुनवाई के दूसरे दिन आज बेल एंड रिमांड कोर्ट में बहस जारी रही। सुनवाई के दौरान सामने आया कि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन यानी FCC कारोबारी मामी बाबा तुमंग के खिलाफ जांच पूरी करने में 6 महीने से 1 साल तक का समय ले सकती है।

0: गई है। उसके बाद उन्होंने ये जानकारी दी है। बचाव पक्ष के वकील में कुशल लुबिन ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि उनके मुवक्किल 9 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्होंने मामी हवातुमांग के खिलाफ मामले में शामिल 2 शिकायतों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। जमानत के लिए दायर इस आवेदन पर सुनवाई बेल एंड रिमांड कोर्ट में जारी है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। पाई में बस का इंतज़ार यात्रियों के लिए रोज़ की परेशानी बनता जा रहा है, ख़ासकर लाइन 150 यानी कि रूट 150 को लेकर लोगों की शिकायतें बढ़ रही हैं। यात्रियों का कहना है कि बसें तय समय पर नहीं आती, कई बार लंबा इंतज़ार करना पड़ता है और रविवार को बसों की संख्या भी कम हो जाती है। ये समस्या कई साल से चली आ रही है और शिकायतों के बावजूद हालात नहीं बदले। और जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि डॉक्टर जीतू अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इस सिलसिले में ज़्यादा जानकारी अनावेल वुलबेयर रजनी बेकर दे रही हैं। सुनते हैं कि आखिर सामान्य तौर पर डिलीवरी कैसी होती है और अगर जन्म के समय बच्चे की सेहत को लेकर कोई खतरा दिखाई दे तो डॉक्टर क्या करते हैं।
1: लैंडमार्क्स पोर्ट लुइस में एक महिला ने जीतू अस्पताल में शिशु को जन्म देने के दौरान चिकित्सा लापरवाही के एक मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस महिला के मुताबिक पिछले 10 अगस्त को उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन शिशु को जन्म देते समय कुछ असामान्य बातें पेश आई। उन्होंने बताया कि जब शिशु का सर बाहर आने लग रहा था तब मिडवाइफ ने अपने हाथ से इसे फिर से अंदर की ओर ढकेला। जीतू अस्पताल के गायनेकोलॉजी कंसल्टेंट इंचार्ज डॉक्टर हिलमा भूमा ने कहा,
2: Beaucoup fois, si comme j'ai un patient, c'est pas son premier enfant, mais l'une des 15 enfants, nous connaît ce périnée, il est assez flexible. Et là, ce qui nous fait, nous bord ce périnée pour empêcher de déchirer. Et c'est là même qui nous bloque ce périnée et nous empêche, comme j'ai dit, trop stretch vers l'anus. Et si nous laissons, malheureusement, il est capable de déchirer l'anus et il est capable éventuellement causer un trauma.
1: कुछ मिनट बाद शिशु का जन्म हुआ, लेकिन कुछ गहन जांच करनी पड़ी। जीतू अस्पताल के ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर देवेन दौलत ने कहा,
3: un enfant qui naît tout le temps il y a un pédiatre qui est présent, right? C'est un pédiatre qui est entraîné comment pour faire la resuscitation d'un enfant qui est pas bien. Il examine lui et que là il peut décider s'il y a un problème, il prend un enfant là, il amène ça dans l'unité néonatale intensive, c'est-à-dire le NICU. Et que si je trouvais qu'il y a un problème au niveau saturation ou au niveau quelque part, et là je prends un enfant là, il y a admis dedans tout l'unité intensive néonatale.
1: इस मामले में मां ने अस्पताल के ड्यूटी मैनेजर के यहां शिकायत दर्ज की। अस्पताल में अंदरूनी जांच शुरू की गई है, जबकि इसके साथ साथ संदिग्ध चिकित्सा लापरवाही के लिए एक पुलिस जांच की जा रही है।
0: मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका के राजनयिक संबंधों में एक नया अध्याय। दक्षिण अफ्रीका के नए उच्चायुक्त हेनरिच जुवानी एप्रिल ने आज राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल को अपना परिचय पत्र सौंपा। स्टेट हाउस में हुई इस मुलाकात के साथ उन्होंने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं हम श्रावण मास के बारे में। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और आत्मिक शांति से जुड़ा एक पवित्र समय है। हर वर्ष की तरह इस बार भी गंगा तालाब में आस्था का यही गहरा भाव दिखाई दे रहा है। विशेषकर हर सोमवार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। पवित्र तालाब के किनारे गूंजते हर हर महादेव और भोलेनाथ की जयकार मानो मन को भक्ति से जोड़ रहे हो। अदिति अवतार।
4: गंगा तालाब हिंदुओं के लिए मात्र पूजा का स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, आस्था और एकाग्रता का एक केंद्र है। इस श्रावण मास के दौरान विशेष रूप से हर सोमवार को मंगल महादेव के चरणों में उपस्थित होकर हर व्यक्ति अपने तरीके से उनके प्रति भक्ति अभिव्यक्त कर रहा है। श्रावण मास की पूजा का आयोजन ही मॉरिशनों के बीच शिव भक्ति को एक अलग ही आयाम देने के उद्देश्य से पिछले 2019 से शुरू हुआ था।
5: नौजवानों के साथ मिल करके 2019 से लगातार हर साल हम यहाँ पर गंगा तालाब में श्रावण मास की पूजा करते हैं, श्रावण सोमवार की अभिषेक करते हैं और

0: श्रावण मास के अंतिम वीकेंड में हम यहाँ पर 3 दिन का भव्य पूजा करते हैं। हर 6 घंटे में अभिषेक होता है और रुद्र महायज्ञ से पूर्णाहुति होती है। साल दर साल 2019 से साल दर साल भक्तों की तादाद बढ़ता जा रहा है और जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान शंकर के दरबार में भक्तों का इतना भव्य मेला लगा हुआ है।
1: कहा जाता है कि भगवान शिव को पूजने का कोई विशेष माध्यम नहीं होता। वे भोलेनाथ इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि उनकी भक्ति करने वाला शांत और स्वच्छ मन से ही उनसे जुड़ सकता है।
2: Avec gain ça Shivratri vibes là, donc nous pas besoin d'attendre uniquement février, mars pour nous gain ça vibes là. Surtout, comme on nous dit, nous besoin d'abhakti. Donc pour moi, Shiva déjà lui donne moi un peace of mind.
3: Shiv ji ko adi yogi mana jata hai. Aur kehte hain ki yog वो है वो जो मन की शांत हम चाहते हैं वो आदि योगी जो हम पूजा करते हैं इसके द्वारा होते हैं। योग क्या है? योग वो बोलते हैं जो मेडिटेशंस जो मन की शांति हमें चाहिए होता है वो शिव जी की पूजा करने से ही होता है, शिव जी की साधना करने में ही होता है।
4: प्रिय शक्ति पुनुगै ला फोर्स प्रिय शिवा पुनुगै ट्रैंक्विलिटी
5: जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबे लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम डमड्डम डमड्डम निनाद वड्ड मरवे चकार चंड तांडवम तनोतन शिव शिवम। महादेव हमारे कण कण में व्याप्त हैं, एक धागे में दिखते हैं महादेव, हर कण में हैं, हर क्षण में हमारे मन में, हमारे तन मन धन में है।
1: मर्शनों के बीच एक भाव हमेशा उजागर रहता है। कई लोग मानव सेवा को ही माधव सेवा मानते हैं। गंगा तालाब पर बहुत लोग प्रसाद और भोजन की व्यवस्था करके सेवा भाव प्रदर्शित करते हैं। संगीत को आस्था और भक्ति की अभिव्यक्ति का एक और माध्यम माना गया है। ढोलक गिटार मंजीरा लिए शिव भक्त अपने भगवान के नाम का गुणगान करते देखे जाते हैं। श्रावण मास के दौरान श्रद्धा और संगीत का यह अनूठा संगम गंगा तालाब पर न केवल शिव भक्ति अभिव्यक्त कर रहा है बल्कि सेवा, सामुदायिक एकता और युवा सहभागिता की भावना को भी मजबूत कर रहा है।
6: जैसे सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि अमेरिका में मेहता के खिलाफ बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया की लत लगाने से जुड़ा एक बड़ा मुकदमा आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। 29 अमरीकी राज्यों का आरोप है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में ऐसे फीचर्स जानबूझकर बनाए गए जो युवाओं को लंबे समय तक इन मंचों पर बनाए रखते हैं और उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। मुकदमे में मेहता के सीईओ मार्क जुकरबर्ग समेत कई बड़े अधिकारियों की गवाही होने की उम्मीद है। आरोप साबित होने पर मेहता को भारी जुर्माने के साथ अपने मंचों को बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। हालांकि मेहता ने सभी आरोपों को खारिज किया है। इस पर तथा दुनिया भर की अन्य खबरों को सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
7: ऊंचे पहाड़, प्राकृतिक सुंदरता और इन सब के बीच आस्था की ओर बढ़ते श्रद्धालुओं के कदम, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं जहां श्रद्धालु बाबा बुद्धा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पुंछ जिले के मंडी इलाके में स्थित बाबा अमरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहां भगवान शिव के दर्शन प्राकृतिक रूप से बने सफेद पत्थर के शिवलिंग के रूप में किए जाते हैं। इसी पवित्र स्वरूप के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। पहाड़ी रास्तों से गुजरते श्रद्धालु हाथों में धार्मिक ध्वज और वातावरण में गूंजते भगवान शिव के जयकारे, यात्रा के दौरान भक्ति का एक अलग ही वातावरण देखने को मिलता है। कई श्रद्धालुओं के लिए यहां पहुंचना केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। रक्षाबंधन करीब है और हैदराबाद के बाजार राखियों से सज चुके हैं। रंग इतने, डिजाइन इतने कि पसंद करना भी मुश्किल हो जाए। कहीं पारंपरिक कुंदन राखी, कहीं चमकदार आधुनिक डिजाइन, तो बच्चों के लिए बार्बी वाली राखियां भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। हैदराबाद की यादव राखी दुकान वर्षों से इस बदलते सफर की गवाह रही है। एक दौर था जब राखी महज 10 पैसे में मिल जाती थी और आज यहाँ कुछ खास

0: कुर्सियों की कीमत 1,000 रुपए तक पहुंचती है। समय के साथ कीमत बदले, डिजाइन बदले, पसंद भी बदली, लेकिन कलाई पर बांधा जाने वाला ये छोटा सा धागा आज भी भाई बहन के संबंध की वही पुरानी कहानी कहता है। केरला इन दिनों ओनम के रंग से रंग चुका है। यूनिवर्सिटी कैंपस में युवाओं ने इस पारंपरिक पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया। पारंपरिक परिधान, संगीत और साथ मिलकर त्योहार मनाने की खुशी। ओनम केरला की संस्कृति और पहचान से गहराई से जुड़ा पर्व है और कैंपस की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि परंपराएं केवल विरासत में नहीं मिलती, नई पीढ़ी उन्हें अपने अंदाज में जीती भी है और आगे भी बढ़ाती है।
1: बढ़ते हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर रजनी बेकर के साथ।
2: मस्कारेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एक एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर नम और अस्थिर हवाएं चल रही है जो हमारे स्थानीय मौसम को रह रहकर प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होती रहेगी। टापू के आधे पूर्वी हिस्से में सामान्य से तेज बारिश होगी और सेंट्रल प्लाटो पर भी ऐसा होगा। कुछ इलाकों पर कोहरे छाए रहेंगे। कल आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे। टापू के आधे पूर्वी हिस्से में बादल घिरे रहेंगे और सेंट्रल प्लाटो पर भी थोड़ी वर्षा होगी। पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। बारिश होती रहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह से इसमें सुधार आने लगेगा। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 16 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 21 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 26 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:57 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:29 पर सूर्योदय।

0: तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी फैजन हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे सभी न्यूज़ बुलेटिन MBC प्ले, MBC नाउ और हमारी वेबसाइट mbc.mu पर भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, आप सभी को नमस्कार। अभी हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on MBC Play, MBC Play, MBCRadio.tv, MBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। महात्मा गांधी रोड त्वा बुचिक त्रियोली में, महात्मा गांधी रोड त्वा बुचिक त्रियोली में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री शरदानंद पावदौ, जिन्हें शरदानंद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनके घर त्वा बुचिक त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस के शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो 1:30 PM। लाल बहादुर शास्त्री रोड सेंट जूलियन दुतमों में, लाल बहादुर शास्त्री रोड सेंट जूलियन दुतमों में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री राजगनलाल सिबन, जिन्हें वकील के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके पिता प्रेमचंद सिबन के घर सेंट जूलियन दुतमों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदेमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो 11 AM। अवेन्यू ला पेरूज बेलरोज में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री बिजमोहन सिरतन, जिन्हें क्रिसुन सिरतन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर ला पेरूज बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेतु क्रिमेशन ग्राउंड ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1 PM। रायर रोड मोतायोगी में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती कन्या, पैदाश नाम उजायब और जिन्हें वीना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे नवीन नंद कुमार कन्या के घर मोतायोगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोंसा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 9:30 AM।

0: कास्केट पाल्मा काट्रबोन में रुत कास्केट पाल्मा काट्रबोन में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मीराबाई रागू श्रीमती मीराबाई रागू पैदाशम कहानू और जिन्हें शांति के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके पति श्री आनंद रागू के घर पाल्मा काट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। पियर सिमोनेट स्ट्रीट फ्लोरियाल में 78 साल की श्रीमती कमलावती संजावन पैदाशराम ठाकुर और जिन्हें कमला के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगागा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वधान में बुधवार 19 अगस्त 2026 की शाम 5:45 बजे प्रशांत वैदिक मंदिर शाखा नंबर 10 द्वारा लेस्पेगांस काचे मिलिटेर के प्रशांत वैदिक मंदिर में यज्ञ और प्रवचन का आयोजन किया गया है।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति, रोजिल और आसपास के रहने वालों को एवेन्यू बेटू, एवेन्यू कोडुगोद, स्टैनले, एवेन्यू सैतान, एवेन्यू एमिल लावाल, एवेन्यू क्रेटिन और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 19 अगस्त 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे से लेकर मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना सूचित किए बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी। इस असुविधा के लिए सीईबी क्षमा प्रार्थी हैं।

汲取动感过后，回望往事，多少往事化作一场旧梦，请欣赏旧梦。

से जुड़े हुए हैं, जहां आप भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, श्रावण मास अथवा सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्षा का पांचवा महीना पड़ता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत वर्षा होती है। भक्तों, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रावण माह से जुड़े कुछ पौराणिक कथाओं का उल्लेख करेंगे, किंतु आइए एक भजन के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

कर। भक्तगण, पहली कथा इस प्रकार है कि देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था। उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव जी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया।

प्रियजन, भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है।

भक्तजन, पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विष पान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया, इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले बाबा को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम उत्तम फल प्राप्त होता है।

श्रोताओं, यह भी कहा जाता है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह चार महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान

देवता भगवान शिव बन जाते हैं। तो श्रोताओं, इन्हीं विचारों के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होने चला है। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सामईन कराम, रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है। ये महीना फजीलतों, सादतों, रहमतों और रब कदीर की नेमतों का मजमुआ है। हम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने को माह मीलाद भी कहते हैं, क्योंकि वो ज़ात पाक जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, जिनकी खातिर पूरी कायनात को सजाया गया, वो अजमतों वाले नबी खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी माह मुबारक में इस दुनिया में जलवागर हुए। इस महीने को तमाम फजीलतें, सादतें और बरकतें सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सदक़े नसीब हुईं।

मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सामईन गरामी, इसी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी आज की महफिल शब नशरियात अख्तताम पजीर होती है। महफिल तो ख़त्म हो रही है मगर दिल अब भी ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहर में डूबा हुआ है। बस यही इल्तिजा है कि ऐ परवरदिगार आलम हमारे दिलों को भर दे इश्क मुस्तफ़ा से, हमारी ज़बान को मुअत्तर कर दे ज़िक्र मुस्तफ़ा से, हमारी ज़िंदगियों को रोशन कर दे सीरत मुस्तफ़ा से, हमारी सांसों को महका दे नाते मुस्तफ़ा से, और हमारी आखिरी कामयाबी हो दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इन दुआओं के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, शब बख़ैर।

0: संगत्या घरी मिलालाय बघत रात की ठीक 9 बजल बात तू सुनतो रेडिओ मॉरिशस रेडिओ मनोरंजन
1: कंटीन्यूअस म्यूजिक
2: ऑन द आवर एवरी आवर

0: Radio Marches.
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा

सब संगतियालों के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल MBC रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन FM मोड पर और रेडियो मॉरिशस AM मोड पर 94.96 और 98.2 मेगाहर्ट्ज़ FM रेडियो मनोरंजन और 819 किलोहर्ट्ज़ AM2 रेडियो मॉरिशस AM बैंड पर। सब संगत आलोक में स्वागत करते हैं जहाँ भोजपुरी तरह का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बजे ले और हमके लाइव प्रसारण चलाता है। हमने की टिकटॉक पेज रेडियो मॉरिशस की टिकटॉक पेज पर भी चला था अभी से रात के 11 बजे ले। और आज मंगल की रात मंगल 18 अगस्त साल 2024। हाँ तो बड़ी ठंडा का रहता है, ठंडा ठंडा के मौसम बा, खूब पानी बरसल कल रात के, फजर के भी खूबे पानी बरसल, पानी चैला अच्छा बा, पानी बरसी हमने की जलाशय में पानी आए और हमने के पानी की कोनो प्रॉब्लम नहीं हुई। पर अभी स्थिति चिंताजनक बा, सिद्धू ब्रविया मांग कर रहा था श्रोता लोग से कि जनता से मांग बा कि पानी ज़ाया नहीं करे, कि कह के पानी के स्तर घटले जाता और पानी हम के सब समाप्त हो जाता जलाशय में, कह के जितना पानी चाहे बरस के उतना नहीं बरसल बा। भोजपुरी तरह का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बजे मन करता है कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो हम टिकटॉक पेज पर सकबा, SMS करे रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर, साथ में सकबा हमकी टेलीफोन करे का जगो दे विद जगो विद सैंक पर, का जगो दे विद जगो विद सैंक पर। चलो शुरू करे जा ई भोजपुरी प्रोग्राम की सुबह रामचंद फकीर की आवाज़ में बुलतवन दुल्हन के दादी। अब दुल्हन की दादी कौन कांड कर लग बा, चलो एक साथ सुने।

संगत्या लोग, दुनिया में सबसे बड़ा पूजा है सेवा। अपन से बड़ा और अपन से छोटा के हमेशा सेवा करिए, और कोनो भूखा के खाना दे दिया, कोनो प्यासा के पानी पिला दिया, कोनो बीमार व्यक्ति के दवा दे दिया, एक बोलाला मानव सेवा। जब तू सेवा करबा तब भगवान थोड़ा आशीर्वाद दे, भगवान के कृपा तौर पर हमेशा बना रही। सबसे बड़ा पूजा हमेशा याद करिया, वह एक दूसरे की सेवा करला। रात के 9:09, बहुत बहुत धन्यवाद होने के साथ हुआ था यस रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर, और भोजपुरी चर का प्रोग्राम रात के 11 बजे रही। अगला गीत जोड़ी चौकरी से प्यार करी रहा, और गीतों चलाते ईसा आकाश आतिश खतीर मोहम्मद इकबाल सबरीना नौशीन शोभा दिनेश हरी रवि दिनू विश्वानी रामपू रुकिया सुब्राती देवीना व्यास बमा और रोहन खतीर। तो चलो प्यार से गीतों थोड़ा सुनाओ जा कुणाल हीराल की आवाज़ में, और जितना कोई के मन करता हमने के बेशक ही प्रोग्राम में गीत मांगे के तकबर टेलीफोन करे का जवाब दे भी कोविड साए क्या हमने के रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर मिसाज भेजा। ऑलराइट चलो गीत सुने जोड़ी चोकरी से प्यार करी रहा।

और हमनी चल के साथ देवत है इस रेडियो पर एमबीसी रेडियो के दूगो चैनल पर साथ में टिकटॉक पेज पर हमी के साथ देवत हुआ। और संगतिया लोग हम तरफ से मांग करब कि ढेर जेपी मसाला और पीमा ढेर नहीं खैया, एक से पेट खराब हो जाला और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया, दूध में या पानी पीवा अच्छा बा सुफ मौत दूर करे रहता है। जोन जेपी सा इस जिस चारा खाए के अब दकारी में ढेर जेपी मसाला पीमा पड़ जाए तो पेट गड़बड़ा जाए भैया। रात की 9:14 और अगला गीत हम चलाओ सही सब संगतिया लोग खातिर जन्म के साथ देव तो वन जलेबी कोमल आराध्या दीजे दया। हाय दया भाई कैसे बा मुकेश बीरज बुकन मानी प्रिया दया हिरीश नारायण हमने के बेस्ट फ्रेंड हमने के साथ देव तो वन अक्षय कौतिक सुबिता जया मुनि शिवनिया कनाई देव देवन नादीवाला देवन नादीवाला फिजी से हमने के देखा था वन और सुना था वन टिकटॉक पेज पर। हाय टीना रीता अमृता रवि बंगारू मरियम शीता इंद्रानी बिहारी रहेलन कौच मिलते अगला गीत तो लोग खातिर बहुत ही प्यारा सन गाना चलाओ तीस केने केने खोजब को तोरी सूरती आप केने केने खोजब भैया चल अब हमने के साथ रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर नाचब स गाओब स कमरवा डुलाओब स रात के 11 बजे सक बजा टेलीफोन करे काज जगह दे विद जगह विद सक पर या एसएमएस करिए हमने के रेडियो मोशन के टिकटॉक पेज पर चला केने केने खोजब स हमने की कोको के कहाँ गड़मर कोको गे चलो के खोजला केने केने खोजब कोको

संगत्या लोग हिंदी में गो कहावत बा जैसा अन वैसा मन और अंग्रेजी में गो कहावत बा आई एम व्हाट आई ईट ये खातिर ढेर कोई तामसिक भोजन नहीं करे नंस और लोग कुछ सात्विक भोजन करे के जैसे कि सब्जी और फल और ढेर कोई प्याज लहसुन भी नहीं खा रहा ढेर को जो पूजा पाठ कर का बोले नंस कि है जो प्याज और लहसुन बा एक में तामस और जो तामस है ये एक्सीटे करे आदमी के गुस्सा दिलावेला फोवो के कर रहा था ढेर कोई लहसुन और प्याज नहीं खा रहा था तो सबको कि अपन अपन चॉइस हम मना नहीं करते इस पर जो लहसुन और प्याज है एक तामसिक भोजन बोलल जला और आजकल तो पूजा पाठ होता तो सब कोई जो है शाकाहारी भोजन करता सात्विक भोजन करता और बोलल जला कि जो सात्विक भोजन है स्वास्थ्य खातिर बहुत अच्छा और एगो सर्वे हो रहा अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में वहाँ बोलल गल रहा एगो 2000 लोगन पर है सर्वे हो रहा कि जितना लोग वेजिटेरियन हुआ से मतलब जो शाकाहारी हुआ से सब्जी दाल सब्जी रोटी फल खालन से वो लोग के स्वास्थ्य जस्ती अच्छा रहेगा और उनकी लंबी आयु भी हो रहा है ये एगो सर्वे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हो रहा फिकवा और अभी रात के 9:20 हुआ था संगे संगे चली रहा अगला गीत है किशोर की मियाँ गीत हुआ गेरे वन और है गीत चला था बहुत बहुत प्यार के साथ उमिला जोधा खातिर दिया हेमराज विक्रम बीमाना विलियम जगू हाय विलियम जगू जी आप मौर्या कनाडा से बहुत बहुत प्यार से हमने सुना था और देखा था बहुत धन्यवाद भाई जी गुनु फरीदा हेलो बोलते ने जिन आई एन एम बी सी विजिट करे आइए जा जरूर स्वीटी माधवी शिवलाल मिशन क्रॉस ऑफ दालमाटी के रविराज बिचुक हमने के साथ देव थो नौकर पत्नी स्वयं प्रभा ब्रता प्रत्यक्ष और सब बिचुक परिवार मिशन क्रॉस रोड लाल माटी से और है गीत हमने चलाओ जागला गीत संगे संगे चली जा है गीत चली अनिता लाल जी खाते जो बहुत प्यार से हमने के देखा तवन और सुना तवन हे माँ धनु हेलो नमस्ते सबके स्वागत बा और बेशक आरोप के साथ देव थवन और चलो एक साथ सुने गीत संगे संगे चली जा और जब कोई साथ मिल जला जिंदगी में तो

इसे रेडियो पर और जितना कोई हमने के सुना था बहुत बहुत शुक्रिया हमने के साथ देखा देर गमटवा होते बा भैया अब सुनब जागला गाना ललना रागिनी सवारत लीलो माथुर सुकन की गवल गीत ललना था देखा घर में चिबाबू होलबा बहुत बहुत बधाई जब को बाबू आवेला घर में तो कितना खुशी छा जा रहा हो कि नहीं और बोल जला संगठिया लोग के इंसान के कबो कोनो चीज़ बस नहीं होलबा और इंसान के जितना मिलेला ओके बसवे नहीं होला ये इंसान के स्वभाव है अब मान ला थोड़ा गो लोथरी मिल गल तब लोथरी मिल गल तब बोल बहंगे गो बड़ा घर चेहला बड़ा घर जो देखो गाड़ी चेहला नौकर चाकर चेहला और इंसान के जो है ओके कबो कोनो चीज़ बस नहीं होला भगवानों के देते जाला पर इंसान के बसवे नहीं होला तो ये स्वभाव है इंसान के मनुष्य के स्वभाव है कि जितना ओके देबा ओके कुछ बसवे नहीं होला और हमने यहाँ पर इसे तरह के साथ देखा थे ऋद्वेश दत्तु हमने के साथ देवा तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया मिस्टर संजू कैसे बा उमिला जोधा फिर भी हमने के साथ देवा तो ऋद्वेश रोजिदा चोचू सुमन जलसा ग्रुप और प्रिया बाचू नमस्ते और हे गे चली रफाकत परदेसी खातिर शारदा जी कैसे बा समाचार राफिक मोहित तयाक सेवन राफिक मोहित कैसे बा भायाबू वाकवा से कैसे भैया भायाबू वाकवा से अगर घरोली का सब परिवार घिनाम राफिक मोहित अवन तयाक से और जैनब हवन फेनिक्स से रोजिदा हाईलैंड से और रेहाना हसन अली हवन फेनिक्स से बैन साइदा को कैसा जियाद और जरीला खातिर सब हसन अली परिवार के नाम और रेहाना जी जो फेनिक्स से उनके साथ देवतवन वो बढ़िया बढ़िया मुस्कुरा होते हैं बोले तो प्रताप जी प्रोग्राम तो एकदम बढ़िया बा एगो प्यारा सन गाना हो जाए सब हासिल अली परिवार के नाम ज्योति रोबिन हवन शामुनी से हाय ज्योति नमस्ते ये अगला गीत तोहरो नाम अविला हमने के साथ देवतवन हर गीत तोहरो नाम ललना चल एक साथ सुने ललना

रात के 9:40 हुआ था। भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी चला था रात के 11 बजे ले। और बेशक संगठन लोग ढेर कोई काम बस नहीं करेला, खाली इधर ढेर कोई कोनो काम नहीं करा, खाई इधर उधर के बात करे रन सर, तो तू इधर उधर की बात पर ध्यान नहीं दिया, तू अपन काम से मतलब रखिया, अपन काम करिया, मेहनत करिया, अपन परिवार के देखभाल करिया, हाई इधर उधर के पलाब नहीं सुनिया। वो क्या बोला कि वो कौन सी बोल दिला कि ऐसे नहीं चाहत बोले कि ये सब बात पर ध्यान देब तो तू जिए नहीं सकब। दुनिया ही इसे भैया अच्छा भी करब तो आदमिया तोहर बार बताए, बुरा भी करब तो आदमिया तोहर बार बताए। आदमिया के बेचारा काम बस नहीं बा, पर जो आदमी के काम रहेला तो हमेशा व्यस्त रहेला, बिजी रहेला, ओके लेता वही नहीं मिलेगा कोई पर पलाब करेगी हाँ कि नहीं। और अगला गाना जो है बहुत ही प्यारा सन गाना है, कहाँ छुपी रानी मोरे, किशोर कुमार रमेश सर गीतवा गईले हवन, बहुत ही प्यारा सन गीत। और है गीत हम चाची सर चाची ललिता कुशल के नाम, चाची ललिता कुशल त्रियोले से हवन गीत तोहर खाती तो सब परिवार के नाम, अमृता गणेश पीतों से, संजय हरिचंद पीतों से, कर पत्नी और बेटी अविष्का और सब हरिचंद परिवार के नाम, कुणाल हिरीलाल गीत तोहर खाती तोहर पत्नी तोहर लड़का और सब हीरीलाल परिवार के नाम, कहाँ छुपी रानी मोरी। चले एक साथ सुनेंगे तो

दुनिया भर में महंगाई बढ़ ले जाता, वो चाहे यूरोप हो चाहे एशिया हो या सगरो कनाडा इटली चारों ओर महंगाई बढ़ ले जाता कहे कि महंगाई की जमाना बा और महंगाई से कोनो भी देश नहीं बचल बा। तो दीपोंस जब करबत जिस चेहरा दीपोंस करे के एक सा भागों चीज नहीं चेहरा किने की अगर जा तो आकाशों किने ते को लालिस बना दिया हो लालिसों के अनुसार तू सब किने कहूँ जाता हो कोना मगाजन शॉपिंग करे तो लालिसों में लिख दिया कौन ची किने के बा ऐसे पुनर्ये के नेपो नेपो चीज़ नहीं

किनबा और जरूरी चीज खाए पिए के चीज चेहरा किने के लुगापटा ते सब किनी ना सर और गो जब लुगा पुराना हो जरा फट जरा तब कि चेहरा गो नवा लुगा किन के पहने की तो स्वाभाविक बात है। पर अभी जैसे महंगाई की जमाना बा और अगर कहूँ जाते हो तो एक एक ठोसों में सब बाजार गए लेगिम ले गेला फार्मासी दवाई ले या शॉपिंग कर ले तो एक एक ठोसों में तीन गो काम हो जाए तोहरा तोहरे बजट हो जाए चीज़ की हाँ कि नहीं। तो महंगाई की जमाना बा भैया और थोड़ा सुन पैसा बचा के रखिए पूरा समय खातिर कहे कि सब पैसा डिपॉजिट कर दे तो कभी कभी जेब में एगो फुटल कौड़ी भी नहीं रहेगा हाँ कि नहीं। तो मान लीजिए 10 रुपया कमाओ तो एक महीना में तो 5 रुपया इस्तेमाल करिए 5 रुपया कोना में एगो बात कौन दाने में रख दिया हो पैसा तोरे क्या में आ बात कौन दाने तोरा याद आ कौन चीज आगे के ज़माना में हमने के बारात में लोग बात कौन दाने रखा था लोकर में पैसा डाल दी था कबो 10 रुपी कबो 15 रुपी कबो 100 रुपी कबो 1000 रुपी तो ये सब पैसा जब दिलबा बहुत कौदाना में तब पैसा जब एक बरिस हो जाए तब बहुत कौदाना खुलबा तब दिलबा कितना पैसा रमसले हुआ। अगला गीत महंगाई कमला गणेश की तो गई हुआ नए गीत चला हुआ था ललिता चरण के नाम है गीत और खातिर नाज है गीत और नाम संध्या राम सवर अनुभावेश है गीत और नाम अनिता लाल जी और सुभाष कतवर है गीत और नाम मधु लंगरा है गीत और नाम एल्विस सिब्रुना पूनम कविता बिप्ता जवान खान प्रिया गीता अमृता गोकुल अनुभवेश चांद रानी क्वीन कनिष्का बहिमुजीर निर्मा है गीत और नाम चल एक साथ सुने गीत तो महंगाई कमला गणेश की आवाज़ में है गीत सुनम जा और गीतवा के बोल पर ध्यान दिए देखिए गीतवा में क्या बोला था।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marches.
2: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर कमर धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर
0: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
3: रात्रि के 10 बजे तक तूसा तो भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉर्चस पर MBC के दिनों रेडियो चैनल पर और ये प्रोग्राम चली रात के 11 बजे ले और अभी और एक घंटा बा अगला गीत नमस्ते नमस्ते नमस्ते मुकेश चेदी की तो अगले वन और एक गीत ललिता चरण खतिर चरावत ईसा और साथ में नाज खतिर अनिता लाल जी गीत थोड़ो नाम बबीता बुला के गीत थोड़ो खातिर आतिश भाई बहुत खुशी वन रात के बखत हम की सुनत वन चंदन खवस सपना धनु गीत थोरो नाम इंदिरा नमस्ते विजय चौधरी रॉबर्ट भैया है गीत थोर खातिर राम सुरेश गीत थोरो नाम वंडल रॉबर्ट की ओर से कर जाने मन माया के नाम आप रहे आविन हो बैत्सन बोबा साहब रंजीत कुमार भी उनके साथ होते हेलो इंदिरा है गीत थोर खातिर और राजेश उगर और सब उगर परिवार के नाम देवीना विशेषर फिर माला भी उनके साथ देवतवन और माइली है गीत थोड़ो नाम स्वीटी ओलिविये भी तो और ओलिविये उनके साथ देवतवन बहुत बहुत धन्यवाद ओलिविये हमके साथ दे खातिर और दुनिया भर में हमके आवाज़ आता कनाडा इटली रशिया लग्जमबर्ग तो जहाँ से भी तलोक हमके सुनत हुआ अगला गीत तलोक के नाम नमस्ते नमस्ते मुकेश चेदी गीतवा गेले वन एल्बम है मुनिया.

एगो सब्जी है जिकर नाम है कदुआ, देखो कि कद्दू भी बोलेगा और लड़का लोग उतना ही नहीं खाला, पर एक में ढेर पौष्टिक तत्व है और बाजार में 365 दिन लेगीम द्वारा मिली। और कद्दू के प्रमुख फायदा यह है कि जब डिजेस्टियों के ये दी करेला हमने के पाचन प्रक्रिया में अगर मैं वाइटामिन ए बा और वाइटामिन ए जो है आँख खातिर बहुत अच्छा है और कैलोरी कमती करेला, पोटाशियम भी बा कर में और एंटीऑक्सीडेंट भी बा, पानी की मात्रा अच्छा बा। और है जो कदुआ है इसे कैसे खाया जाला था सकबा, कदुआ की सब्जी बनाए, सूप बनाए, भाप में पका के या दाल के साथ बनाई है। और ये कदुआ जो है बहुत अच्छा है, कहे कि अगर मैं प्रोटीन मैग्नीशियम और स्वास्थ्य संबंधी ढेर तत्व है। अनजाने से स्वाद उतना नहीं अच्छा रहेगा आपका, जो गू जो सावे है उतना अच्छा नहीं है, पर है जो कदुआ है ये बहुत लाभदायक है हमने के स्वास्थ्य खातिर है। तो लड़का लोग के, नौजवान लोग के विकास और के शरीर के विकास खातिर कदुआ ज़रूर पकाइए और लड़का लोग के खियाइए प्यार से। जान जा सके कोई नहीं कुछ लेना, पर का कर भैया कबू कबू दुखते बोले ला छा जस्सी लेगीम खाएगी फल खाएगी तो स्वास्थ्य अच्छा रही। अगला गीत भोजपुरी है हमार माँ राजकमल चिंतामणि की आवाज़ में गीत, और गीत हमने चलावा थी इस बीना के नाम। बीना के वजह से कड्डू को बेटा उगर घरोला कर मौसा मौसी कर कुजाल वन भी दूसर पे इसे सनी सनी की पत्नी सनी के दुगो बेटा और है गीत चली हैंसन लामा खातिर। हाय हैंसन केशव मगर है गीत थोड़ो नाम और नेपाल से देर को यालवन जब भी मॉरिशस में वन जा काम करते वन सर और बेशक हम के साथ देवतवन थापा। अगला गीत थापा जी थोड़ो नाम चाहते इस उदय धनी राम गीत थोड़ो खातिर। उदय धनी राम और सब धनी राम परिवार से फिर है गीत चलावती इस जानकी परिवार के नाम आप रहेलन रिवेज पोस्ट और बिना तो बढ़िए खुश होगल कहा के वो नाम रेडियो पर आवा था। जया भी उनके साथ होते हैं। हेलो जया गीत तोहरो नाम

0: और है कि चाहते सर उस सब संचालकों के नाम जो मैं अभी रात के काम करता नाइट शिफ्ट में अस्पताल में क्लिनिक में कॉल सेंटर में और जहाँ कहीं भी रात के काम हुआ था गीत चलो के नाम भोजपुरी हा हमार माँ चल एक साथ सुनेगी तो
1: भोजपुरी हा हम

भाषा का चेहरा हमने के प्रिजर्व करके रखे के। और अब कुछ बॉलीवुड न्यूज। अगस्त महीना के अंत रे सब फिल्म रिलीज हो जाए और बड़ा पर्दा पर मोशन में सब फिल्म देखे। पहला है प्रहार, दूसरा है ओ माई डॉग, फिर आर्यभट्ट का जीरो, अवरापन नंबर दो, बंटवारा 1947, मातृभूमि,

दिया है। तो कुल मिला के अगस्त महीना में एक्शन, ऐतिहासिक ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर सब फिल्म रिलीज हुई। और याद रखिए फिल्मों के नाम, प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी, फिर ओ माय डॉग, ये फिल्म के नाम है ओ माय डॉग, बाप रे बाप, आर्यभट्ट का जीरो, आवारापन नंबर दो, आवारा नंबर दो में इमरान हाशमी की दिग्व, फिर बंटवारा 1947, मातृभूमि, भारत देश है मेरा, खोसला का खोसला दो, ईथा और जीवन बीमा योजना और फिल्म टॉक्सिक। तो ये सब फिल्म रिलीज हुई अगस्त के महीना के अंत में, ये सब फिल्म चलाए और सब वजह ये सब फिल्म परिवार के साथ देखे। अगला गीत जो है हंगामा, रोशन सरा सिंह के गीत, हैंसन नामा के नाम, बिहारी मगर है गीत धोरो नाम, साथ में ये गीत हमने चलाओ अब सुमन जलसा ग्रुप खातिर, सुनील रामनोचन गीत, वालिदे फैत के तौर सब परिवार के नाम, कविता निधि याति नानी सरतान भी खातिर, शीन इब्राहिम हवन पोर्ट्रीट से है गीतोरो नाम, सुमन जलसा ग्रुप है गीतोरो खातिर, दिमियानो है गीतोरो नाम, साकुन है गीत तोरो नाम से होती सर, और विकी भी उनके साथ होते हैं। तो चल एक साथ सुने गीतवा हंगामा।

आजकल श्रावण मास चला था और ये श्रावण मास चली 28 अगस्त उठ पे चली और पूजा पाठ होता घर में, यज हवन हुआ था, वेद पाठ हुआ था, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद के मंत्र भजी सान घर में उच्चारण होता, मंदिर में भी, और सब कोई पूजा पाठ करता था और अभी ढेर कोई शाकाहारी भोजन भी करता था, उनसा साथ में व्रत धारण कर ले उनसा था तमनी के तो लोग के व्रत सफल हुई। जिन श्रावण का मास के महीना बहुत ही पावन पवित्र महीना और बोल जला कि अरे श्रावण मास में तू कागम रह व्रत रखब त परिवार के कल्याण होला, थोड़ा मन वांछित फल प्राप्त होला। एक और शिवलिंग पर जल छावती सा शिव अभिषेक होता, ढेर कोई पीति कांवर बना के गाँव मासे जाता तो ढेर कोई घर में मंदिर में यज हवन करता, पुण्य के काम करते वन सा दान करते वन सा, और ये सब अच्छा है जब पूजा करब और हाथ धोईब कोई के पूजा करला के बाद यज हवन करते हुआ त जितना कोई अभी श्रावण मास में हवन जा और पूजा पाठ करते वन सा त ये अगला भजन तो लोग के नाम ओम जय माता, ओम जय माता।

माँ तोर आदर हम करीला, माँ माँ तोर पूजा हम करीला, और माँ से बढ़कर दुनिया में कोई तोर हितैषी नहीं बा। माँ ही ऐसा एगो व्यक्ति है जो जीवन भर तोरा प्यार करेला और तोर अच्छाई तोर भलाई चाहेला। ऊ है माँ, ऊ चाहे इंसान में हो, जना

उम्र में हुई तो माँ के जन दर्जा है वो भगवान की दर्जा है। रात के 10:40 भोजपुरी तरह का प्रोग्राम 94.5/6 98.2 FM रेडियो मनोरंजन और आज सोने स्क्रेस रेडियो मॉरिशस पर। और आजकल तीसरी तिमाही की पढ़ाई शुरू कर बा कॉलेज स्कूल में और पढ़ाई जारी बा और इस साल के साथ में भी घाट 9 घाट 11 और घाट 13 के लिए लोग अपने एग्जाम दिए थे। घाट 9 यानी कि फॉर्म फ्री, घाट 11 यानी कि SC और घाट 13 यानी कि HSC। तो निमन से पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया जा और अच्छा से काम करिए ताकि साल के अंत में थोड़ा निमन नतीजा मिली। और इतजा नु बुलाल वाल बाकी दुआ नहीं बा पोताप सेवी करे के लिए कुल में अगर प्रोफेसर चाहिए एजुकेशनल पेडागोजिकल यूज़ खातिर तो सकी लड़का लोग के इस्तेमाल करें, पर ऐसे दुआ नहीं रही लड़का लोग के पोताब में फिल्म देखे के या गीत सुने के या पोताब में बात करके दुआ नहीं है। ये सब लालवा निकल बा तो लालवा के पालन करिए जा, लालवा के पालन नहीं कर बा तो सौंकशाली वाल जाए। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, पोता पोता पर उतना ध्यान नहीं दिया तो अपन पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया तो सिलेबस तैमिनी हो जाए, अपन पॉस एग्ज़ाम में काम करिए ताकि निमन से SC HSC में निमन से काम कर बा ताकि अगला साल जब आए तो अपनी के लोरिया के लालिस में तोरो नाम भी रही। हाँ कि नहीं तो एगो लड़का लोरिया कब निकाले ला, एगो प्रिपरेशन है, एगो लड़का एक दो दिन में लोरिया नहीं निकाले ला, वो अपन फोमिन से HSC ले सेतों वितों ने पढ़ाई करेला फिर अच्छी तरह से लिखाई करेला और जब HSC आवेला पर सिक्सर एग्ज़ाम देवेला कॉम्पीट करेला और जब निमन से सब चीज़ें में अच्छा अच्छा नंबर आवेला तब लेकुआ नंबर 1 पे आवेला तो के लोकया बोल चला। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, लेजुकाशन जो है ये पासपोर्ट हमने के और है जो शिक्षा है ये हमने के गरीबी से निकालेला, हमने की अच्छा नौकरी देवेला, मान सम्मान देवेला। तो जितना लड़का लोग भी स्टूडेंट्स लोग हमने की सुनाता रात के समय, जितना अध्यापक लोग सुनाता तो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जारी रही ताकि टर्म अच्छी तरह से शुरू हो अच्छी तरह से समाप्त हो। तो जितना अध्यापक लोग और स्टूडेंट्स लोग हमने की सुनाता सबको केवल बॉन कुआश फॉर द थर्ड टर्म और गुड लक। पढ़ाई लिखाई में इसे ही ध्यान दिया। अरे अगला गीत सुना हम पहली ना संदूर सुमावती दुमन रिहाना हसनाली गीत खासम खास तौर खातिर गीत द्वारा बड़ी पसंद बा। साथ में हेमंती उनके साथ होते हेमंती होवन वाकवा से और है गीत चली आशा जानू के नाम आप प्रहलन करते जहाँ आशा है गीत थोड़ा खातिर राफेज हवन लाविनिया सैपिया से। फिर गिरिजा देवेश वन फेनिक्स से हेलो और है कि तो हम चलाओ तो इस सब संगत लोग खाते जगह नींद नहीं लगाता, कोई इधर करवट बदलता कोई उधर करवट बदलता और जितना कोई भी नाइट शिफ्ट काम करके वापस घर लौटता था वन सर भोजन करते वन सर या गर्मा गर्म चाय की मजा लेवा था तो गीत थोड़ो नाम हम पहनी ला सिंदूर सजन देखे दूर से।

रात के 10:45 होता। अब हमने की हमनी तुल के सुनाओ जाए गो कहानी सोना के अंडा देवला मुर्गी की कहानी। तो बहुत साल पहले की बात है, एक गांव में गरीब किसान रहा था अपन पत्नी के साथ, और वो लोग के थोड़ा सा जमीन रहल और वो लोग मुर्गी के पालन पोषण करते रहन सब। और मुर्गी अंडा देवे तो अंडा बेच के वो लोग अपन पेट पालत रहल। एक दिन किसान देखल कि ओकर एगो मुर्गी सोना के अंडा देवता, तो वो आश्चर्यचकित हो गल कि बाप इ तो जादुई मुर्गी है। वो अंडा के गलत सुनार लगे, सुनार देखल अंडवा के तो बोलक हाँ सच्चे के सोना है। अगला दिन मुर्गी के और है जो मुर्गिया एक दिन सोना के अंडा देलक, रोज के सोना के अंडा दे लगल। तो एक सप्ताह में 7 अंडा देलक। किसान सोना के अंडा बेच के खूब पैसा मिलल। पर एक दिन ओकर मन में लालच आल, तब अपन पत्नी से बोला था ये जो मुर्गी है सोना के अंडा देवेला, अगर एक पीठ हम फाड़ देव तक ढेर मना अंडा मिली और एक से हम मिलियनेर बन जाब, लखपति बन जाब। पत्नी को बोलक ऐसे नहीं करिए, लालच नहीं करे कि मुर्गिया रोज की देवता को अंडा सबसे सबूरी करिए। पर जब पत्नी सुत गल तो पति उठल रात के का करलक, गल पुलाइए लगे, पुलाइए खोललक, सोना के अंडा देला मुर्गी के पकड़लक और उसका पेट फाड़ दिलक छुरी से। अब बेचारी मुर्गी तो मर गल, उसका पेट में एक को सोना नहीं मिलल। तो किसान के अपन गलती पर एहसास हो कि देखा गो मुर्गी सोना के अंडा देवतल खूब पैसा मिले और वो पछताए लगल। तो कहानी किसी कौन चीज संगत्या लोग की है जो

लालच है वो बहुत बुरी बला है, बहुत बुरा चीज है। थोड़े में अगर थोड़ा मिला था कोनो ना कोनो चीज तो संतुष्ट चाह रहे कि जब ढेर लालच करब गुमो करब तो सब कुछ फिनी हो जाला। तो हमेशा जिंदगी में मेहनत लगन से काम करिए, लालच नहीं करिए, लालच के फल बहुत बुरा होला। अगला गीत राज दुलुआ के गावल गीत है कोदो हम गईली, और ये गीत हमें चाहती सर विनय जीतन के नाम है। गीत तोहर खातिर तोहर माता जो सब जीतन परिवार के लिए, साथ में ही गीत हमने चलावती डॉक्टर अंजू के और शेखर मंगेतर और होने वाले सास ससुर जी के नाम है। गीत हमने चलावती सेंट ओबेंस एस एस कॉलेज के सब अध्यापक नॉन टीचिंग स्टाफ वहाँ के रेक्टर ने और वहाँ के सब स्टूडेंट्स लोग के नाम, और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस की बीए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू ईयर फ्री, एमए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू, पीएचडी इन फ्रेंच एंड रोल कोर्स में वहाँ के जितने प्रोफेसर लेक्चरर स्टूडेंट्स लोग बा तक गीत लोग के नाम को ना हम गई राज दुलवा की आवाज़ में।

0: बिस्वानी दीपा के गावल है गीत के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हुआ था। हमने के प्यार से सुना 9 से 11 बजे के बीच, 11 बजे सुन बजे सुनहरे पल प्रोग्राम और रात के 12 बजे से कल फजर के 6 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तो लोग मुलाकात यहीं तक रहा, तो लोग फोन कॉल्स तो के SMS खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के टिकटॉक पर देख लो, रेडियो पर सुन लो, शुक्रिया। हमने की और तो लोग मुलाकात हुई कल बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे इसी चैनल पर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी कार्यक्रम में। कल तक हमने की इजाजत दें और जय प्रताप सिंह सितालू की ओर से सबको एक प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभरात्रि बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस के सभी श्रोताओं को नीतू शाह का सप्रेम नमस्कार प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। श्रोताओं, आज हम आपको ले चले हैं गुलजार साहब की दुनिया में। उनका जन्मदिन है तो चले एक साथ मिलकर उनके गानों के जरिए उनको शुभकामनाएं देते हैं।
2: गाना बनाते हुए तुम जबान से ज्यादा साउंड का ख्याल रखते थे, लफ्जों की साउंड अच्छी हो तो फौरन उन्हें होंठों पर ले लिया करते थे। मानी, तुम कहा करते थे लोग पूछ लेंगे, जैसे तुमने इस गाने में पूछा था मुझसे, ये नशेमन कौन सा शहर है यार।

0: जी हाँ श्रोताओं, गुलजार साहब नाम लेते ही जहन में कुछ ऐसे लफ्ज उभरते हैं जो सीधे दिल तक पहुँचते हैं। वो सिर्फ एक लिरिसिस्ट नहीं बल्कि अल्फाज के एक ऐसे जादूगर हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा के गीतों को एक नई भाषा, नई सोच और नई गहराई दी। उनकी शायरी में मोहब्बत भी है, तन्हाई भी है, जिंदगी की सादगी भी है और इंसानी जज्बात की वो बारीकियां भी हैं जिन्हें महसूस तो सब करते हैं लेकिन लफ्जों में बयां करना हर किसी की बस की बात नहीं।
1: याद है पंचम, जब भी कोई नई धुन बनाकर भेजते थे तो साथ कह दिया करते थे, ये कौन सा बॉल मेरे कोर्ट में छोड़ गए हो पंचम। जिंदगी का ये खेल अकेले नहीं खेला जाता, हमारी तो टीम है, आ जाओ या बुला लो।

गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। उनका जन्म 18 अगस्त 1934 को दीना पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। पार्टीशन के दौरान उनकी जिंदगी पर जो गहरा असर पड़ा, उसकी परछाई उसकी रचनाओं में कई बार नजर आती है। बचपन, बिछड़ना, यादें, रिश्तों की गर्माहट, तन्हाई और बदलते वक्त का एहसास, इन सब को उन्होंने अपने अल्फाज में बहुत ही खूबसूरती से जगह दी।

0: गुलजार साहब की सबसे खासियत उनकी लैंग्वेज है। उनके लव्स कभी बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन उनके अंदर एक पूरी दुनिया छुपी होती है। वो आम जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को भी पोएट्री बना देते हैं। बारिश, हवा, खिड़की, शाम, चांद, पत्ते, खुशबू, सफर, खामोशी, उनके हाथ में ये सब सिर्फ चीजें नहीं रहती बल्कि इमोशंस बन जाती हैं।
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है

बॉलीवुड में उनकी लिरिसिस्ट के रूप में पहचान बहुत गहरी है। उन्होंने ऐसे गीत लिखे जो सिर्फ फिल्म की कहानी को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि कैरेक्टर्स के दिल की बात कह देते हैं। उन्हें गीतों में मोहब्बत का एक अलग ही अंदाज मिला है। वो मोहब्बत को सिर्फ मिलन या रोमांस के रूप में नहीं देखते। उनकी पोएट्री में इंतजार है, दूरी है, याद है, अनसेड इमोशंस हैं और कभी कभी वो खामोशी भी है जो दो लोगों के बीच सब कुछ कह

गुलजार साहब के गीतों की दुनिया बहुत विस्तृत है। मोरा गोरा अंग ले ले से लेकर तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तक, मुसाफिर हूँ यारू से लेकर तुझसे नाराज नहीं जिंदगी तक, और आने वाला पल से लेकर दिल से रे जैसे गीतों तक, उन्होंने अलग अलग दौरों और अलग अलग मूड्स को अपने अंदाज में अल्फाज दिए हैं। उनके गीतों में एक खास बात होती है, वो लिसनर को सिर्फ गाना नहीं सुनाते बल्कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब हम उनका कोई गीत सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि गाना हमारे लिए ही लिखा गया हो। शायद इसी कारण ये है कि गुलजार साहब इमोशंस को बहुत पर्सनल तरीके से लिखते हैं। उनके लफ्जों में मैं और तुम होते हैं, होते हुए भी हर लिसनर अपनी कहानी देख लेता है।

उनकी पोएट्री में नेचर का भी बहुत गहरा संबंध है। बारिश उनके यहाँ सिर्फ मौसम नहीं, एक इमोशन बन जाती है। शाम सिर्फ दिन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि यादों और तन्हाइयों का एक एहसास बन सकती है। हवा, पत्ते और खुशबू भी उनकी पोएट्री में अपनी जुबां पा लेते हैं। मतलब कि गुलजार साहब ऑर्डिनरी चीजों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी ढूंढने की कला रखते हैं। उनका एक और खास अंदाज है उनकी इमेजिनरी। वो एक छोटी सी तस्वीर को कुछ भी लफ्जों में इतनी खूबसूरती से पेश कर देते हैं कि लिसनर के सामने पूरा सीन जिंदा हो जाता है। इसी वजह से उनकी शायरी पढ़ते हुए भी ऐसा लगता है जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो। वैसे उन्होंने सिर्फ लिरिक्स ही नहीं लिखे, बल्कि फिल्म मेकिंग में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। मेरे अपने, कोशिश, आंधी, खुशबू, किनारा, अंगूर, नमकीन, लेकिन और इजाजत जैसे सिनेमा के जरिए उन्होंने सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को बहुत ही गहराई से एक्सप्लोर किया। उनकी फिल्म्स में रिलेशनशिप्स, ह्यूमन इमोशंस और जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत सटल अंदाज में

0: कोशिश जैसे सिनेमा में कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप की कहानी वो गुलजार साहब की क्रिएटिव विजन को दर्शाता है। आंधी में रिलेशनशिप्स और पॉलिटिक्स के बीच की इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है। इजाजत में लव, सेपरेशन, मेमोरी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को एक बहुत माचू और पोएटिक नजरिए से देखा गया। उनका क्रिएटिव सफर सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने टीवी के लिए भी यादगार काम किया। मिर्जा गालिब जैसे टीवी प्रोजेक्ट ने उनकी फीचर और पोएट्री के प्रति गहरी समझ को सामने रखा। गालिब जैसे महान शायर की दुनिया को स्क्रीन पर लाना एक बहुत बड़ी क्रिएटिव जिम्मेदारी थी और गुलजार साहब ने इसे अपने अंदाज में यादगार बनाया। वैसे गुलजार साहब की राइटिंग का एक और पहलू है उनका बच्चों के लिए लिखना। उन्होंने बच्चों की दुनिया को भी अपनी रचनाओं में जगह दी। उनके लिए पोएट्री सिर्फ बड़े बड़े फिलोसॉफिकल सवालों का नाम नहीं, एक बच्चे की आंखों से दुनिया को देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: हम

उनकी आवाज और उनका बोलने का अंदाज भी अपने आप में अलग है। जब वो पोएट्री पढ़ते हैं तो उनकी डिलीवरी में एक ठहराव महसूस होता है। वो लफ्जों को भागते हुए नहीं बल्कि धीरे धीरे लिसनर के पास आने देते हैं। शायद इसी वजह से उनकी पोएट्री सुनना भी एक अलग अनुभव होता है। अवार्ड्स की बात करें तो गुलजार साहब को उनके बहुमुखी योगदान के लिए कई बड़े सम्मान मिले हैं। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स और अन्य सम्मानों के साथ फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर के गीत जय हो के लिए उन्हें एकेडमी अवार्ड और ग्रामी अवार्ड मिला। ये अचीवमेंट इंडियन फिल्म म्यूजिक और हिंदी लिरिक्स के लिए भी एक गौरव का पल था। लेकिन गुलजार साहब की असली पहचान सिर्फ अवार्ड से नहीं होती, उनकी असली पहचान उनके उन लफ्जों से होती है जो डिकेड्स बाद भी लोगों की जुबान पर हैं। एक जेनरेशन उनके गीत सुनते हैं, फिर अगली जेनरेशन भी उन्हीं गीतों में अपनी फीलिंग्स ढूंढ लेते हैं। ये किसी भी लिरिसिस्ट के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है।

गुलजार साहब ने हमें ये सिखाया है कि पोएट्री हमेशा मुश्किल शब्दों की मोहताज नहीं होती। कभी कभी एक सिंपल सा लफ्ज, एक छोटी सी तस्वीर और एक सच्चा इमोशन पूरी दुनिया को छू सकता है। उनकी पोएट्री में सिंप्लिसिटी और डेप्थ का जो कॉम्बिनेशन है वो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। और शायद इसीलिए जब गुलजार के गीत रेडियो पर बजते हैं तो हम सिर्फ सिंगर की आवाज नहीं सुनते, हम लफ्जों को भी महसूस करते हैं। हमें अपनी कोई पुरानी शाम याद आ जाती है, कोई भूला हुआ चेहरा याद आ जाता है, कोई अधूरी बात याद आ जाती है, या फिर अपने ही दिल का कोई कोना अचानक रोशन सा हो जाता है। गुलजार साहब के लफ्ज वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर नए दौर में नए अर्थ लेकर सामने आते हैं। उनकी पोएट्री हमें रोकना सिखाती है, महसूस करना सिखाती है और जिंदगी की छोटी छोटी खूबसूरतियों को पहचानना सिखाती है। यही तो है गुलजार।

सितारा साहब की कला, लफ्जों को एहसास में बदल देना, एहसास को मेलोडी में पिरो देना और मेलोडी को हमेशा के लिए दिल में बसा देना। शुभ रात्रि।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: मेरा दिल, मेरी जान।